0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हमने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माय वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन

0: सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया. मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड. मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है. और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी. सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर. ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी. मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो। चल,

त्योहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स की इन दिनों हम बात कर रहे हैं, देख रहे थे कि किस तरह से खुशी कभी भी छूमंतर हो जाती थी, लेकिन अब जब अपने पर काम करना शुरू किया और बहुत सारे एस्पेक्ट समझे, अब समझ में आया कि वो खुशी जो मेरे अपने ही अंदर है, ना मुझे उसे कहीं खोजना है, ना कहीं तलाशना है, ना बाहर ढूंढना है, ना अंदर ढूंढना है, बल्कि वो है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं हमेशा रह सकती हूँ। हैप्पीनेस, पीस, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में रहना, इस सिचुएशन में, इस स्टेबिलिटी में रहना कैसे संभव है, ये हमने समझा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा राजयोग का, मेडिटेशन का। आज अपनी पहचान के बाद कुछ और बातें जानते हैं कि किस तरह से उस पहचान को लगातार अपने साथ, उस याद को लगातार अपने साथ कायम रख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, इस बात को हम हमेशा याद रख पाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ ये बात पता चले कि मैं कौन हूँ, वो चैतन्य शक्ति जो कि मास्टर हूँ इस पूरे शरीर की, अमेजिंग ना? इट एक्चुअली जस्ट गिव्स मी अ वेरी डिफरेंट फील अबाउट माई सेल्फ
1: एंड दिस इज पावर। यू नो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे हमारे यूथ बच्चे बार बार ये कहते सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये पता चलेगा सेल्फ कौन है। सेल्फ का आंसर मिल गया तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप बिल्डअप हो जाता है। इसलिए जहाँ भी सेल्फ वर्ड आता तो सबसे पहले मैं कौन हूँ वो पहचानना, और ये जब मैं की पहचान मिली तो मैं से रिश्ता भी जुड़ना लग गया। यू नो, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई इट्स मेडिटेशन इज फर्स्ट रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। अपना ध्यान रखना, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट, आई एम अ प्योर बीइंग, पीसफुल बीइंग, सी हाउ इट फील्स। और ये एक दिन में, दो दिन में, दस दिन में होने वाली चीज नहीं है, दिस टेक्स टाइम। जब हम सेंटर पर आते तो हमें रोज वो प्रोसेस होता याद दिलाने का,
0: जो आपने कहा था कि याददाश्त कहीं गुमी हुई है।
1: अब बिना यहाँ आए और बिना रोज स्टडी किए मुझे दो चार दिन में वो बात भूल जाती है, क्योंकि फिर वही एनवायरनमेंट में जहाँ सब लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, मेरा अपना संस्कार तो है ही बहुत पक्का, तो अगेन आई गो इनटू दैट। लेकिन रोज आना सेंटर पे वो याद दिलाने का प्रोसेस बनता है, फिर वो याद धीरे धीरे नेचुरल होती जाती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एवरी डे। इसीलिए रोज हम जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बातें रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं, उसका फोकस ये होता है रोज मैं कौन वो याद रखना और मेरी क्वालिटीज क्या, और फिर जब ये याद आ जाता तो मैं किसका, हु इज ही हुम आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। क्योंकि इट्स लाइक मैं बैटरी हूँ लेकिन मेरी पावर आज थोड़ी कम हो चुकी है, देन आई कनेक्ट टू द पावर हाउस। देखो, जो हमने पहले मेडिटेशंस की बात की, या तो वो ब्रीदिंग टेक्निक है, मंत्र जाप है, थॉटलेसनेस है सारा, या जो कुछ चक्र पर भी फोकस करते, सब लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? मैं खुद पर फोकस कर रही हूँ। तो इट इज़ लाइक अ

0: चार्ज्ड बैटरी ट्राइंग टू चार्ज इट्सेल्फ, जो कि वो अचीव करते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा और रिजल्ट उतनी नहीं। तो फिर इसलिए कहते हैं हमें 1 घंटा रोज करना, 2 घंटा रोज करना, क्योंकि डिस्चार्ज स्थिति में खुद को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक डिस्चार्ज बैटरी अगर पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए तो बैटरी डजंट हैव टू डू मच, सिर्फ बैटरी को जोड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि कनेक्शन
1: स्ट्रांग हो,
0: ठीक है। लेकिन लगे कि जुड़ा हुआ है लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो सालों साल भी ऐसे रखेंगे तो वो चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन कनेक्शन राइट है, चार्जिंग होनी ही होनी है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए अपनी पहचान के बाद हम उनकी पहचान लेते कि परमात्मा कौन है, क्योंकि आज परमात्मा के बारे में भी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इतने सारे डाउट्स हैं कि कई बार फिर लगता है कि पता नहीं
1: है भी कि नहीं
0: है भी कि नहीं। तो जिनके एग्जिस्टेंस पर ही डाउट है तो उनके साथ कनेक्शन जुड़ना बहुत मुश्किल है। अब जब हमने अपने को बॉडी समझा, फिजिकल मैटर समझा, तब हमने समझा मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल ही होगा। यू नो, ये एक गलती से फिर अगली गलती हुई कि मैं फिजिकल तो मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल। तब हमने परमात्मा को कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब समझ में आया कि आई एम जस्ट एनर्जी, प्योर कॉन्शियंट बींग, तो मेरा पिता कौन, तो देन ही इज ऑल्सो अनदर कॉन्शियंट बींग। और इसलिए हम कहते हैं आई एम अ सोल, चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल एनर्जी, एंड ही इज द सुपर एनर्जी। अब सुपर किस फॉर्म में, कि आई एम अ पीसफुल सोल, तो ही इज द ओशन ऑफ दैट पीस। ना कि मैं छोटी सी आत्मा हूँ और वो बड़ी आत्मा है
1: और मैंने उसमें समा जाना है। यू नो, अगेन दिस इज अ मेजर बिलीफ सिस्टम व्हिच वी एक्चुअली नीड टू सी, कि मैं अल्टीमेटली उसी में समा जाऊंगी।
0: ये बहुत सारी हैं, फिर वो हमें धीरे धीरे और क्लैरिफिकेशन इस पर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन शायद उन पर कभी
1: रिफ्लेक्शन
0: नहीं किया। यू नो, सुन लिया और तुरंत ऐसे स्वीकार किया, और जो भी हमने सुना उसके पीछे एक एसेंस था, उसके पीछे एक मीनिंग था, लेकिन मीनिंग नहीं पकड़ा। जैसे मैं परमात्मा में समा जाऊं, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, कि मैं इतना याद करूं उनको, इतने उनके वो प्यार में लीन हो जाऊं कि जैसे कि मैं उनकी याद में समा जाऊं। लेकिन हमने हर चीज फिजिकल देखनी थी ना, तो मैं उनमें समा जाऊं मतलब क्या, कि मैं उनमें समा जाऊं,
1: फिजिकली मैं उनमें समर्ज हो जाऊं।
0: यस, बिकॉज एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। जैसे ही आप सोल कॉन्शियस हैं और आप ये महावाक्य सुनेंगे कि आप मैं परमात्मा में समा जाऊं, तो विल बी वेरी क्लियर कि समा जाना मतलब प्यार में समा जाना, याद में समा जाना। लेकिन बॉडी कॉन्शियस है तो मैं समा जाऊं मतलब मेरी एंटिटी है। आप देखो, अगर मैं समा जाऊं, वी आर सेइंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जहां मैं किसी चीज के अंदर समा गई तो मेरी एंटिटी, मेरी एग्जिस्टेंस फिनिश हो गई। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसको जो कुछ भी आज दिन तक पढ़ा है सब में मीनिंग है, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर उसके मीनिंग को समझना है। जैसे हम किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं तो कहते हैं ये तो उन्हीं में खोए हुए हैं। नहीं कहते, जैसे इफ आई सी यू कि आप किसी की याद में बैठे, मैंने कहा ये ना उन्हीं के उसमें खोई हुई है, लेकिन आप थोड़ी उसके अंदर समा गए।
1: इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं, हाँ, कि प्रेम की भी पराकाष्ठा यही कही जाती है कि खुद को हम समर्पित कर दें, खुद को भूल जाएं और उसको, हाँ,
0: लेकिन विद व्हाट, विद थॉट्स एंड फीलिंग्स ना, नॉट के एंटिटी ही फिनिश हो जाए। तो इसलिए परमात्मा के बारे में हमने जितना भी आज दिन तक पढ़ा था उसके पीछे एक एसेंस है, लेकिन शायद उसको हमने उतना क्लैरिटी से नहीं स्टडी किया। तो अगली बार जो भी सुने या पढ़े उसको थोड़ा गहराई से मनन भी करें। तो राजयोग में परमात्मा ही डायरेक्ट आकर जब हमें खुद अपना परिचय देते हैं, क्योंकि आज दिन तक हमने सुना कि एक वो समय आएगा व्हेन ही विल हैव टू कम हिमसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। इनफ वीव हैड दैट everyone else has introduced him. So when everyone else introduced him, they were right, but yet they were little different. And क्यों वो थोड़े थोड़े अलग थे? क्योंकि वो हर एक अपने perspective से, अपने रिश्ते के अनुभव से सुना रहे थे, लेकिन उसका direct और accurate परिचय कौन देगा? जब परमात्मा खुद आकर वो देंगे। एंड हर स्क्रिप्चर में, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता है, बाइबल, कुरान, every scripture we have read and heard, कि एक ऐसा समय आएगा when he himself will have to come. And वो समय होगा जब unrighteousness, irreligiousness is at its peak. तो we need to ask ourselves, क्या ये वो समय हो सकता है?
1: धर्म की पुनर्स्थापना की जो बात की
0: है, क्योंकि जब इतनी ग्लानी हो चुकी है, धर्म की ग्लानी पर उस सृष्टि पर आते हैं, तो शायद ये वही समय है. आई नीड टू आस्क माई सेल्फ. तो परमात्मा इस समय आकर अपना परिचय देते कि जैसे मैं आत्मा हूँ तो वो भी आत्मा है, लेकिन परम आत्मा है, क्योंकि वो उन क्वालिटीज में परम है, सुप्रीम है. वो परम धाम का रहने वाला है. परम धाम अर्थात इस सृष्टि से पार, स्पेस, यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट वी कैन सी एंड रीच, उसके बियॉन्ड जो हम आत्माओं का रहने का स्थान है, जिसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं. आज भी देखो, जब हम दर्द में होते हैं, दुखी होते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो नज़र कहाँ जाती है? ऊपर. क्लैरिटी नहीं है क्या है, लेकिन कुछ तो है, वो स्मृति है, तो उधर ध्यान जाता. तो परमात्मा हम सबको आकर पहले अपना परिचय देते कि मैं कौन आत्मा, फिर अपना परिचय देते कि परमात्मा कौन, घर का परिचय देते, परम धाम का मैं रहवासी हूँ. उससे और भी बहुत सारी फिर क्लैरिटी आती, क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें? यू नो, हम तो इतना कन्फ्यूजन है. हमने कहा कि परमात्मा तो हर जगह है, हर एक के अंदर है. देखो, इतना जब कन्फ्यूजन हो जाएगा तो परमात्मा को याद करना बहुत डिफिकल्ट है. सो परमात्मा निराकार, इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आकर अपना नाम बताया कि उनका नाम है शिव. और जब शिव कहते, इट मीन्स पॉइंट, एंड शिव मीन्स पीस, एंड ही इज आवर फादर. सो हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं. तो शिव बाबा आकर खुद अपना परिचय देते, वो शांति के सागर हैं, प्योरिटी के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं. और हम में और उनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम सब आत्माएं शरीर लेती हैं, और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आते तो हमारी बैटरी डिप्लीट हो जाती. लेकिन वो परम आत्मा इस सृष्टि चक्र पर, इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते, तो उनकी जो पावर है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. और इसीलिए वो ही एक है जो हमें इस चक्र से फिर
1: बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनफैक्ट जो चक्र में नहीं होगा वो ही उसे ही सोल्यूशन भी पता होगा. एब्सोल्युटली, वी आर प्लेइंग अ गेम आल्सो.
0: या जो नहीं है उस गेम में,
1: उसको उसको सब कुछ पता है कि कैसे है.
0: तो वो हमें चक्र का, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान समझाते, और हमें इस साइकिल से फिर कैसे हमने अपना पाठ बजाना है ये भी सिखाते. तो परमात्मा को जब हम पहचान लेते कि वो कौन है और उनका रोल क्या है. आज दिन तक परमात्मा के रोल पर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है. जब भी तकलीफ में है तो कहते भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर.
1: अच्छा, इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी से कि तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया. यू नो, कितनी बार हम अपने मतलब इस तरह से करते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए.
0: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिचुएशंस है मेरी, परमात्मा का रोल ये नहीं है कि आकर मेरी सिचुएशन को ठीक कर दे. क्योंकि मेरे सामने जो सिचुएशंस आई हैं वो तो मेरे ही एक्शंस का रिजल्ट है, जिसको हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट. लेकिन परमात्मा का रोल क्या है कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करूं, पावर हाउस से वो पावर लूं, अपने अंदर वो शक्ति भरो, और उस शक्ति से अपनी परिस्थिति को फेस करो. तो जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, तो इसलिए नहीं कि हे भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दे, लेकिन परमात्मा से वो शक्ति लें, वो भी मांगना नहीं कि हे भगवान मुझे शांति दे दे. पिता है तो पिता से बच्चे को मांगना थोड़ी पड़ता है. जो पिता का है वो बच्चे का है. अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वी विल नॉट से ओ गॉड गिव मी पीस, ओ गॉड गिव मी लव. नो, आई द सोल एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ पीस. ये थॉट क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली
1: पावर विल फील.
0: मैं कौन हूँ ये आंसर चाहिए था. तो मैं कौन हूँ? आई एम अ पीसफुल सोल, चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ पीस, एंड रेजिडेंट ऑफ लैंड ऑफ पीस. मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर का बच्चा, शांति धाम का रहवासी. अब गुस्सा, गुस्सा कहाँ से? क्योंकि हमारी सारा दिन जो पर्सनालिटी है वो किस बेसिस पर है. मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है ना. यू नो, कोई बहुत
1: रोल, बहुत बार हमारा बिहेवियर होता है. यस, यू नो,
0: आप कौन है. यू नो, जब कोई गलती भी हो जाती
1: है, कितनी बार हम बोलते हैं आपको पता है कि मैं किसका बेटा हूँ.
0: और पेरेंट्स भी जैसे बच्चों को कहते, ऐसे नहीं करना, आपको पता है आप किस खानदान के हो, आप किसके बेटे हो, तो आप किसके बच्चे हो ये जब स्मृति में आएगा तो पर्सनालिटी अपने आप चेंज हो जाती। तो आज से ये स्मृति में रखना है, मैं कौन हूँ, आई एम अ प्योर सोल एंड चाइल्ड ऑफ दैट ओशन ऑफ प्योरिटी, चाइल्ड ऑफ दैट सुप्रीम बींग। सारी दुनिया उनको याद करती है, क्यों? क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। मैं जो अपवित्र बन चुकी हूँ, डिप्लीट हो चुकी हूँ ना, आज दिन तक हम कहते आए कि पतित को पावन बनाने वाला, समझ में नहीं आया लेकिन कि पतित को पावन बनाना मतलब क्या, कि मैं आत्मा जो डिस्चार्ज हो चुकी हूँ, इम्प्योरिटीज जो मेरे अंदर आ चुके हैं, उस पावर हाउस से कनेक्ट होने से वो प्योरिटी मेरे अंदर फिर आ
1: अच्छा
0: जाते।
1: कितनी बार पता है हम अपने आप को जब समझ भी रहे होते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, यू नो, मतलब कई बार चीज़ें हमें दिख रही होती हैं कि हमसे अच्छा नहीं हुआ, ये हमसे गलत हो गया है, अब पता तो चल नहीं रहा कि ठीक कैसे करना है, तो वी से कि ओके आई एम लाइक दिस, देयर इज नोबडी, यू नो, तो मेरे को कुछ मतलब मैं ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने उसको ठीक कैसे
0: करना कैसे है, वो नहीं पता। तो इसलिए राजयोग से जब हम ये बेसिक चीजें भी सीख लेते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना मुश्किल नहीं है। अब इस कनेक्शन को, अब एक रिलेशनशिप जुड़ गया है, अब इस रिलेशनशिप को क्या करना है, रोज यूज करना है, यूज करना इन द सेंस, जैसे ही उसको याद किया तो उसकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली मेरे, आप अभी भी देखो, आप किसी को याद करो, आप यहाँ बैठे अपने बच्चे को याद करो, तो वो प्यार, उसका एक्सपीरियंस आपको अभी हो जाएगा। आप किसी इनको याद करो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं है, अभी बैठे बैठे दर्द एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो यहाँ नहीं है, लेकिन सिर्फ याद, इसका मतलब याद के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस अनुभव को अभी क्रिएट करती, और अनुभव क्रिएट हुआ मतलब आपका संस्कार बनना शुरू हुआ। अभी आपने प्यार का अनुभव किया, आपका प्यार का संस्कार क्रिएट हुआ, आपने दर्द का अनुभव किया, आपने दर्द का संस्कार क्रिएट किया, अब आप पवित्रता के सागर को याद करते हैं तो आपका संस्कार कौन सा क्रिएट होगा, प्योरिटी का। आप शांति के सागर को याद करते हैं, संस्कार क्रिएट हुआ शांति का, दिस इज मेडिटेशन, इट्स वेरी सिंपल,
1: बट वी आर नॉट एबल टू सस्टेन इट, यू नो, लाइक ये क्यों नहीं हो पाता, आई जस्ट, यू नो, अब मैंने एकदम से सडनली आपसे बात करते करते ये किया, कोशिश की, तो बच्चे को याद करना है तो वो एकदम से आ जाती है विजन, या जिसने मुझे थोड़ी पेन दी हो उसकी विजन भी एकदम से आके आप कर सकते हैं। जब आपने कहा कि हम शांति के उस सागर को जिसको हम अभी तक ढूंढ रहे थे, हमारा पिता, आज पहचान मिली, उसको याद करने की कोशिश करो, इवन इफ परमधाम की भी बात करते हैं, वो सस्टेन नहीं होता,
0: वो ट्रांजिएंट हो जाता है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है, यू नो, अभी सोल कॉन्शियसनेस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता जाएगा। सी, इट्स अ टू वे थिंग, एक है कि ये कनेक्शन तब स्ट्रांग बनता जाएगा जब हम सोल कॉन्शियस है, लेकिन दूसरा है कनेक्शन जोड़ते जाएंगे तो सोल कॉन्शियस होना इजी होता जाएगा। सो वी स्टार्ट डूइंग बोथ द थिंग्स, कि सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें सारा दिन में, और समय निकाल कर उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन,
1: और इसके साथ जो अटैचमेंट है उसे छोड़ते जाएंगे ना,
0: एक्चुअली छोड़ना नहीं पड़ेगा,
1: वो अपने आप हो जाएगा। यस,
0: अपने आप, देखो मुझे ये नहीं याद करना है आई एम नॉट द बॉडी, ये नहीं याद रखना है, हाँ ये याद रखना है कि आई एम अ प्योर सोल, तो फिर ऑटोमेटिकली। अब डिटैचमेंट की भी जो हमने बात की, तो डिटैचमेंट क्या था, कुछ छोड़ नहीं देना है लेकिन ये याद रखना है कि ये मैं नहीं हूँ। अटैचमेंट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के साथ इतना जुड़ जाते कि उसी में मेरा अस्तित्व चला जाता एंड मेरी अपनी आइडेंटिटी खत्म, अब मैं आत्मा हूँ, दिस इज डिटैचमेंट, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का रोल है, ये रिस्पॉन्स ना, दिस इज डिटैचमेंट। अब ये स्थिति में रहकर अगर यहाँ कोई हर्ट भी होता, जब मैं माँ हूँ, सी, तो अगर बच्चा हर्ट होगा तो माँ हर्ट होगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ, दिस इज डिटैचमेंट। अब बच्चा अगर हर्ट होगा तो मैं आत्मा पावरफुल हूँ, मैं हर्ट नहीं होंगी, और क्योंकि मैं नहीं होंगी
1: बच्चे को ऊपर लेकर जा सकते
0: हैं। इसलिए डिटैचमेंट फोर्सफुली करने जैसी चीज नहीं है, अगर यू नो कई बार
1: जबरदस्ती, जब ऐसे है तो उसको ऐसे खींचने की जरूरत नहीं,
0: वो डिटैचमेंट नहीं होगा, वो इनसेंसिटिविटी हो जाती है, वो जबरदस्ती का विड्रॉवल हो जाता है, वो नहीं है। डिटैचमेंट मीन्स सोल कॉन्शियसनेस, हम सोल कॉन्शियस होते जाए, हम ईगो जो हमारा है वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि ईगो क्या है, अटैचमेंट टू ऑल दीज इमेजेस। अब सोल कॉन्शियस इज ऑपोजिट ऑफ ईगो, यू नो, सेल्फ एस्टीम ऑपोजिट ऑफ ईगो, तो जितना सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे ईगो खत्म होगा, ईगो खत्म हुआ तो सारे वाइसेस वो सब अपने आप खत्म होते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: सिस्टर शिवानी, एक मैं यहाँ बात पूछना चाहूंगी कि जब आपने कहा कि अटैचमेंट किसी भी पर्टिकुलर चीज से ना करके, तो अटैचमेंट को कॉन्शियसनेस में रहते हुए अगर मैं सुप्रीम के साथ अटैचमेंट करती हूँ, वही वाली अटैचमेंट जिसकी मैं आदी हूँ, सो इज दैट ऑल्सो राइट?
0: या बिकॉज इन दैट देयर विल बी नो पेन। सी, अटैचमेंट वर्ड तब आ रहा था जहाँ हमने पहले भी देखा कि अटैचमेंट अगर किसी के साथ है तो प्यार है लेकिन हर्ट भी है, यू नो, क्योंकि उस आइडेंटिटी अपनी खो दी। लेकिन जब परमात्मा के साथ जो रिश्ता जुड़ता उसमें प्यार जुड़ता है। अटैचमेंट वर्ड हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ते में या कोई भी इंटरेक्शन में आपको हर्ट की अनुभूति नहीं होने
1: लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी उसमें भी खोता हूँ।
0: मैं खोऊंगी नहीं क्योंकि अटैचमेंट नहीं होने वाली है। सी, अटैचमेंट जब हो जाती है वेयर यू लूज योर आइडेंटिटी इनटू समथिंग, तब आपको हर्ट होने, सी एक्सपेक्टेशंस होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तब हर्ट होगा। लेकिन परमात्मा के साथ रिश्ते में ना एक्सपेक्टेशंस जो आप रखेंगे, बट प्रोवाइडेड यू कीप द राइट अंडरस्टैंडिंग कि परमात्मा का रोल क्या है। हम ये कहें कि परमात्मा मुझे नौकरी दे दे, परमात्मा मेरे बिजनेस में प्रॉफिट करा दे, नो, विद नॉलेज कि परमात्मा का रोल है मुझे एम्पावर करना, फिर मेरा रोल है उस पावर के साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स को हैंडल करना।
1: यस, यू नो, एंड कहीं ना कहीं मुझे विजन, मेरी विजन को क्लियर करते जाना, विजडम लेकर मैं को आगे बढ़ना है।
0: एंड आई विल बिकम वेरी क्लीन हियर, क्योंकि चार्जिंग होती जा रही है। फिर जो हमने बात की कि वैल्यूज पर चलने की ताकत चाहिए, आज वैल्यूज पता है लेकिन चलने की ताकत नहीं है, क्यों? पावर नहीं है। लेकिन परमात्मा से वो कनेक्शन जुड़ा, आत्मा शक्तिशाली बनी, आत्मा शक्तिशाली बनी, उसको किसी बात का डर नहीं लगता, डर नहीं लगता तो वैल्यूज पे चलना
1: आसान हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, बिकॉज दैट्स द राइट वे वी नीड टू डू, यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट इट, हम हमेशा चाहते थे ऐसे करना, लेकिन अब वो संभव हो पा रहा है। तो सचिवानी, हमने राजयोग की बात की, हमने इस पूरी श्रृंखला में खुशी की बात की है, जो कि हम हर बार कई बार सोचते भी हैं, लोग बोलते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, लेकिन डेफिनेटली
0: जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि हम आनंद के सागर के बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट ओशन ऑफ ब्लिस। तो फिर जिसके बच्चे हैं तो जन्म सिद्ध अधिकार
1: तो है, खुशी है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो अब हमें इस पूरी श्रृंखला में चलते चलते ये भी समझ में आया कि वो है ही हमारे पास, हमारा अपना, अपनी वैल्यू है, अपना संस्कार, अपना अनुभव है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शिवानी कि हम किस तरह से परमात्मा को याद करके कैसे उनकी याद में बैठे और कैसे वो ताकत लें उनसे, कैसे
0: परमात्मा को याद करना वैसे ही होता जैसे किसी और को भी याद करते, सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये कि जब भी किसी और को याद करते तो फिजिकल फॉर्म में याद करते, अब हम उस परम आत्मा को याद कर रहे हैं। तो पहले मुझे किस स्थिति में बैठना पड़ेगा? आत्मा हूँ, जब तक मैं आत्मा हूँ उस स्थिति में नहीं बैठी तो परमात्मा नहीं याद आएगा। आज दिन तक परमात्मा को याद करना क्यों मुश्किल हो रहा था? याद करने बैठा कौन था?
1: मैं,
0: माँ बैठी थी, तो माँ को कौन याद आएगा? बच्चा याद आएगा, परमात्मा नहीं याद आएगा। लेकिन आत्मा जब बैठेगी याद करने कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को परमात्मा याद आएगा।
1: I think सिर्फ परमात्मा ही फिर याद आएगा।
0: Absolutely.
1: है ना? अब actually ऐसा हो पाएगा कि हम सिर्फ परमात्मा,
0: जैसे ही आप सोल कॉन्शियस हो गए आपको परमात्मा ही याद आएगा। और याद करना मतलब मैं किसका बच्चा हूँ, और उस घर में जाना, यू नो, विद द पावर ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे अगर आप यहाँ बैठे अपने बच्चों को याद करो तो कहाँ याद करोगे? वो घर में बैठे हैं, तो तुरंत आपके सामने क्या आता जाएगा? वो घर में हैं, ये कर रहे हैं, आप उनको वहाँ देखेंगे तो वहीं याद करोगे ना। अगर मॉर्निंग में याद करते तो कहाँ याद करते? वो स्कूल में है, ऑटोमेटिक है। तो अब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें? वो कहाँ है? उस घर में है। और फिर हम भी बुद्धि से उस घर चलते, जैसे हम यहाँ बैठकर इस घर जा सकते, अब हम यहाँ बैठकर वो घर चल सकते। और जैसे ही हम ये थॉट्स क्रिएट करेंगे, परमात्मा की याद आएगी, तो उनकी पावर, प्योरिटी हमारे अंदर आ जाएगी। करके देखें,
1: बिल्कुल करते हैं।
0: जस्ट लेट्स सिट बैक, कंफर्टेबल होकर बैठे। हम कुछ मुश्किल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने पिता को याद करने बैठे हैं, उनसे वो कनेक्शन जोड़ने बैठे हैं जो शायद काफी समय से टूट गया था। अपने आप को देखें इस शरीर में, शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं आत्मा, point of light, pure, peaceful being. ये मेरी ओरिजिनल नेचर है. आई टेक दिस मोमेंट टू गो होम. अपने आप को देखें, ऊपर अपने घर की तरफ चलते हुए देखें उस सितारे को, ऊपर की तरफ जा रहा है. क्रॉसिंग द सन, मून एंड द स्टार्स, आई एम गोइंग होम. माई होम, मुझ आत्मा का घर, द लैंड ऑफ साइलेंस, पीस एंड प्योरिटी. चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट. आज दिन तक इस घर को याद किया था, आज मैं उस घर में आकर पहुंची हूं, अपने पिता के पास आकर पहुंची हूं. मेरे पिता जस्ट लाइक मी, पॉइंट ऑफ लाइट, आज दिन तक ढूंढ रहे थे. वेरी वेरी पावरफुल. आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. मन पे कोई भी बोझ, कोई क्वेश्चन है, अपने पिता से करें. उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है. सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूं. एज आई फिल माई सेल्फ विद द पावर ऑफ प्योरिटी एंड पीस, धीरे धीरे मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचते. कमिंग बैक टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड. विद दिस कॉन्शियसनेस आई एम अ पीसफुल सोल, चाइल्ड ऑफ दैट ओशन ऑफ पीस. Peace is my nature. It's my personality. Happiness, जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, this is my original nature. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much, Sister Shivani.
0: Om Shanti.
1: अगर आपको याद हो, जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, हमने आपसे कहा था कि आप खुश हैं. और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम सामने आया था, आज के इस वक्त में कौन खुश रह सकता है. ऐसे ही बहुत से संस्कारों और बिलीफ सिस्टम्स पर हमने अपनी ज़िंदगी की वो खूबसूरत खुशियाँ और वो शांति, प्रेम, वो जो हमारी अपनी इनेट क्वालिटीज़ हैं, उन्हें गंवा दिया है. कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ है. वो हमारा पिता, हमारा साथ देने को तैयार है, हमें शक्ति देने को तैयार है. हम फिर उन खुशियों को लौटा सकते हैं. बॉल इज इन आवर कोर्ट. अगर आपके पास कोई सवाल, कोई मन में बात उठ रही है, कोई सजेशन है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क करें. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक ऐसी शक्ति लेकर आज हम सब अपने साथ हैं. थोड़ी देर मनन करें. आज जो हमने सीखा इस पूरी श्रृंखला में, जो हमें बात समझ में आई है, ये सारी खुशियाँ, ये सारे एहसास हमारे अपने हैं, खुद क्रिएट किए जा सकते हैं. किसी भी पल, किसी भी सिचुएशन में मैं अपनी स्टेबिलिटी कायम रख सकती हूँ. इस ताकत के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

तुम्हारी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: हर रोज की हमारी मुलाकात यूँ होती जा रही है और ऐसा लगता है कि अब ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी हमारी जिंदगी के कहीं ना कहीं क्लियर होते जा रहे हैं, जिंदगी बेहतर है। लेकिन हम इन दिनों बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की। बहुत कुछ जाना स्ट्रेस के बारे में, सबसे पहले ये बात कि स्ट्रेस से मुक्ति, तनाव से मुक्ति मुमकिन है। जहां हमने इस बात को मान लिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत आसानी से हो सकता है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमने यही उठाया था कि कैसे खुद को जाने। उसके बाद कई और एस्पेक्ट्स थे जिन पर हम काम करते गए और अब आज बात करते हैं कि कौन से वो प्रैक्टिकल बातें हैं, कौन से वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो दिन भर अगर हम जिंदगी में शामिल करेंगे तो फिर स्ट्रेस का नाम ही नहीं रहेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आइए जानते हैं कैसे। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं रमा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
3: ओम शांति।
2: इतने कॉन्फिडेंस से सिस्टर शिवानी अब मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर हम पूरी जर्नी को देखते हैं तो जहाँ वो बातें बिल्कुल ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, परमात्मा का वो ज्ञान जब हमें मिलता गया तो वो असंभव संभव होता गया है। आई थिंक दिस इज समवेयर मिरेकल हैपनिंग।
3: या बिकॉज हमें जो लगा था वो नेचुरल है तो वो एक्चुअली अननेचुरल था, तो परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है वो हमें अननेचुरल से वापस नेचुरल की तरफ लेकर जाता है। और जैसे ही आत्मा अपने नेचुरल की तरफ जाना शुरू करती है, इवन इफ इट्स वन स्टेप, इवन इफ इट इज इन वन डे, एक बार मुझे गुस्सा नहीं आया, यू नो, इवन दैट वन इज ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं गुस्से से नहीं रिएक्ट किया, मतलब शांति में रही और पीसफुल रही, मतलब आई टच्ड माय रियलिटी। तो जैसे जैसे हम अपनी वास्तविकता के नज़दीक आते जाते हैं, इट फील्स so
2: at the end of the day, yes, it does feel good.
3: Feels beautiful. And iska testing, agar aapko check karna hai ki aapke andar change aa raha hai ki nahi, aapka meditation ka tarika sahi hai ki nahi, to you have to just check ki overall sara din mein aap kitna halka feel karte hain. There has to be a lightness ki jaise, you know, you're flying through the day, through your work. Pehle hum bahut bojh lekar chalte the, बहुत लोगों के बारे में सोचा, बहुत परिस्थितियों, पास्ट का, फ्यूचर का, देयर वाज लाइक बिग बैगेज दैट वी वर कैरिंग, और इतना बोझ लेकर यात्रा पर जाना
2: संभव नहीं,
3: तो वो यात्रा कभी अच्छी नहीं होती है।
2: एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो एस्पेक्ट, सात एस्पेक्ट्स आपने बात किए थे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को दूर करने के लिए।
3: स्ट्रेस का हमने सोचा कि सबसे पहले सिग्नल क्या है कि स्ट्रेस है क्या। इट्स अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी आई नीड टू चेंज। तो कहीं भी अंदर किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो रहा हो, चाहे वो ईर्ष्या है, नफरत है, क्रोध है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, कुछ भी प्रकार, यू डोंट हैव टू रियली लेबल इट, लेकिन कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द अगर अपने अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, इट इज़ अ मैसेंजर, स्टॉप। कहीं ना कहीं आप नेचुरल से परे जा रहे हैं, और इसको बढ़ने की बजाय जैसे ही वो होता हुआ महसूस हो तो तुरंत से स्टॉप करके देखना चाहिए मुझे क्या चेक और चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन वो तभी हम कर सकेंगे जब हम औरों को उसका जिम्मेवार नहीं ठहरा कर, अभी क्या होता है चेंजिंग के ऊपर ध्यान नहीं जाता, परिवर्तन के ऊपर, क्योंकि आप जिम्मेवार हो मेरे तनाव का, तो तनाव मेरे जीवन में रहेगा ही। यू नो, माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, सो शी स्टिल Till she is with me, I will be in stress.
2: जब तक वो बदलेंगी नहीं मेरी जिंदगी में कुछ
3: नहीं। My boss is like this only. तो जब तक मैं इस जॉब में हूँ, तो हमने एक्सेप्टेंस देते गए, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा एक्सेप्ट लोगों को करना था, एक्सेप्ट दर्द को कर लिया, और दर्द को स्वीकार कर लिया, लोगों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को उस दर्द का जिम्मेवार समझ लिया। तो लोग दूर होते गए, दर्द और नज़दीक आता गया, और दर्द को स्वीकार कर लिया, तो वी आर रेडी टू लिव विद इट। और अब हमें उस दर्द में रहने की एक क्या कहें, आदत सी पड़ गई है। वो दर्द एक स्टिम्युलेंट सा बन गया,
2: एक नेचुरल है, दर्द मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मतलब इतनी सारी बातें, और ये झूठ नहीं बोल रहे होते लोग, इट हैपेंस, यू नो, पीपल से कि दर्द के बिना मैं सोच नहीं सकता कि मेरी जिंदगी कैसे हो सकती है, इट्स अ पेन आई हैव लर्न टू लिव विद।
3: जैसे कई फिजिकल पेन होते हैं जो हम बहुत इलाज कराने के बावजूद नहीं जाते, तो वी लर्न टू लिव विद दैट पेन. सिमिलरली इमोशनल पेन, लेकिन इमोशनल पेन एक अननेसेसरी बैगेज है जो हम कैरी करते, और परमात्मा का ये सुंदर ज्ञान हमें वो बैगेज से हल्का कर देता है. और निराकार परमात्मा शिव बाबा हमेशा यही कहते कि कितना बड़ा टोकरा आप लेकर अपने सिर पर चलते हो, आत्मा इतनी हल्की है, इट शुड बी फ्लाइंग एवरी डे, बट इट कैरीज दिस होल बैगेज ऑफ यू नो सो मच दैट आई एम कैरिंग एंड आई कीप ऑन
2: टेकिंग इट,
3: एडिंग टू दैट बैगेज. तो कम तो क्या करना, लेकिन वो बोझ तो रोज
2: डेफिनेटली दिस इज व्हाट यू नो राइट नाउ आल्सो आई कैन शेयर दैट यू नो दैट बैगेज एक्चुअली गोज विद एवरीवन, लेकिन द मोमेंट इट गोज अप इट्स लिफ्टेड, आप इतना लाइट फील करते हो. आई एम फीलिंग इट यू नो, सो इट्स ऑफ कोर्स द जर्नी इज स्टिल ऑन.
3: लेकिन देन इफ आई एम फीलिंग लाइट, तो मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, इज इट वर्थ इट.
2: Oh,
3: जितना मैंने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला, जो आज दिन तक हम समझते थे कि नहीं टाइम नहीं है, वो उतना थोड़ा सा समय निकालने से और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ और फिर दिन में थोड़ा सा अटेंशन रखने से, लुक एट द डिफरेंस कि कहाँ इतने दर्द में चल रहे थे और कहाँ सारा दिन खुशी खुशी, पूरी जीवन तो वही है, सिचुएशंस भी वही है, और जो लोग थे आसपास
2: वो भी वही है. अमेजिंग इज लाइक
3: दैट्स वेयर बाबा स्लोगन कम्स इन कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वो सब वही है, बट आई एम सो हैप्पी नाउ कि मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं, पहले वही लोग यू नो बिकॉज दैट वाज द एनर्जी दैट आई वाज कैरिंग,
2: परेशानी का कारण बन रहे थे. बिल्कुल,
3: जैसे ही फोकस, इट्स जस्ट वन रॉन्ग स्विच, एक था यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड नाउ फॉर एवरीथिंग. ये सुनने में थोड़ा सा लगता है ओह फॉर एवरीथिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो एवरी टाइम आई हैव टू चेंज, बट यस, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ थोड़ी बार करने की बात है, उसके बाद आई लव टू चेंज.
2: नो नो, बिकॉज इट्स सो इजी, सी इट्स सो इजी, आई हैव टू चेंज, सो उनको मैं कोशिश करती रहूं, आई कैन एक्चुअली चेंज माय सेल्फ इन जस्ट वन थॉट.
3: पर थोड़े टाइम के बाद तो आई लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, हाँ क्या करना है, अपने आप को कहाँ और मोल्ड करना है, कहाँ और चेंज करना है, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जितना करते जाएंगे उतना फायदा
2: मुझे ही हो रहा है,
3: मुझे ही होने वाला है. शुरू शुरू में जब हम करते तो हमें लगता है कि ये एफर्ट है कि इनके लिए अब इनको गुस्सा नहीं करना, इन्होंने गलती की है, अब इनको कुछ नहीं बोलना, तो एक एफर्ट के थ्रू गुजरते, लेकिन उसका रिजल्ट तो कितना ब्यूटीफुल रिटर्न में मिलता है कि अपने संस्कार कितने चेंज होते जाते हैं. लेकिन बिगिन डूइंग इट, यू नो जस्ट लेट्स सिट बैक एंड से कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं कर पाएंगे,
2: मैं तो कर नहीं सकते, वही रॉन्ग बिलीफ के साथ बिल्कुल हम चलते हैं. तो जैसे शिवानी इस सफर पर आगे चलते हैं कि जब अब हम सब बातें समझ गए, अब काम करने की बारी है, कि सवेरे के मेडिटेशन से शुरू होता है ये सफर और दिन भर चलता है.
3: सारे दिन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, बातें अगेन फिजिकल नहीं, बाहर नहीं, कुछ ऐसी बातें अंदर जिन पर ध्यान देना है, लेकिन वो हमारी बहुत डीप रूटेड हो गई है तो उन पर अटेंशन देना होगा. एक है कि सारा दिन में प्रयास करें टू बी क्वाइट, यू नो क्वाइट हियर इनसाइड. जैसे हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक लाइब्रेरी में एंटर होते ही एक अलग सा सन्नाटा हमें मिलता है एंड इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग एक्चुअली. उससे आप उस समय महसूस करेंगे कि आपकी एकाग्रता शक्ति, आपकी इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई चली जाती है क्योंकि यू जस्ट एंटर इनटू एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज पीस. एंड व्हाई देयर इज पीस देयर, बिकॉज हर एक का माइंड इज फोकस्ड ऑन समथिंग. तो वो फोकस होने के कारण से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत कम चलते हैं और इसलिए एकाग्रता शक्ति जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ वायुमंडल में एक सन्नाटा छा जाता है. और उस समय अगर कोई बोलता है
2: बहुत डिस्टर्बिंग होता है.
3: You have to tell the person, keep quiet, क्योंकि नो यू डोंट वांट एनीथिंग टू डिस्टर्ब दैट साइलेंस. इसी तरह अंदर अगर हम देखें तो एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ बहुत सारी विजडम है. जैसे एक लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, अलग अलग शेल्व्स पे कितनी सारी विजडम है, तो वहाँ यहाँ भी बहुत सारी लेयर्स पे बहुत सारी विजडम है, लेकिन आगे नॉइज भी बहुत है. नॉइज है अभी के थॉट्स, इमोशंस, इसने क्या किया, वो क्या किया. अब वो सारी नॉइज में कहीं ना कहीं वो विजडम तक पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड इन दैट नॉइज.
2: आई गेट एंटैंगल्ड इन दैट नॉइज.
3: सो फॉर वन डे ट्राई इट आउट, जस्ट स्टॉप कि मेरे अंदर क्या विजडम है. तो अगर हम ये जो आवाज़ें आएँ इनको अगर हम थोड़ी देर के लिए कह सकें क्वाइट, अभी नहीं, 15 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद, तो जब ये सारे नॉइजेस हट जाएंगे तो बहुत डीप प्रोफाउंड विजडम आपको खुद अपने आप से मिलेगी, जो आपको खुद लगेगा कि ओ
2: इट वाज विदिन मी,
3: ये मेरे को तो पता ही नहीं था कि आई नो दिस, ये मुझे पता ही नहीं था कि आई कैन डू दिस, लेकिन वो नॉइज के बियॉन्ड मिलती है। तो वो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है कि उस नॉइज को कॉन्शियसली साइलेंट करना, क्योंकि वर्तमान समय जब हम जिस माहौल में हम हैं तो बाहर भी बहुत आवाज़ है एंड वो आवाज़ बढ़ने ही वाला है, आई कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट दैट, एंड अंदर भी बहुत आवाज़ है थॉट्स इमोशंस का। सारा दिन में हम बहुत सारी आवाज़ बाहर से कंज्यूम करते हैं और बहुत सारी आवाज़ अंदर क्रिएट करते, तो इससे हमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल लगता शुरू में अंदर साइलेंस क्रिएट करने में, तो कुछ एक दिन के लिए अभ्यास करके देखें, अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंट, कि कॉन्शियसली टॉकलेस, कॉन्शियसली टॉकलेस थोड़े दिन थोड़ा सा कम बोलें, जो अननेसेसरी है ना उसको अवॉइड कर दें, एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अननेसेसरी ही जाती है। तो क्योंकि ये शुरू का है, ऐसे नहीं मतलब सम पीपल विल स्टार्ट फीलिंग अच्छा इसका मतलब हमें यहाँ बोलना है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम अंदर साइलेंस क्रिएट करते हैं तो बाहर अपने आप साइलेंस आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए अंदर साइलेंस क्रिएट करना मुश्किल हो रहा है अभी, तो हम बाहर से जो सारा दिन बहुत कंज्यूम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कुछ एक दिन के लिए ट्राई करें कि कम बोलें, और धीरे धीरे फिर एक और चीज़ उसके साथ ट्राई करें कि जो बोलें थोड़ा सा सॉफ्टली बोले और थोड़ा सा स्लोली बोले। यू नो इट्स बेसिकली परमात्मा हमें बहुत ब्यूटीफुली थ्री वर्ड्स में देते, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। विच एक बार मुझे याद आता, सेंटर पर एक भाई आए थे और उन्होंने एक बोर्ड देखा तो उस पर लिखा था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। He read that and then he said, फिर बोलो क्या? अगर ये तीनों चीज़ें पर मुझे, क्योंकि we are so loud सारा दिन में कि हमें लगता है कम भी बोलना है और मीठा भी बोलना है और धीरे भी बोलना है, तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचेगा। That's how much we are disconnected with the natural rhythm. तो और actually ये तीनों बातें ऐसी हैं कि इनमें से अगर आप एक को पकड़ेंगे बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कम बोलेंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा बोलते हैं तो इट बिकम्स वेरी लाउड।
2: होता ये है ज्यादातर बार देखा गया है कि क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे बोलने से ज्यादा तेज चल रहा होता है, ज्यादा भाग रहा होता है, तो वो इतना ज्यादा हम तेज बोलते हैं क्योंकि हमें उसके साथ कैप्चर करना पड़ता है।
3: इट शुड नॉट बी अ सफोकेशन, बट बहुत लोगों के लिए कई बार वो एक सफोकेशन बनता है क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा। इट्स नॉट लाइक दैट, आप नेचुरल रहो, लेकिन एक कॉन्शियसली अगर आप रियली अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो तो जो अननेसेसरी बातें हैं उसको एक दिन के लिए छोड़ दो।
2: बट हाउ विल इट हेल्प द स्ट्रेस लेवल?
3: इट विल हेल्प द स्ट्रेस लेवल बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस इज टू क्वाइटन माय माइंड। स्ट्रेस कहाँ क्रिएट हो रहा है? यहाँ मेरे से हो नहीं रहा ना, आज इतनी नॉइज है अंदर कि अगर मैं बैठती भी हूँ 10 मिनट्स मेडिटेशन या एक मिनट, जो एक घंटे के बाद हम 1 मिनट पॉज करते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस डू यू थिंक कि वो एक मिनट में रियली पॉज कर पाते होंगे? क्योंकि अगर एक घंटा मेरा इतना नॉइज में बीता तो वो एक घंटा फिफ्थ गियर में चला के डोंट एक्सपेक्ट कि एक मिनट में वो न्यूट्रल में आ जाएगा। इट डजंट हैपन। गाड़ी को भी तो टाइम लगता है एंड वी एक्सपेक्ट इतना फास्ट एकदम ऑफ, इट विल नॉट हैपन। लेकिन अगर मेरा एक घंटा एक अच्छे रिदम पर बीतता है फिर वो एक मिनट
2: आसान हो जाता
3: है, बहुत ईजी हो जाता है उसको करना, अदरवाइज इट्स रियली नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ जो बहुत डीप रूटेड है वो है हमारी अटैचमेंट्स, बहुत सारे, तो उसके लिए हमें फ्रेज जो अपने साथ हमेशा याद रखना होगा वो है लेट गो। ये लेट गो हमने पहले भी बहुत बार शेयर किया था एंड आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद ऑल द फैमिली वॉचिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिन्होंने लेट गो वर्ड तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने पकड़ लिया, दे सेड बट वी कांट लेट गो, यू नो वी वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो। तो वो लेट गो पकड़ लिया एंड दे वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो। तो क्या बोलेंगे आप किसी को? आई वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो। आप एक वृक्ष पर एक पक्षी को देखिए, वो एक टाली पर बैठा हुआ है, अगर उसको उस टाली से उड़कर दूसरी टाली पर जाना है, अगर वो पंछी वहां पर बैठ जाए, आई वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो, ही नेवर फ्लाई। लेट गो मीन्स लेट गो। हम सर्कस में जाते थे बचपन में, तो वो ट्रपीज पे नहीं वो जाते हैं,
2: वो छोड़ते हैं दूसरा, जब तक
3: एक को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम फ्लाई कर ही नहीं सकते दूसरे की तरफ। लेकिन अगर हम उसको पकड़ कर रखेंगे, एंड नॉर्मली छोड़ेगा कौन नहीं, जिसको डर लगता है,
2: फियर,
3: आई हैव फियर ऑफ लूजिंग दिस, आई हैव फियर ऑफ इनसिक्योरिटी
2: एंड नॉट गेटिंग द अदर थिंग,
3: एब्सोल्युटली, कि मैंने ये वाला भी छोड़ दिया
2: और वो भी नहीं मिलेगा,
3: मुझे वो वाला नहीं मिलेगा। तो उस प्रोसेस में हम बहुत सारी चीजों को टाइट पकड़ के रखते हैं, लोग, हमारी आइडेंटिटीज, लेबल्स जो हमने बहुत सारी पकड़ी, ऑब्जेक्ट्स।
2: बट पीपल आर गोना से व्हाई शुड आई लेट गो,
3: नो, व्हेन वी से व्हाई शुड आई लेट गो, दैट मींस व्हाई शुड आई लेट गो ऑफ माय स्ट्रेस आल्सो देन, बिकॉज अटैचमेंट क्रिएट्स स्ट्रेस। तो लेट गो डज नॉट मीन कि उनको छोड़ दो या उनको जाकर उनसे अलग हो जाओ, लेट गो मीन्स वो हैं आपके साथ और वो आपके साथ ही रहेंगे, जो वस्तु आपके पास है वो आपके पास ही रहेगी, आपको उठा के अपनी गाड़ी किसी और को नहीं देकर आनी है, लेकिन उस गाड़ी को अंदर या उस व्यक्ति को अंदर जो पकड़ कर रखा हुआ है वो लेट गो, क्योंकि वैसे वो व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ वो अटैचमेंट आ गई तो एक्सपेक्टेशन आएगी, एक्सपेक्टेशन आएगी पूरी

0: आत्मा हो, तो आत्मा के पास एक्चुअली कोई अपना पोजेशन
1: हो नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली जो हम सारा दिन कहते हैं ये मेरा है, आप मेरे हो, यू नो कितने लोग बोलते हैं आप मेरे हो, रियली आस्क योरसेल्फ, आई हैव टू, डज रियली समबडी बिलोंग टू यू, क्या कोई है जिसको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं?
1: लेकिन यहाँ ये बहुत
0: चैलेंजिंग।
1: अच्छा, यहाँ एक सवाल हम आगे बढ़ने से पहले एक जुड़ता है कि अगर हम समझ भी लेते हैं कि देयर इज अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, जो मुझे, जो मेरे लव्ड वंस हैं, जब मैं वो डिटैचमेंट के पे आ जाती हूँ, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, समवेयर दे ऑल स्टार्ट फीलिंग कि दैट लव विच यूज टू फ्लो, विच वॉज देयर, विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मे बी पोजेसिवनेस और वट एवर, इज नॉट देयर एनी मोर,
0: देन आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आई एम डेफिनेटली, अगर किसी को मेरे जो नज़दीकी संबंधी या दोस्त हैं, अगर उनको एक बार भी मुझसे ये फील होना लग जाए कि पहले जो इनका प्यार था वो नहीं है, आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक, फिर मैंने डिटैचमेंट को एक्चुअली सही रूप से नहीं समझा, क्योंकि वो ही लोग हैं, वही फैमिली है, वही पेरेंट्स, वही बच्चे, वही सब है। पहले था अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है, आपका
1: पर उसके लिए मैं सब कुछ करती जाऊंगी ना, फिर
0: नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है?
1: उसी पे कि वो एक्सेप्ट कर
0: रहे हैं, बिकॉज़ आई एम अटैच्ड टू यू, तो मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है। आपका एक बोल, एक वर्ड मुझे सारा दिन उदास कर सकता है, राइट? जब आपका एक वर्ड मुझे सारा दिन उदास कर सकता है, मैंने आपके लिए कौन सी एनर्जी क्रिएट की उस दिन सारा दिन? सो कॉल्ड लव्ड वंस, यू नो, अगेन एवरीवन इज आवर लव्ड वंस, बट व्हाट इज द एनर्जी एक्सचेंज टुडे? क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपसेट कर दिया, मेरी, मैं आई एम अटैच्ड टू यू, तो मेरी खुशी आपके एक एक बोल पर डिपेंडेंट है। आपका एक ऐसी डिटैचमेंट मतलब क्या? डिटैचमेंट मतलब हम लोगों से दूर नहीं हो जाते।
1: ओके, मेरी खुशी जो है वो आपके बोल पर डिपेंडेंट नहीं होगी,
0: मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं, मेरी खुशी किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी पोजीशन पर, किसी अचीवमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज डिटैचमेंट। वो कब आती? जब मुझे समझ में आता मैं आत्मा हूँ ही आनंद स्वरूप। ये जब समझ में आता, अभी तक थी इट वॉज डिपेंडेंट ना, दैट्स वाई आई वॉज होल्डिंग ऑन टू यू। अब इंटरनली भी आपको छोड़ देना, मुझे क्यों डर लगता है? क्योंकि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है, तो आप चले गए, मेरी खुशी, एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स, दैट्स बॉटम लाइन, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन। तो इवन इफ आई से आई एम वेरी अटैच्ड टू यू, इट्स नॉट फॉर यू। विदाउट सोल कॉन्शियसनेस हमें डिटैचमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आ सकता। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब अटैचमेंट है ही है, वो अटैचमेंट क्रिएट नहीं करनी पड़ती, हमारा इतना डीप रूटेड संस्कार वो बन गया। जब आई से आई फियर कि आप चले ना जाओ या आपको कुछ हो ना जाए, तो इट्स लेस अबाउट आपको कुछ ना हो जाए, इट्स मोर अबाउट मुझे क्या होगा अगर आप चले गए। लेकिन अब जब माई सेल्फ का मीनिंग समझ में आ गया, तो अब मेरा क्या होगा इज नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। तो वो डिटैचमेंट है कि डिटैचमेंट मतलब मैं सबके साथ रहूंगी लेकिन मेरी खुशी उन पर डिपेंडेंट नहीं है। इमेजिन फॉर वन डे ऑल्सो इफ यू कैन अचीव दिस, यू नो, आप रियली उस स्थिति को अपने बना लो कि एक दिन के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरे फैमिली में जो है वो मेरे को कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो मेरे कहे अनुसार चले या नहीं चले, वो अपनी मर्जी से चले, तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे, डू यू फील लव कम हो जाएगा?
1: हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेरी होके अगर हम चलेंगे तो
0: दैट्स नॉट डिटैचमेंट, वो तो रूखापन, वो तो एक रूखापन आ जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन कई बार उसको हम कहीं बाहरी रूप से करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ना सबसे थोड़ा सा दूर दूर कटे हुए रहना है। डिटैचमेंट मतलब जो आई हैव एक्सपीरियंस, डिटैचमेंट उल्टा मुझे और भी लोगों के करीब ले आती है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है ना उनके ऊपर। अभी क्या था और उससे क्या होता है, मुझे सिर्फ कुछ लोगों के करीब नहीं, मुझे ज़्यादा लोगों के करीब ले आती है, बिकॉज आई डोंट हैव ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, आई एम विद एवरीबडी, बिकॉज सोल कनेक्टिंग टू द सोल, इट्स विद एवरीबडी। तो डिटैचमेंट को बाह्य रूप से नहीं लेना कि अच्छा आपको दर्द हो रहा है या आपको तकलीफ है, होता रहे, इट्स नॉट माय कंसर्न, नो, आपको दर्द हो रहा है, आई एम टोटली विद यू, लेकिन मैं दर्द को कंज्यूम नहीं करूंगी,
1: इट विल नॉट बी माय पेन।
0: अब वो आपका दर्द है, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू, बट आई विल नॉट गो इनटू पेन। अर्लियर अगर आपको दर्द हो रहा था तो मुझे भी दर्द हो रहा था। अब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें ये आदत पड़ी होती है कि

0: मुझे दर्द हो रहा है तो आपको भी दर्द होना चाहिए साथ में, क्योंकि मेरी बिलीफ सिस्टम वो बनी हुई है कि वो प्यार है, कि एक माँ को दर्द हो रहा है तो एक बेटी को दर्द होना ही चाहिए। अब अगर माँ के दर्द से बेटी को दर्द नहीं हो रहा, तब अगर माँ को ये महसूस होने लगे कि अब तो इसका मुझसे कोई प्यार नहीं है, देन माई रॉन्ग बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड। बट इट विल नॉट हैपन। वाई इट विल नॉट हैपन? क्योंकि दर्द जब नहीं होगा ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस ऑफ लव एंड कंपैशन यू विल गेट फ्रॉम द अदर पर्सन, एंड दैट विल हील माई पेन। तो पहले दो मरीज थे,
1: अब वो दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा,
0: एक ठीक हो जाएगा तो दोनों ठीक हो जाएंगे। तो वेयर इज इट एनी वेयर गोइंग टू बी डिसएडवांटेजेस? अब जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो रिलेशनशिप्स, अब क्या होता है परिवार में, एक दर्द में सारे दर्द में, एंड वी फील कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हमारी, हम सारे दर्द में, एंड वी लिव्ड विद दिस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कि वी आर सो क्लोजली निट कि अगर एक दर्द में होता है तो सारे दर्द
1: का रिश्ता है, यू नो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ पेन, वी ऑल एक्चुअली टॉक्ड अबाउट।
0: स्नेह का रिश्ता होने के बजाय वी वर मोर प्राउड कि हमारा दर्द का रिश्ता है। दैट सो दीज आर बिलीफ सिस्टम्स व्हिच नीड टू बी चेक्ड, क्योंकि दर्द अगर सभी में है तो मतलब एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज भी दर्द है। आत्मा का आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज अगर नेगेटिव होगा तो कभी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। बाहर से हमें लग रहा है कि हमारी बहुत बॉन्डिंग है, सो दैट इज डिटैचमेंट, जो आज बहुत एक कॉमन चीज है कि आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत लोग सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग क्या होता है? आर्ट ऑफ डाइंग इज लेट गो। क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग में क्यों मुश्किल होती है, मृत्यु के समय हमें क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि हमें फोर्सिबली लेट गो करना पड़ता है। हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसे बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ता है, और वो नहीं करना चाहती है तो उसको शरीर से भी अटैचमेंट बहुत है। तो अगर हमने ये लेट गो का प्रोसेस अपने जीते जी कर लिया होगा, तो दैट्स आर्ट ऑफ डाइंग, दैट यू ऑलरेडी लेट गो ऑफ एवरीथिंग। आई एम फ्री, I am independent because I am actually, मैं किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, attached नहीं हूँ, ये मैंने क्रिएट की है। तो इसको थोड़ा सा, इट इज लिटल डीप, बट मैं अगर सारा दिन में इसको करके देखूँ, इट्स ईजी ऑल्सो। सिर्फ कॉन्शियस अवेयरनेस चाहिए कि मेरी किन चीज़ों से अटैचमेंट है। अगर वो एक बार हो जाए, लेट गो करना ज़्यादा ईजियर है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है अपनी अटैचमेंट्स को, क्योंकि कई बार हमें भी नहीं पता चलता।
1: डेफिनेटली द मोमेंट यू नो दिस जर्नी स्टार्ट्स, इनर जर्नी, और जब हम बाहर की चीज़ों के लिए भी देखते हैं तो हमें खुद पता ही नहीं होता कि हम कितने अटैच्ड हैं। सिस्टर शिवानी, आज दो बातें जो बिल्कुल एस्पेक्ट्स आप समझ में आए, कि जब हमें टेंशन से या स्ट्रेस से दूर करने की बात है कि पीस, साइलेंस, यू नो समवेयर दैट साइलेंस, और तीन बातें जो बाबा के महावाक्य के रूप में भी हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज लेट गो। किस तरह से वो जो अटैचमेंट्स हैं उनका एक लिस्ट बना लें अगर हम, और फिर उनके बिना जीवन कैसा होगा उसे समझ लें और उस पेन से दूर हटने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी चीज़ को जो हम संभव करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो सकता है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगता है कि ये संभव है, स्ट्रेस को दूर करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस में रहना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, इतना मुश्किल नहीं है। हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अपना अनुभव खुद को खुद के सामने लेकर आएंगे और फिर जानेंगे कि डिड इट हेल्प। और उसके आगे अगर हम जाते हैं लेट गो, लेट गो उन अटैचमेंट्स का जो मुझे कहीं ना कहीं पेन दे सकती है, उनकी एक लिस्ट बना के, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, और उसके बाद उनके बिना ज़िंदगी कैसी होगी ये कोशिश करके देखें। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं UK 4407530426770, USA 1347448 2359, इंडिया 9199744455, और हमारा ईमेल आईडी है awakening@bkmail.org। इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आज जिन एक्सरसाइजेस पर, जिन छोटे छोटे टिप्स के साथ हमने कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है वो ज़रूर करेंगे। इसी वादे के साथ दीजिए इजाज़त। ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

0: रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग इस प्रोग्राम को जो है जीवन विकास नाम से भी जानते हैं। तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी जीवन यात्रा में जो भी मेन तो है हमारा पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर हम लोग अपना एक बिजनेस करते हैं या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं या फिर कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है। और इन्हीं चीजों में जो है करियर करे, बिजनेस करे, कैसे करे, इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो ये सोचने का मौका हमें 10वीं 12वीं के बाद हम लोग इससे फोकस करते हैं, और कई लोग तो 8वीं 9वीं से भी शुरू कर देते हैं, और कई लोग बचपन से ही माँ बाप जो है बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो इस तरह की कई बातें होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको इन सारी बातों से, जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, सफल करियर बना चुके हैं, उन लोगों की जीवन कहानी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना करियर को कैसे चूज किया। तो आज के हमारे खास मेहमान गुणवंत परमार सर हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे। आप दूरदर्शन से रिटायर हुए हैं ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट से, और दूरदर्शन में काफी आपने अलग अलग काम भी किया, मुंबई, गुजरात वगैरह, दिल्ली। तो मैं चाहूंगा कि आज हम लोग गुणवंत परमार जी की जीवन यात्रा के साथ साथ करियर पे उन्होंने किस तरह से कब फोकस किया, कैसे उनका करियर उन्होंने बनाया, क्या क्या पापड़ बेले और सफलता उन्हें कब मिली, ये सारी बातें हम उनसे जानने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से गुणवंत परमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं गुणवंत सर?
2: बस मजे में। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे फिर से एक बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो गुणवंत सर, मैं चाहूंगा कि आप करियर के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले तो अभी आप बताइए कि आपका बचपन कहाँ भी था और किस जगह से आपने स्कूलिंग वगैरह जो है प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा बोलते हैं वो कहाँ और कैसे, और उस समय आपके माता पिता क्या करते थे, थोड़ा सा बताइए।
2: हाँ जी, तो मेरा तो जन्म अहमदाबाद में हुआ था। हाँ। और मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ इनकम टैक्स, वो पहले मैं असारवा एरिया में मकान था हमारा। हाँ। और फादर मदर दोनों मिल में सर्विस करते थे। हम दो भाई और तीन बहनें थे। मैं सबसे छोटा लड़का भाइयों में। मेरे से दो बड़े भाई थे, वो बड़े भाई तो सर ये गवर्नमेंट जॉब करते थे। उससे बीच वाले जो भाई है वो सेक्रेटरी ऑफ यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटी थे। वो कोरोना काल में, कोरोना टाइम में एक्सपायर हुए। तो बड़े भाई उससे पहले हुए थे। मैं फिर अहमदाबाद ओम नगर सोसाइटी जहाँ कहते असर वैरिया वहाँ रहता थे। वहाँ मेरा जन्म हुआ तो 4 साल के बाद स्कूल में रखना, तो मेरे बगल में ही यानी मेरे घर के पास में ही स्कूल था। अच्छा। और बीच में सिर्फ एक दीवार थी, तो मुझे पिताजी उठा के रख देते थे ऐसे ही जाओ स्कूल में पढ़।
1: तो गवर्नमेंट स्कूल थी कि प्राइवेट स्कूल थी?
2: नहीं, गवर्नमेंट स्कूल थी। एक से चार तक वहाँ पढ़ा, फिर चार के बाद दूसरी एक स्कूल थी, वो भी उसमें 4 से 2 साल ही वहाँ रहा। बाद में असारवा विद्यालय करके थी असारवा में, उसमें मैं 11वीं तक वहाँ पढ़ा।
1: अच्छा, उसके बाद वो स्कूल क्या दूर था कि वह भी पास ही था?
2: नहीं, वहाँ से दूर था, वो साइकिल लेके जाते थे हम थोड़ा।
1: अच्छा अच्छा।
2: या तो बस है, मगर बचपन में मुझे बस में वॉमिटिंग बहुत होती थी, यानी थोड़ा भी एक दो स्टॉपेज गया तो बस में उल्टी हो जाती थी।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ज्यादा बस में नहीं बैठता था, फिर पिताजी ने साइकिल लेके साइकिल पे जाते थे। अच्छा, और स्टडी किया 11 तक। 11 के बाद हमने CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, उसमें आर्ट का कोर्स किया। जब मैं कॉलेज में था इसमें पढ़ता, तो पिताजी तो मिल में सर्विस करते थे, तो पिताजी को ये आर्ट या इसका कुछ नॉलेज इतना नहीं। वो बाद में मुझे डांटते थे कि भाई ये लीटा था, यानी ड्राइंग करने से आपका लाइफ नहीं बनेगा, कुछ पढ़ो, कुछ ठोस पढ़ाई करो, तो डिग्री पाओ तो कुछ बनेगा, ऐसा बात कहते थे। अच्छा, जब मैंने कॉलेज होने के बाद मुझे सिविल हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट में सर्विस मिल गया था।
1: फाइन आर्ट्स वाला फिर आई डिपार्टमेंट में कैसे?
2: आई डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट का पोस्ट था।
1: अच्छा, उसमें क्या करना होता था?
2: वहाँ जो डॉक्टर ढांडा करके बहुत वेल नोन आंख के डॉक्टर थे, उनके मैं ऑपरेशन मुझे दिखाते थे ऑपरेशन थिएटर में जाके, फिर वो पूरा ऑपरेशन कैसा उसका मैं बाहर आके स्केच बनाता था, स्केचेस।
1: अच्छा।
2: तो वो स्केच के ऊपर से वो स्टूडेंट को सिखाते थे कि भाई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्मूंगा। सब स्टूडेंट को तो ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जा सकते।
1: बिल्कुल।
2: फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वो मेरे स्केचेस के ऊपर से वो बताते थे कि ऐसा ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो आर्टिस्ट की पोस्ट वहां थी, उसमें 2 साल करीबन सर्विस किया। बाद में मैं ऐसे ही रमत में ही अप्लाई कर दिया था, बॉम्बे दूरदर्शन में पोस्ट आया था आर्टिस्ट का, ग्राफिक आर्टिस्ट।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था बिनल पटेल कर, दोनों ने हमने अप्लाई किया तो इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू आया तो हमने तो बॉम्बे देखा नहीं था लाइफ में, कभी गए नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड बोला चलो घूम के आते अपन, इंटरव्यू तो आया है तो उसी बहाने घूम के आते। तो एक्चुअली इंटरव्यू को तो हमने ऐसे ही दिया, ऐसे ही जैसे हम घूमने गए, सीरियसली नहीं दिया था उसको हमने।
1: बिल्कुल।
2: मगर इंटरव्यू में लकीली हमको सिलेक्ट हो गए। तो घर आए जैसे वहां से बॉम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद तो सीधा टेलीग्राम आ गए, आप सिलेक्ट हो गए, आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना है। और तब मैं सर्विस करता था, फादर मदर छोड़ने के लिए तैयार नहीं गया, तो तुम वहां जाओगे तो हम, और मैं सबसे छोटा था, मेरी जिम्मेदारी रहती थी फादर मदर के साथ रहने।
1: तो उस समय फिर घर में कौन कौन थे, बाकी लोग थे?
2: उस समय घर में बड़े भाई भी थे, वो दोनों भाई भी थे, मेरी सिस्टर दोनों की शादी हो गई थी। और काफी मगर फैमिली बड़ा था तो पिताजी और माताजी मिल में थे, अर्निंग करते
1: थे। तभी भी वो मिल में काम करते थे पिताजी और माताजी।
2: हाँ, तभी भी कभी कभी रात को जाते थे, वो लाइट लेट नाइट ड्यूटी होती थी ना, उसमें कभी कभी जाते, वैसे वो रिटायर। फिर मैंने जब वो सिविल के तनख्वाह ला के दिया 350 रुपये उस टाइम फर्स्ट टाइम, तो पिताजी ऐसे गदगद हो गए कि यार मैंने खाम का तुमको डाटा है, लीटा में से ही तूने तो बहुत कमाई कर ली है। उसको तो क्योंकि पूरे महीने के उनके 100 रुपये मिलते थे और मेरे एक ही महीने में सीधा 350 तनख्वाह गए, तो माता जी और पिताजी तो एकदम खुश हो गए कि चलो इनके तो लाइफ बन गई करके। फिर ऐसे ही 2 साल होने के बाद जब बॉम्बे इंटर देने गए, सिलेक्ट हो गए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि भाई तुम वहां जाओगे, तो वैसे बड़े भाई भी साथ में थे, उनके भी तनख्वाह थी, घर चल रहा था, ऐसा कुछ फाइनेंशियल फिर धीरे धीरे कम प्रॉब्लम
1: स्टेबल हो गया था,
2: स्टेबल हो गया था। फिर मुझे पिताजी ने बोला कि देखो हमने तो तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको पंख आई है, अब तुम उड़ो, तुमको जहाँ उड़ना है। यानी पिताजी की मर्जी थी कि हम जाए, मम्मी की थोड़ी कम मर्जी थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: फिर भी हम वहाँ नोटिस पे भर के सिविल हॉस्पिटल में वो छोड़ के, मैं और मेरा बिनल पटेल फ्रेंड था, वो दोनों ज्वाइन किए बॉम्बे।
1: तो सिविल हॉस्पिटल वाले आपको मना नहीं कर रहे थे?
2: नहीं, मना ही कर रहे थे कि मत जाओ करके, तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट हमको मिलेंगे नहीं। मगर वहाँ मुझे तब बहुत खराब अनुभव ये हुआ कि वो जो डॉक्टर थे, बहुत नामी डॉक्टर थे, उनके ऑपरेशन के सब स्केचेस मैं करता था। और उन्होंने लंदन में जाके एक बुक लिखी थी, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, यानी आंख के ऊपर ही कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, कैसे आंख बदलने का जो ऑपरेशन होता है, उसके ऊपर अगर लिखा बुक लिखी थी। वो बुक में करीबन मेरे 150 ड्रॉइंग थे, मैंने खुद ने किए हुए।
1: अच्छा।
2: उस टाइम एक एक दो दो महीना लेकर मैं ड्राइंग करता था। वो पूरे बुक में वो ड्राइंग मेरे ही छपे थे, बुक भी काफी उसकी चर्चा में रही। फिर मैंने
1: तो
2: देखा
1: फिर कुछ आपको रॉयल्टी वगैरह दिया
2: क्या? नहीं, मुझे उसके फ्रंट पे जो मैंने एक्नोलेज पढ़ा उसने किसका किसका आभार माना था डॉक्टर ने, तो उसमें मेरा कहीं नाम निशान नहीं। अच्छा। तो मुझे बहुत बुरा लगा।
1: तो आपने पूछा नहीं फिर उनको?
2: मैंने पूछा तो वो क्या डॉक्टर लोग को आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं है साइक मेंटली।
1: अच्छा,
2: तो उसने मुझे लाइटली लिया था कि नहीं तुमने तो तनख्वाह ली है ड्राइंग की, उसमें क्या है। अरे बाकी लोग जो टाइपिस्ट तक का उसका नाम दिया था, जो नर्स उनको अटेंड कर रहे थे ऑपरेशन, सबको क्रेडिट दिया था, मेरा कहीं जिक्र नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगा और उसी टाइम मैंने ये एप्लीकेशन किया था और मैं सिलेक्ट हो गया। तो छोड़ते नहीं थे, 1 मंथ नोटिस भेज दिया और मैं छोड़ के गया। मैं बोला भाई, बोले तुम क्यों यहाँ, तुमको क्या तकलीफ है? वहाँ की लेडी डॉक्टर थी, उसने मुझे उसकी कार में 1 घंटा घुमाया सिविल के आसपास और समझाया कि तुम मत छोड़ो। मैं बोला नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे अहमदाबाद में रहना है, ऐसा झूठ बोल के मैं नौकरी छोड़ दिया और वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइनिंग करने गए तो डायरेक्टर वहाँ का बोलता है कि आपको तो हमने टेलीग्राम भेजा है, आपको सीधा दिल्ली जाना है ट्रेनिंग लेने के लिए। टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर उस टाइम दिल्ली में मंडी हाउस में था, और मंडी राजा का जो महल था उसमें ट्रेनिंग थी।
1: अच्छा,
2: मैं बोला यार एक तो अहमदाबाद छोड़ के बॉम्बे है,
1: बॉम्बे
2: बॉम्बे वाला
1: आया,
2: सीधा
1: बॉम्बे से फिर
2: दिल्ली हुई
1: दिल्ली
2: थी।
1: कहाँ
2: फिर
1: भेजा। अच्छा
2: वापस घर आए तो घर से मना कर रहे थे कि भाई आप दिल्ली जाओगे फिर कब बॉम्बे आओगे फिर कैसे रहेगा।
1: हाँ,
2: मैं ऐसा करके महीना निकाल दिया, तो बाद में उन्होंने लेटेस्ट टेलीग्राम भेजा कि 15 दिन में अगर आप नहीं ज्वाइन करेगा मजबूरन किसी और को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
1: तो उन्होंने उस समय जो आपको टेलीग्राम वगैरह किया था तो क्या अपॉइंटमेंट हो गई थी आपकी? सिलेक्ट
2: हाँ, अपॉइंट सिलेक्ट कर लिया था
1: कर
2: कैसे
1: लिया था
2: आर्टिस्ट।
1: तो
2: हाँ
1: कितना मंथली पेमेंट वगैरह
2: मैं
1: सब बता दिया था?
2: वो ज्यादा था, यानी अहमदाबाद से थोड़ा ज्यादा था, मगर
1: हाँ,
2: उतना मगर वहाँ कैरियर का ऑप्शन ज्यादा था। यहाँ क्या, मैं आर्टिस्ट की पोस्ट में पड़ा रहने वाला था,
1: लाइफ
2: वहाँ
1: टाइम
2: मुझे
1: यही तो
2: आर्टिस्ट
1: रहते थे।
2: हाँ
1: हाँ
2: वहाँ आर्टिस्ट की पोस्ट में पड़ा। मैं फ्रेंड लोगों ने भी मुझे पुश किया कि नहीं तुम जाओ तुम्हारा लाइफ बन जाएगा, क्योंकि तब
1: बिल्कुल
2: टेलीविजन
1: बिल्कुल
2: नया नया था, पहला
1: हाँ।
2: सेंटर खुला था बॉम्बे, उसके बाद दिल्ली, बाद में बॉम्बे खुला था, और वो फर्स्ट ओपनिंग के टाइम ही लगभग करीबन हम 72 में वहाँ ज्वाइन किया, तो
1: ओके ओके,
2: काफी टाइम पहले। तो
1: बहुत
2: वहाँ
1: बढ़िया।
2: वहाँ ज्वाइन करने गए तो बोला आपको तो सीधा ट्रेनिंग जाना है वहाँ मंडी हाउस दिल्ली, फिर वापस आए कैसे भी घर वाला को पहुंच जाए, फिर हमने टेलीम क्लियर किया ठीक है हम जाते, तो 6 महीने के
1: हाँ
2: लिए हम सीधा दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर चले गए। वहाँ वहाँ जो
1: अच्छा
2: ट्रेनिंग देने के लिए स्टाफ आए तो सीबीसी लंदन से आए, तो पूरा फॉरेनर, और हमने इतना इंग्लिश काफी पढ़ा नहीं था, तो मैंने वहाँ इंग्लिश के क्लासेस ज्वाइन किए और सीखा
1: ओके
2: इंग्लिश की बात। फिर हमको जो सिखाने वाला आया था वहां से कनाडा से सीबीसी से लंदन से, वो आर्ट वर्क करके था, बहुत ही जेंटलमैन था, वो जब तक
1: हाँ
2: हम मुंडी ऊपर नीचे नहीं करें तब तक वो हमको समझाता ही रहता था, उसको पता था कि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है,
1: बिल्कुल
2: फिर भी ड्राइंग कर करके फिर उसने हमको ऑफर रखा उस टाइम कि आपको हम कनाडा ले जाना चाहते हैं अगर आप तैयार है
1: बिल्कुल
2: तो सीबीसी, क्योंकि हमारा उसने हमारा काम देखा तो इतना इम्प्रेस हो गया था कि नहीं आप कैसे भी करके आप बोलो। मैं बोला सर हम हमारे फैमिली को छोड़ के इतना दूर नहीं जाए। वो बहुत 6 महीने तक उसने काफी हमको प्रेशर किया कि तुम्हारा गारंटी पासपोर्ट वीसा रहने का सब इंतजाम मैं कर दूंगा, मगर हमारा दोनों का मैं और पटेल करते था मेरे दोस्त दोनों को ले जाना चाहता था,
1: अच्छा।
2: हमने मना किया कि भाई नहीं हम नहीं आ सकते सॉरी करके।
1: चलिए आगे
2: बॉम्बे जो
1: बढ़ते हैं। गुणवंत परमार जी,
2: हाँ
1: बहुत ही
2: जी
1: अच्छी बातें बताया आपने। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और
2: हाँ
1: उसके
2: जी
1: बाद फिर यात्रा जो है दिल्ली
2: ठीक
1: में और क्या
2: ठीक
1: क्या हुआ उसके बारे में आपसे
2: राइट
1: जानेंगे।
2: हाँ
1: आप
2: जी
1: सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कर।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही प्यारी बातें हो रही हैं करियर में और किस तरह से हम लोग जो है, कई बार होता है कि हम लोग आज के समय में जो प्रोफेशन है उसको देखकर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और कई बार जो है कलाएं हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट है, जैसे आर्ट की बात करें या संगीत की बात करें या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की बात करें या डांस की बात करें या फिर आप कुछ ऐसे हट के कुकिंग की बात करें, खाना बनाना भी बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये सारी चीजें शायद हम लोग मेन स्ट्रीम में कभी भी परिवार वाले इन चीजों को करने के लिए मना करते हैं, बोले ये क्या चीज है। तो मैं भी बीच में एक बार होटल मैनेजमेंट के लिए पिताजी से बात किया तो मेरे को एकदम से उन्होंने बोला कि ये क्या तेरा पोजिशन है, क्या खाना वाना बनाएगा तू, वेटर बनेगा। तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी एक करियर है, इसमें प्रोफेशन है और इसमें भी अच्छा कमा सकते हैं। तो मना उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें। अगर कोई बंदा बोले कि भाई मुझे गिटारिस्ट बनना है, अरे बोले पगला गए, गिटार वटर तो साइड में बाद में बजाना, पहले पढ़ाई करना, पहले पढ़ाई के साथ साथ में आप उसको सैटरडे संडे खाली हॉबीज की तरफ उसको ले लो, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी कई चीजें हमारे परिवार में होती हैं, लेकिन आपका अगर जिज्ञासा है और बहुत ज्यादा आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप वे बिंदास थोड़ी देर के लिए आप कॉम्प्रोमाइज जरूर करें, क्योंकि उस समय पिताजी या माताजी या कोई परिवार वाले आपको समझने वाले नहीं होते अगर आप बताएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप वो चीजों को उनके सामने जाहिर ना करते हुए आप पढ़ाई भी करें हल्का और साथ में अपने पैशन को जो है बरकरार रखें, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो टाइम है वो पढ़ाई में दिए और बाकी जो बचता है आप टाइम, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आप पूरी तरह से आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ सकें। तो आइए इस हम लोग जीवन विकास के कार्यक्रम में बातें कर रहे हैं। गुणवंत परमार जी हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और वो अपनी यात्रा के बारे में हमें बता ही चुके हैं, और निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आगे क्या हुआ होगा, है ना। तो अब दिल्ली पहुंचे हैं हम लोग, 6 महीने का ट्रेनिंग और इनको कनाडा का ऑफर भी मिल रहा है। तो ऐसे ट्रेनिंग किस तरह की, क्या क्या चीजें हुई उसमें, वो अभी जानेंगे। तो गुणवंत परवार जी बताइए, दिल्ली की ट्रेनिंग 6 महीना आप कैसे बिताए, क्या क्या इवेंट हुए, क्या चीजें आपने सीखा और क्या चीजें आपको सिखाई गई।
1: सही बात है, वहाँ दिल्ली में हमको जो प्रोग्राम बनते थे उसके प्रोग्राम के टाइटल बनाने का सिखाया गया, क्योंकि
0: अच्छा
1: कॉलेज में जो सीखे है उससे तो अपार्ट फ्रॉम ये कुछ अलग ही था। उसको
0: ओ
1: कैप्शन कहते थे, टाइटल वगैरह। हर एक प्रोग्राम में हर एक प्रोड्यूसर को एक असाइनमेंट दिया जाता था कि आपको इसको, ये प्रोड्यूसर को हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, कोई प्रोड्यूसर को ग्राम जगत के ऊपर, कृषि के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, कोई सी प्रोड्यूसर को स्पोर्ट्स के ऊपर, और सबको बांट दिया जाते थे प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम वो हमको प्रोड्यूसर आके एक्सप्लेन करता था कि मेरा प्रोग्राम का कंटेंट ऐसा ऐसा है और हमें इसका टाइटल वगैरह बनाए, जैसे फिल्म के टाइटल होते हैं ऐसे प्रोग्राम के टाइटल है। तो टाइटल इस एकदम सोच समझ के बनाना पड़ता है, उस टाइटल से ही पता चले कि प्रोग्राम में कंटेंट्स क्या आने वाला है। ऐसे जैसे
0: अच्छा।
1: रसोई शो है तो रसोई शो में रसोई बनती हुई बैकग्राउंड में रखे और उसके ऊपर टाइटल सुपर करे, ऐसा होता है। फिर कुछ सपोज जर्नी का है, ट्रैवल का, तो ट्रेन से जाता हुआ शॉर्ट हो उसके ऊपर टाइटल सुपर करे, या प्लेन जाता हुआ उसके तो ट्रैवल का पता चले। ऐसा वो जो भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम है उसके मुताबिक टाइटल बनाने करे। तो जो जो जो वहाँ प्रोग्राम बनाए उसमें ने बनाए, फिर वहां से स्टूडियो से, वहां से एक बार वहां पे उसी टाइम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था दिल्ली में,
0: अच्छा
1: वो फर्स्ट टाइम दूरदर्शन ने वहां कांच का पूरा स्टूडियो बनाया था वो फेयर में, ताकि पब्लिक को पता चले कि दूरदर्शन टेलीविजन कैसे काम करता है।
0: जी जी
1: तो हमारा ड्यूटी वहाँ डेप्यूटी हुआ था, तो मैं, मेरा मित्र फ्रेंड पटेल वगैरह दोनों को आर्टिस्ट करके वहां रखे थे, बाकी प्रोड्यूसर लोग वहाँ प्रोग्राम बनाते थे। हमको वहाँ टाइटल बनाने के लिए मैटर दिया जाता था, हम ऑन द स्पॉट टाइटल बनाते थे। वो कांच से बाहर लोगों को दिखता था कि भाई ये इसका प्रोग्राम का इन्होंने ये टाइटल बनाया, ये कैमरा के ऊपर गया, ये सुपर हुआ, ऐसा करके पूरा समझ में आए पब्लिक को। तो वहां से जब वो भी पूरा अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ हमें, फिर वापस यहाँ से पूरा ट्रेनिंग होने के बाद हमको सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई आपने टेलीविजन फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग आपने पूरा किया है। उसके बाद हमको ट्रांसफर फिर वापस बॉम्बे भेज दिया गया। बॉम्बे में करीबन 35 प्रोड्यूसर रहते थे, वो 35 प्रोड्यूसर के सबके रिक्विजेशन, जो टाइटल रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास आती थी, मैं ग्राफिक सुपरवाइजर, फिर मुझे 2 साल में ही वहाँ प्रमोशन मिल गया बॉम्बे में एज ए
0: अच्छा।
1: ग्राफिक सुपरवाइजर। तो मैं सुपरवाइजर बना और मेरे साथ जो आर्टिस्ट है वो मेरे अंडर में रहते, तो करीबन 12 आर्टिस्ट थे वहाँ बॉम्बे में। तो 4 लैंग्वेज का काम वहाँ होता था, हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश, और चार
0: अच्छा।
1: लैंग्वेज के तीन तीन मैंने आर्टिस्ट बांट दिए थे, 12 थे टोटल, तो तीन तीन हर एक लैंग्वेज के लिए आर्टिस्ट बांट दिए,
0: बिल्कुल।
1: 3 गुजराती के, 3 इंग्लिश के, 3 मराठी के, और ऐसे करके वो सबको जैसे भी जिसका भी जो लैंग्वेज का काम है वो उसको मैं मार्क करके दे देता था, और वो लोग प्रोग्राम वो टाइटल वगैरह बनाते थे। टाइटल में कुछ स्पेशल इफेक्ट चाहिए ऐसा कुछ है तो मेरा कांटेक्ट करते थे मुझे सुपरवाइजर।
0: अच्छा।
1: फिर वहाँ काफी हमने काम किया, हर एक मेरा अंडर में जो भी आर्टिस्ट था वो करीबन पर डे उस टाइम पे बाय हैंड 70 टाइटल्स बनाते थे पर डे, यानी इतना वर्कलोड रहता था
0: अरे बाप रे।
1: और काफी काम लोग करते थे। फिर उसमें धीरे धीरे हमने एनिमेशन यानी थोड़ा मूवमेंट जैसा आए वो दिखाने पड़े ऐसा है। तो उसमें दूरदर्शन बॉम्बे के लिए फर्स्ट टाइम वो केदार शर्मा करके डायरेक्टर थे आउटसाइडर,
0: हाँ।
1: दूरदर्शन ने उनको फिल्म बनाने के लिए, जिसने राज कपूर को तैयार किया था वो केदार शर्मा नामी डायरेक्टर थे,
0: अच्छा।
1: उनको एक दूरदर्शन ने भीगी पलके करके फिल्म बनाने ऑर्डर दिया था बुक करके, उन्होंने 3 घंटे की पूरी फिल्म बनाई थी। तो उसके जो टाइटल थे वो बनवाने के लिए मेरे पास आए, मुझे बताया कि ऐसा चीज ट्रेन जाती है उसका धुआं ऊपर से पीछे, यानी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाती है उसके उल्टी साइड उसका धुआं जा रहा
0: दुआ
1: है,
0: जाएगा बराबर
1: और धुआं के अंदर टाइटल मुझे
0: चाहिए।
1: सुपर होना चाहिए ऐसा इफेक्ट चाहिए। और ऐसा तो अभी तो ऐसे इफेक्ट लाने में 2 मिनट लगता है, मगर
0: बिल्कुल
1: उस टाइम
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ सोचना पड़ता है। तो फिर मैंने पूरा कागज का कटआउट किया, ट्रेन का कटआउट किया, वो धुएं का पोर्शन इतना कटआउट किया, और धुएं के पोर्शन के पीछे मैंने वो धुएं के जाते हुए ऐसे वो फ्लेम एनिमेट किया, ने कागज पीछे से खिसकाने लगे तो ऐसा लगता है ट्रेन आगे जा रहे धुआं पीछे जा रहे। उसके ऊपर भी आगे टाइटल जो किए वो ब्लैक एंड व्हाइट किए, वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइटल वो ऐसे मैं समझाने जाऊंगा प्रैक्टिकल देखने जाऊंगे तो ही पता चलेगा कि कैसे, तो
0: बिल्कुल।
1: उसको ऐसे राइट टू राइट खींचने लगे तो लगता था कि ट्रेन का धुआं ऐसे जाए और टाइटल ऐसे आ रहे। तो केदार शर्मा इतना खुश हो गए कि यार क्या इफेक्ट दिया है, तो बिल्कुल ऐसा तो हम फिल्म लाइन में भी नहीं कर सकते थे, खुश हो गया था काफी केदार शर्मा। फिर मुझे उसकी गाड़ी में बैठा के उनका स्टूडियो दिखाने ले गए थे, देखो मैंने राज कपूर को यहाँ तैयार किया था, यहाँ ये किया था, पूरा स्टूडियो देखा। और काफी बाहर के प्रोड्यूसर गोपी पेंटल भी आते थे, अमोल पालेकर आते थे उस टाइम, वो जो स्मिता पाटिल अभी जो हीरोइन बनी है वो पहले दूरदर्शन बॉम्बे की न्यूज रीडर थी, और बॉम्बे दूरदर्शन की जब बर्थडे थी तब उसको दुल्हन के रूप में बैठाए और सजा के पूरा न्यूज पढ़ाए। दूसरे
0: अच्छा
1: दिन कोई प्रोड्यूसर का फोन आया कि आप फिल्म में काम करोगी, उसने
0: अच्छा
1: हाँ कह दिया, तो डायरेक्ट वो गई दूरदर्शन छोड़ के बाद में वापस नहीं आई। तो स्मिता पाटिल तो ऐसे ही हमारे बाजू में, क्योंकि हमारा ग्राफिक सर्जन था ना वहाँ, एक मेरे अंडर में काम कर राजा स्वामी वो महाराष्ट्र थे, उससे मराठी में गप्पा मारने आ जाती थी काफी कोई ले। उस टाइम भी फिर मनोज कुमार वो फिल्म का एक गाना शूट करने आए थे, वो मैं ना भूलूंगा करके गाए थे, वो और अर्जुन ने तमाना रोटी कपड़ा मकान पर,
0: रोटी कपड़ा और मकान
1: हाँ।
0: पे भी।
1: तो एक दिन के लिए उसने पूरा स्टूडियो बुक किया था,
0: अच्छा।
1: मगर वो एक दिन के लिए वो एक लाइन शूट करने के लिए उन्होंने सुबह 10 बजे से चालू किया था, वो शाम को 5 बजे उनका वो सीन कंप्लीट हुआ, सिर्फ एक लाइन ही बोलने का। मनोज कुमार बोलता है मैं ना भूलूंगा, और उस साइड से जिन्नत अमान बोलती है मैं ना भूलू, इतना लाइन, यानी फिल्म लाइन में भी उस टाइम वो लोग मेहनत करते थे। पूरा दिन के लिए उन्होंने स्टूडियो बुक किया था और वहां पे रिकॉर्डिंग किया था। तो बॉम्बे में काफी एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मुझे अहमदाबाद में ट्रांसफर मिला, मैं बॉम्बे से अहमदाबाद ट्रांसफर लेके आया। तब जो डायरेक्टर था सौरभ साहब, पहले हम ज्वाइन नहीं करने वाले थे बॉम्बे दूरदर्शन क्योंकि हमें कोई गुजराती नहीं दिखाई दे रहा था, तो
0: बिल्कुल।
1: बाद में जो सौरभ साहब करते थे अरुण श्रॉफ, उन्होंने हमें चैम्बर में बुलाया उनके कि देखो आप अकेले गुजराती नहीं, मैं भी गुजराती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि आपको मैं अहमदाबाद ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, अहमदाबाद में स्टूडियो बनेगा ही, तो उसको आपको ट्रांसफर करके मिला। उसने इतना हमें कॉन्फिडेंस दिया तब हमने बॉम्बे ज्वाइन किया।
0: अच्छा।
1: फिर उन्होंने अहमदाबाद से वो खुद ट्रांसफर लेके आए, अहमदाबाद में स्टूडियो डेवलप किया, फिर

0: फिर थलतेज एरिया में गवर्नमेंट ने जगह दिया, वहां पे स्टूडियो बना। हम फिर वहां से यहाँ थलतेज अहमदाबाद तक खुद के स्टूडियो में काम करने लगे। उसके बाद मेरा यहाँ से अहमदाबाद से ट्रांसफर हुआ दिल्ली डीडी। पहले मेट्रो करके चैनल चल रही थी दूरदर्शन के, जिसमें प्राइम प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम आते थे, वो मेट्रो चैनल में मेरा यहाँ से ट्रांसफर हुआ। वहां से सीपीसी खेलगांव में दिल्ली में स्टूडियो है, सीपीसी के अंदर, सीपी यानी खेलगांव में के अंदर सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर तब था।
1: अच्छा,
0: दिल्ली दूरदर्शन का, वो उसमें क्रीम प्रोग्राम ही बनते थे, मेरा वहाँ ट्रांसफर हुआ।
1: अरे वाह।
0: फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ भी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, उन्होंने सीपीसी के बाद मेरी पर नजर न्यूज वालों की गई, तो न्यूज वाले देखा इनका काम तो बहुत अच्छा है, हमें खींच लेना चाहिए, तो डीडी न्यूज में मेरी ट्रांसफर हो गई। उसमें मुझे काफी टफ काम मिला, क्योंकि उसमें 24 घंटा आपको अवेयर रहना था, 24 घंटा वहाँ कंटिन्यूस मुझे एक आर्टिस्ट फोर बुकिंग करना ही रहता था। उस सीजी ऑपरेटर जो, क्योंकि न्यूज में तो 24 घंटा चलता था, उसमें तुरंत ही टाइट बना के डायटल वगैरह डाले ना, ऐसा सीजी ऑपरेटर और आर्टिस्ट दोनों का बुकिंग मैं करता, मेरे जिम्मेदारी रहती।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उस टाइम डीडी न्यूज के लिए हर रोज 8 मीटिंग होती थी, 1 घंटे के बाद न्यूज में हेडलाइन क्या जाएगी उसके लिए मीटिंग रहती। वो मीटिंग में मीटिंग है, मैं प्रैक्टिकल काम करने में मजा आता है, मगर मीटिंग अटेंड करने में बोर हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: फिर मैं इतना बोरिंग मेरा वो बॉम्बे में जो न्यूज का गया, उसके बाद कैसे भी करके फिर यहाँ अहमदाबाद ट्रांसफर हुआ। फिर अहमदाबाद में अपने लोकल प्रोग्राम की प्रोग्राम के टाइटल वगैरह बना, मेरे अहमदाबाद में मेरे हाथ नीचे 8 आर्टिस्ट थे, उनको भी अलग अलग लैंग्वेज के मुताबिक। अहमदाबाद में तो 2-3 ही लैंग्वेज चलती थी, एक हिंदी का अलग प्रोग्राम होता था, इंग्लिश का होता था, और गुजराती मैक्सिमम गुजराती का, उसके टाइटल सब टाइटल सुपर करना, वो सब बनवाने का मेरा जिम्मेदारी, उसका मटेरियल भी परचेज करके आर्टिस्ट को प्रोवाइड करना, वो भी मेरी जिम्मेदारी। मैं बॉम्बे में जो 8 आर्टिस्ट को कैजुअल बुक करता था, वो बाद में कोर्ट में केस किया उन्होंने लगे, और उनको फिर गवर्नमेंट को परमानेंट करना पड़ा उनको, करीबन मैं अहमदाबाद आ रहा है तब तक उनको परमानेंट नहीं किया था।
1: अच्छा।
0: गवर्नमेंट हो सके वहां तक कैजुअल बुकिंग से चलाती तो वो लोगों ने केस किया, फिर वो लोग परमानेंट हो गए, तो वो लोग अभी भी मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे याद करते कि भाई साहब आपने हमारा बुकिंग कैजुअल किया था तो हम परमानेंट जॉब से
1: लगा
0: नहीं था मानते करके। और बाद में तो अहमदाबाद में तो गुजराती अपना रेगुलर काम करते रहते हैं, उसमें भी एनिमेशन कार्टून, फिर धीरे धीरे तो कंप्यूटर आ गए, फिर हमारा काम वो हमको उतना नहीं रहा जितना पहले था इतना, अभी तो कंप्यूटर में सीजी ऑपरेटर फटाफट टाइप किया, और कुछ भी विजुअल चाहे तो आप लोग गूगल पे सर्च मार
1: तो पहले करो। जब आप काम करते थे तब कंप्यूटर के पहले वो क्या सब बना बना के आप देते
0: बना बाय हैंड ही बना
1: वापस कैमरा में लेते थे वो लोग क्या
0: ना उस टाइम तीन टाइप के जो टाइटल हम बनाते थे ना उसमें तीन टाइप के रहते, एक तो सॉलिड टाइटल यानी प्रोग्राम का जो मेन टाइटल है वो सॉलिड रहता था, उसको हर कलर लगते थे, और दूसरा रहता था सेंटर सुपर, सुपर यानी वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, ब्लैक पेपर लेने का उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिख देना का।
1: अच्छा।
0: वो कैमरा और दूसरा कैमरा दोनों के इम्प्रेशन करके वो लोग सुपर करते थे इलेक्ट्रॉनिकल, तो उसको सुपर बोलते थे। फिर बिलो सुपर यानी जो व्यक्ति का नाम आता था इंटरव्यू में, सपोज मैं इंटरव्यू दे रहा तो मेरा नाम आएगा GS परमार, गुणवंत भाई परमार, और मैं जिसका इंटरव्यू है उसका नाम सपोज विनय पंड्या कोई भी है, तो उनका नाम नीचे पूरे ब्लैक फ्रेम में नीचे लिखा हुआ रहता था। फिर वो दो कैमरे के इम्प्रेशन मिक्स करके वो ऐसा दिखता था जैसे आपके शरीर के ऊपर से वो जा रहा है लिखा हुआ।
1: अच्छा।
0: ऐसा सुपरिंग कैप्शन बोलते थे वो, सुपरिंग बोलते। फिर कोई मैप है वहां पे ड्रॉइंग है उसका आइडेंटिफाई करना, ये जगह का नाम है, तो वहां सुपर करते थे वो दो कैमरे का इम्प्रेशन मिक्स कर। फिर पहले स्क्रोलिंग, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, पहले स्क्रोलिंग करने के लिए हम पूरा लंबा कागज लेते थे ब्लैक, उसके ऊपर ऊपर से नीचे तक सब क्रेडिट लिखते थे, प्रोड्यूस बाय, डायरेक्टर बाय, साउंड बाय, फिर सेट डिजाइन बाय, मेकअप बाय, ऐसा पूरा लिख के लंबा रोल तैयार करते थे,
1: फिर वो
0: और उसको एक रोलर के ऊपर राउंड वाइंड अप कर देते थे, फिर उसको ऐसा घुमाते थे तो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा, ऐसा
1: इफेक्ट आ रहा,
0: ऐसा इफेक्ट आ रहा, तो बाय हैंड वो बाय हैंड ही करते थे,
1: एंड फिर वो रिकॉर्ड हो जाता था।
0: उस टाइम बॉम्बे में भी हम छोटे, मेरे अंदर पे एक ज्योति राव करते थे, उसका ड्राइंग अच्छा था, तो वो छोटे छोटे एनिमेशन

0: फिल्म जैसा भी बनाते थे एनिमेशन, यानी उसमें कटआउट पिक्सेलेशन कैमरा हमको प्रोवाइड किया था,
1: अच्छा
0: कैमरे
1: अच्छा
0: से हम
1: अच्छा
0: शूट एक एक फ्रेम शूट करके फिर एनिमेशन थोड़ा डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। फिर
1: ओके
0: एनआईडी में भी, मैं अहमदाबाद है, उसके बाद एनआईडी में भी हमको ट्रेनिंग दिया था, एनआईडी में थोड़ा ट्रेनिंग लिया था एनिमेशन का। फिर जब ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी हुआ,
1: कलर टीवी। हाँ
0: तो ब्लैक एंड व्हाइट का जो सिंबल था उसको कलर में कन्वर्ट करने के लिए भी मेरा ड्यूटी एनआईडी में लगाया गया था। और वहाँ जो उस टाइम जो ब्लैक सिंबल था ना,
1: हाँ
0: उसको धीरे धीरे कलर करके स्टेप बाय स्टेप करीबन 35 डिफरेंट कलर करके तो शूट किए, और
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: दोनों की
1: अच्छा
0: इम्प्रेशन मिक्स करके हमने वो उस टाइम इमिडिएटली ब्लैक एंड व्हाइट को कलर सिंबल करके ऑफिस को दिया था दूरदर्शन।
1: अरे वाह। अब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर
0: हाँ जी
1: वापस गुणवंत परमार जी, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो पहले हैंडवर्क होता था, मैन्युअली करते थे सारा कागज पे, और उसको जो है फिर कैमरे में शूट करके फिर वो आप टीवी दूरदर्शन पे या फिल्मों में देखते थे। अब जैसे ही कंप्यूटर आना शुरू हो गया, तो कंप्यूटर आने के बाद फिर मैन्युअली करना या फिर पेंटिंग करना, ये सारी चीजें जो है बहुत जल्दी से होने लगे, और फिर क्या चेंजेस आए? तो उस समय के जो आर्टिस्ट है जो मैन्युअली करते हैं, उनके जीवन में क्या चेंजेस आया, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा समरी में सुनेंगे, फिर कभी विस्तार से सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आबू की जान, आबू की शान, आबू निवासियों की है पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन प्रोग्राम में, जीवन विकास प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं गुणवंत परमार जी को, जो ग्राफिक डिजाइनर दूरदर्शन के रहे हैं और अभी रिटायर होकर अहमदाबाद में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो उनकी जो कहानी है वो हमने सुना कि किस तरह से एक आर्ट लाइन में खुशी से वो उसको ज्वाइन किया क्योंकि उनको इंटरेस्ट था। और फिर घर में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो माता पिता जैसे नौकरी करते हैं तो उनको लगता है कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, ये ड्राइंग वगैरह करके क्या होने वाला है। लेकिन फिर गुणवंत परमार जी ने ड्राइंग के माध्यम से, ड्राफ्टिंग के माध्यम से जब उन्होंने स्केच करके जो है पहला कमाई उनके हाथ में रखा तो उन्हें उनकी आंखें खुली और वो गदगद होकर इन्हें बहुत प्यार से फिर इनके साथ जो है एक प्यार बना रहा, कनेक्टिविटी बना रहा। तो हो सकता है कि हमारे माता पिता हमें समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है क्योंकि उनको डर रहता है। एक्चुअली में उनका कहने का भाव ये नहीं रहता है कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपना गारंटेड करियर आपका बने, आपको पैसे मिले, आप अपने आगे के जीवन को सर्वाइव अच्छा करें, ये भावना रहती है। और क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पर हमें कुछ अभी जैसे हम एडमिशन देते हैं तो उसके बाद हमें ये पता नहीं ना कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, या उनको पता नहीं रहता, तो इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन पेशन रखने से सब चीजें आराम से अच्छी हो जाती है, जैसे गुणवंत परमार जी ने पेशन के साथ उन चीजों को किया। तो आइए आप वापस जोड़ते हैं आपको गुणवंत परमार जी से, और बात चल रही थी जब कंप्यूटर का युग शुरू हो गया। तो ये कंप्यूटर जब आया कितने समय था, वो कौन से ईयर में आया और फिर क्या क्या चीजें जो है चेंज होना शुरू हो गया आपके? मैन्युअली जो करते थे वो फिर टाइप करना हो तो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंप्यूटर से हो जाता होगा। तो वो जो फेज है, चेंजिंग फेज या टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में थोड़ा बताइए जी।
2: तो अहमदाबाद में तो मैं आ गया, उसके बाद वो कंप्यूटर वगैरह आ गए तो धीरे धीरे मुझे भी कंप्यूटर का थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ा।
1: ये कौन सा साल था वो टाइम पे?
2: ये करीबन 85 के बाद का।
1: अच्छा,
2: 90 के आसपास का,
1: 85
2: के बाद,
1: 90 के बीच में।
2: तो धीरे धीरे कंप्यूटर आने लगे, कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेने लगे। और जब यहाँ से मैं वहाँ बॉम्बे दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो वहाँ तो सब कंप्यूटर पे ही चलता था, सब लोग वही कंप्यूटर में। वो वहाँ पे पेंट बॉक्स करके एक मोटा मशीन था जिसमें योर माइंड इज ए लिमिट, आप जितना सोचो बैकग्राउंड अलग कलर से हो जाता है, टाइप अलग कलर से आ जाते है, वो आपको जो ड्रॉइंग भी चाहिए वो भी अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। मगर वो उसके जो कमांड वो सब वो सीखना मेरे लिए काफी दिक्कत वाला का। वो लोग तो करते ही थे, वो लोग काम करते ही थे वहाँ के जो रेगुलर आर्टिस्ट, वो तो ट्रेन थे। मुझे एक बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस बॉम्बे दिल्ली दूरदर्शन में ये हुआ कि मैंने और मेरे आर्टिस्ट सुभाष रॉय करके, उन्होंने वेदर न्यूज का बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया एक बनाया था, यानी मोन्टाज करके, यानी वेदर जो न्यूज आता है वेदर न्यूज, उसके पहले जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंडिया के चारों पोर्शन को अलग अलग जूम आउट करके उनके ऊपर यहाँ पे ये इतना यानी टेम्परेचर रहेगा, बाद में हिमाचल का, फिर आसाम बाजू, फिर नीचे कन्याकुमारी, तो सर चारों जोन का डिफरेंट करके हमने वेदर न्यूज के लिए एक मॉन्टाज तैयार किया था। उसमें उस टाइम सेल्सियस में जाता था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, वो हम एनिमेट करके वो बाद में टाइप करके एवरी डे चेंज करके उसको डाल सकते। उसका बहुत बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया था। 6 महीने मैंने और उन्होंने कंटिन्यूस कंप्यूटर पे बैठ के वो पूरा मॉन्टाज तैयार किया था। और जिस दिन वो जाने वाला था ऑन एयर, उसी दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे किसी ने कोई मास्टर कंप्यूटर से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिलीट मार दिया। पूरा 6 महीने की मेरी और मेरे आर्टिस्ट की जो मेहनत, वो एक ही सेकंड के अंदर पूरा, और ऐसा डिलीट मारा कि वो फिर से हम डस्टबिन में से वापस ला ही नहीं सके।
1: अच्छा, रिसाइकल बिन में से वापस लाना होता
2: है, वापस लाना होता है। और उस टाइम वो ऑर्डर करके मशीन उन्होंने खरीदा था दिल्ली दूरदर्शन वालों ने। वो फर्स्ट टाइम वो मशीन, उसका हमको ट्रेनिंग भी दिया था, मगर उसके ऊपर पूरा बनाया था। जो तो वहां से हमने वहां कंप्लेन किया, कोई उनका कोई इंजीनियर को बुलाया, उसको दिल्ली के होटल में ठहरा है, वो पूरा कंप्यूटर उसको दिया, उसने भी 15 दिन यानी 2 वीक को कंटिन्यूस मेहनत किया, फिर भी वो जो वहाँ का इंजीनियर था वो कंपनी का, वो भी उसको वापस नहीं ला सका।
1: अच्छा।
2: तो ये जो इंजीनियर लोग जो होते हैं ना, इंजीनियर लोग को अच्छा नहीं लगता था कि इनका अच्छा गुड व्यूज के बुक में नहीं थे, तो अच्छा नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए उसने देखा जो भी इंजीनियर है ये तो सारा बहुत बढ़िया जा रहा है, उनको क्या है उसी टाइम बाहर ज्यादा काम देना था, पर और हम स्टाफ वाले इतना अच्छा काम करते हैं तो जस्टिफाइड हो जाता है। तो उसको पता, वो सबसे मेरे लाइफ में जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ ना गवर्नमेंट सर्विस में ये है। दूसरा के अहमदाबाद में, कि अहमदाबाद के बहुत बच्चा नामी प्रोड्यूसर दीपक भावस्कर, बहुत अच्छा बनाना था, उसने एक वीक के अंदर रेवा करके फिल्म का शूटिंग करके वो तैयार किया था, 3 घंटे की फिल्म, फर्स्ट टेलीविजन अहमदाबाद दूरदर्शन रेवा, ये अमूल डेयरी के स्टोरी के को बेचते, वो कंप्लीट किया तो डायरेक्टर पॉलिटिक्स इतने रमे रमे थे उनको टेलीकास्ट नहीं होने दिया।
1: अच्छा।
2: वो पूरा फिल्म उसने कलर में शूट किया हुआ था, मगर जब जो बहुत दिनों के सालों के बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट, उसके कलर भी नहीं होता हुए थे।
1: अच्छा।
2: ब्लैक एंड व्हाइट में वो टेलीकास्ट हुआ बाद, यानी पॉलिटिक्स इतनी गंदी रमत है, यानी वो हर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में रहते है, ऐसा कोई नहीं दूरदर्शन में, मगर ये मेरे लाइफ के में मुझे जो बेड एक्सपीरियंस हुआ वो एक एक तो ये मेरे आर्टिस्ट का 6 महीने का मेरा और उनका मेहनत का एक ही इसमें डिलीट मार के उड़ा दिया। और यहाँ इतना कई, फिर बाद में ये जो प्रोड्यूसर था अहमदाबाद का दीपक, उसको ट्रांसफर दिया आसाम, दो सोचते थे कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम करता है, उसको आसाम भेजा, और उसकी मिसेस कैमरामैन के यहाँ थी, उसको बॉम्बे ट्रांसफर दिया। अब हस्बैंड वाइफ दोनों को गवर्नमेंट
1: अलग जगह पे भेज दिया,
2: अलग कर दिया। अरे ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, कि तुम जो टैलेंटेड इंसान है उनकी कदर ना करो कुछ नहीं, तो उसको ट्रांसफर करके उसको पूरा उसका कैरियर खत्म कर देते। और बेचारा वहाँ आसाम में जाके क्या प्रोग्राम, यहाँ हर रोज 3 घंटे का ड्रामा रिकॉर्ड करता था, 3 घंटे का ड्रामा करना यानी 1 घंटे की वो जो जैसे 3 घंटे की फिल्म के लिए लोग कितना टाइम लगाते, वो 1 घंटे का आराम से 1 घंटे का प्रोडक्शन देता था। उसको बंदे को बेचारे को वहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसकी मिसेस को बॉम्बे कर दिया, उसका पूरा लाइफ। फिर बाद में जब अहमदाबाद आके उसने केस किया गवर्नमेंट के ऊपर, उसको केस जीता और उसको देना, अभी तो कलर टीवी में काम कर रहे है, अच्छी वो गुजराती चैनल संभाल रहे कलर टीवी, मगर ये जो टैलेंटेड वर्क जो करते है अच्छा कर, उनको ऐसा करके वो किया जाता है, वो अच्छा नहीं है गवर्नमेंट।
1: चलिए गुणवंत जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका आपने शेयर किया, ग्राफिक डिजाइनिंग और टेलीविजन दूरदर्शन की सारी बातें आपके द्वारा, पुरानी जो टेलीविजन की बातें हैं वो सुनने को मिला, मुझे भी पहली बार ये सारी बातें,
2: आपने मुझे भी मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई चीज अगर टर्निंग प्वाइंट आता है तो उसके लिए आप सीखने के लिए हमेशा रेडी रहे। और दूसरा, आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक निष्ठा से आप उस करियर के बारे में सोचते जाइए, उसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छी तरह से आपका वो करियर बन सकता है, चाहे कोई भी फील्ड कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपको जो है उसके साथ जुड़े रहना है लास्ट तक। जब आप पूरी तरह से उसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसमें माहिर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, और आप अपना बहुत ही अच्छी तरह से उसका रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। फिर बाद में जो लोग शुरू शुरू में आपको नकारते हैं, मना करते हैं, वो सारे लोग भी फिर कहेंगे अरे वाह वाह कर, है ना। तो इसीलिए अपने करियर के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है उसके ऊपर पहला फोकस कीजिए। दूसरा, अगर आपका इंटरेस्ट कहीं डगमग जा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप काउंसलिंग टीचर्स से, जो है काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनसे जरूर राय सलाह करें, जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे जरूर बात करें। और मुझे लगता है कि गुणवंत परमार सर का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन है और बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिला है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। तो आशा करूंगा आप सभी को और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अच्छा करें ऐसी शुभ आशा के साथ, अच्छा करियर बनाएं, अच्छा नाम करें परिवार का और देश का ऐसी शुभ आशा के साथ एक बार फिर से आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से गुणवंत परमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरह कुछ नए विषय को लेकर, कुछ नई स्टोरी लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज, खुश रहो खुशिया बाटो। नमस्कार रेडिओ श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडिओ स्टेशन रेडिओ पुणेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
2: नमस्कार, मैं हूं लीना और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। और आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ घर की महिला शक्ति की। हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम कभी उस महिला के बारे में सोचते हैं जो हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे परिवार के लिए चाय बनाती है? क्या हम उस माँ के बारे में सोचते हैं जो अपने बच्चों को प्यार से पालती है और उन्हें अच्छे संस्कार देती है? क्या हम उस पत्नी के बारे में सोचते हैं जो अपने पति के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है? ये वो महिलाएं हैं जो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं, बिना किसी वाहवाही की उम्मीद किए। ये वो शक्ति है जो हर घर को एक घर बनाती है। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि घर की महिला की शक्ति किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका प्यार, ये सब मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने घर की महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनकी मेहनत को समझेंगे और उन्हें वो सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार हैं। क्योंकि घर की महिला जब खुश और सशक्त होती हैं, तो पूरा परिवार खुश और सशक्त होता है। याद रखिए, हर घर की महिला में एक अनमोल शक्ति छिपी है। शुक्रिया दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है, तो वो 5 दिन नहीं, 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला, तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, वेलकम सिस्टर,
1: ओम शांति,
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
1: थैंक यू।
2: हम लोग बीइंग डिवाइन में बात कर रहे थे अबाउट मेकिंग अदर पीपल फील नाइस एंड ऑल्सो फील नाइस, और मैंने कई जगह ये पढ़ा भी है, सुना भी है लोगों से कि आप दूसरे को कैसे महसूस कराते हो, फील कराते हो, रेस्पेक्ट दूसरे की डिग्निटी, मतलब वेदर वो गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, उसको आपने क्या महसूस कराया?
1: ये लाइन लेते हैं कि वो अमीर हो गरीब हो, आपसे पोजीशन में छोटा हो बड़ा हो, आपसे रिश्ते में या आयु में छोटा हो या बड़ा हो, इररिस्पेक्टिव हम उसको कैसा महसूस कराते हैं बेस्ड ऑन हम खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जीवन जीने का तरीका इज सो इम्पोर्टेंट। आज हमने ध्यान रखते हैं कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार किस पर डिपेंडेंट हो गया है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, किससे हमें क्या मिल सकता है, किससे मेरा क्या फायदा हो सकता है, किससे मेरे कौन से काम हो सकते हैं, किससे मैं आगे और बढ़ सकता हूँ अपने करियर में, किससे मेरा क्या रिश्ता है, तो हमारे व्यवहार हमारे बोल उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो हम अंदर कुछ और फील कर रहे होते हैं, व्यवहार कुछ और कर रहे होते हैं। तो जो हमने पिछली बार देखा, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस विल बी डिपेंडेंट, अगर हम अंदर बाहर कैसे हैं, सेम, हम अंदर बाहर एक हैं। अब अगर हम इसको जीवन जीने का तरीका बना लें तो हर सीन में बहुत इजी होगा ये अपने आप को बताना कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी इन दिस सीन राइट नाउ। जीवन एक बहुत बड़ा ड्रामा इन द सेंस एक परफॉर्मेंस इतनी बड़ी जो चल रही है इस रंगमंच पर, हर एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है, हर एक एक्टर की अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यवहार, अपने संस्कार। अभी अलग अलग एक्टर्स के बीच में हम हैं एंड हर क्षण एक नया सीन है, सीन में कोई रीटेक नहीं है, एंड जो सीन रिकॉर्ड हो गया वो एक परमानेंट इटर्नल रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग का कॉन्सिक्वेंस मुझे अभी भी आएगा, इसी क्षण मेरे फ्यूचर में भी आएगा।
2: सही बात।
1: इतनी अवेयरनेस से अगर जीवन जिया तो हर सीन वैसा होगा जो आपने पिछली बार कहा कि लोग तालियां बजाएंगे।
2: हाँ, किरदार ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद।
1: पर्दा गिरने के बाद तो ठीक है, अभी हर सीन ऐसा निभाओ कि सामने वाला फील्स नाइस। तो ताली बजाना डजंट मीन ताली बजाना लाइक दिस और अप्रिशिएटिंग ओ इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। ताली बजाना मतलब अंदर से वो आपके लिए कैसा फील करे। अब ये क्राइटेरिया बनाकर अगर जीवन हम जीना शुरू करें तो एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर ब्लेम फुल स्टॉप नहीं हो सकता। हम दूसरे को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। सपोज आपने इस समय मेरे साथ ठीक से नहीं परफॉर्म किया, और ठीक से को भी हम क्या कहेंगे, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्म नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस से मैं प्रभावित हो गई और मैंने रिएक्ट कर दिया। ये रिएक्शन मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग बन गई। चाहे वो हर्ट था, चाहे वो गुस्सा था, चाहे वो ईर्ष्या थी, चाहे वो रिजेक्शन था, चाहे वो मैनिपुलेशन था, वो मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग बन गई है। अब वो जो परमानेंट रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ उस सीन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, वो एक जीवन जीने के तरीके की भी रिकॉर्डिंग हो गई है। जिसको हमने कहा वैसा हमने इनैक्ट किया, तो अगली बार उस सीन को वैसा इनैक्ट करने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वी विल बी डूइंग इट द सेम वे मेनी मेनी टाइम्स, क्योंकि कोई भी चीज एक बार कर ली तो हम अगली बार भी वैसा करेंगे। एक बार गुस्सा किया तो सेकेंड टाइम करने के चांसेस बढ़ गए, थर्ड टाइम करने के चांसेस और बढ़ गए, फिर तो कई बार करने के चांसेस
2: तो
1: और बढ़ गए।
2: आपका संस्कार बन गया।
1: संस्कार बन गया मतलब एक बार जो रिकॉर्डिंग हो गई वो यहाँ का हिस्सा बन गई।
2: रिकॉर्डिंग्स आर लाइक आवर रिहर्सल्स। एक बार रिहर्सल किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो इतनी आदत हो जाती, फिर नेचुरल
1: वे ऑफ लिविंग हो गया। यस, अब हमने आज डिसाइड किया कि नहीं, आई एम अ राइट एक्टर, मतलब मैं वो व्यक्तित्व, मैं वो पर्सनालिटी सही तब हूँ व्हेन आई फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। अब पास्ट को छोड़ देते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन आज से कि इस क्षण

0: हम कर पाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आंसर तो मालूम होगा कि व्हाट इज नीडेड।
1: यहाँ एक बात बोलूंगा, बड़ा अच्छा, कभी कभी डायरेक्टर जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करो तो चिढ़ जाते हैं, और कुछ बहुत प्यार करते हैं, और कुछ आपको कॉर्नर में ले जाके बोलते वेरी नाइस, थोड़ा सा ये कर दे, तो वहां दे मेक यू फील सो नाइस, एंड वहां से आपका परफॉर्मेंस और नाइसर होता है।
0: ओके, अब इस मूवी का डायरेक्टर कौन?
1: मैं
0: खुद,
1: राइटर डायरेक्टर,
0: राइटर भी मैं, एक्टर भी मैं, सी डायरेक्टर भी मैं, सीन कैसे परफॉर्म करना है वो डिसाइड भी, लॉस एंड प्रॉफिट भी मेरा, कितना, जब इतना कुछ मेरा तो कितना अटेंशन, वहां तो सिर्फ एक्टर थे ना आप, वहां डायरेक्टर कोई और, प्रोड्यूसर कोई और, स्क्रिप्ट राइटर कोई और, रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन कोई और, यहाँ तो सब कुछ हम, तो अटेंशन कितना। अब ये सारा कुछ अगर हमने अटेंशन रखा, अब इसमें हमने एक लाइन ली, बीइंग डिवाइन। तो बीइंग डिवाइन हमने अपने आप को कहा कि आई द एक्टर एम अ डिवाइन बींग, ठीक है, जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा, आई द एक्टर एम अ ब्यूटिफुल बींग, एम अ डिवाइन बींग, मतलब मुझ एक्टर का व्यक्तित्व क्या है, डिविनिटी, दिव्यता। अब ये डिवाइन एक्टर पूरे दिन कितने सारे सीन्स, कितने सारे को एक्टर्स, कितने सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं इसने, लेकिन एक्टर का व्यक्तित्व क्या, डिविनिटी।
1: एक्टर का व्यक्तित्व डिविनिटी,
0: डिविनिटी, जैसे आपकी मूवीज में अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी का
1: एक
0: कोई
1: पुलिस ऑफिसर है, एक चोर है, रोल है,
0: रोल अलग, एक्टर की पर्सनालिटी
1: है, द वे यू परफॉर्म द सेम रोल,
0: द सेम रोल। किसी के लिए हम कहेंगे कि बहुत स्पॉन्टेनियस है, ये एक्टर के अंदर बहुत स्पॉन्टेनिटी है, दिखता है, नेचुरल है। तो अब मैं एक्टर अलग अलग रोल, लेकिन मुझ एक्टर की पर्सनालिटी डिविनिटी, डिवाइन, मतलब मेरी पर्सनालिटी मेरे हर रोल, मेरे हर सीन, मेरे हर परफॉर्मेंस, मेरे हर डायलॉग में आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी है।
1: सही बात।
0: जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग एक्टर्स हैं, लोगों को अलग अलग एक्टर्स की पता है कि कैसे परफॉर्मेंस होती है,
1: जैसे डांस डायरेक्टर है ना, तो मैं जब कोई फिल्म में देखता हूँ कि सॉन्ग पिक्चराइजेशन हुआ है, तो उस आर्टिस्ट के मूवमेंट से पता चल जाता है ये जरूर ये इस गुरु ने,
0: कोरियोग्राफर ने किया,
1: कोरियोग्राफर ने किया होगा, क्योंकि उसके हल्की सी छाप आ जाती है।
0: और अगर सपोज आपने कोई परफॉर्मेंस देखा जो आपको पता है कि उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, लेकिन वो हम कहेंगे वो वाली बात, वो वाला जो एक उनकी है वो आई नहीं इसमें, तुम कहते ये लगा ही नहीं जैसे उन्होंने किया है, मतलब एक्टर की पर्सनालिटी उसके रोल में आनी चाहिए।
1: सही बात
0: है। एक्टर और रोल अलग नहीं हो सकता,
1: नहीं।
0: अगर एक्टर ने अपने रोल में नहीं लाया अपना व्यक्तित्व, तो फिर वो रोल देखने का हमें मजा नहीं आता। अब सारा दिन में हम इतने सारे रोल्स कर रहे हैं, सपोज आप लें अपने आप को, आप किसी के लिए एक फादर है, किसी के लिए एक हस्बैंड है, किसी के लिए एक फादर इन लॉ है, किसी के लिए एक ग्रैंडफादर है,
1: भाई है,
0: किसी के लिए एक भाई है, किसी के लिए एक बॉस है, बहुत सारे रोल्स हैं। अब क्या हुआ, आज जीवन जीने के तरीके में हम ज्यादातर अपने रोल्स पर फोकस्ड हो गए। मेरा ये रोल है, मैं फादर हूं ना तो फादर कैसे होना चाहिए था, ये बेटा है ना तो बेटा कैसे होना चाहिए, बेटी कैसे होनी चाहिए, ये बहू है, ये दामाद है तो दामाद कैसा होना चाहिए। तो हमने एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करना शुरू किया, दैट स्टार्टेड बीइंग बेस्ड ऑन द रोल, कि एक दामाद कैसा होना चाहिए, एक ससुर कैसा होना चाहिए, एक सास कैसी होनी चाहिए, वी वर इंटरैक्टिंग रोल टू रोल कॉन्शियसनेस। एंड अपनी परफॉर्मेंस को भी हम देख रहे थे ना, तो हमने कहा ससुर हूं ना तो सामने वाले को कैसे होना चाहिए था, मैं बड़ा हूं ना तो सामने वाले को कैसे होना चाहिए था। तो हमने अपनी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया भी अपनी रोल, अपनी पोजीशन, अपनी एज के बेसिस पे रखा, सामने वाले का परफॉर्मेंस भी उसकी एक्सपेक्टेशंस हमने किस बेसिस पे रखी, उसकी रोल, उसकी पोजीशन, उसकी एज, उसके स्टेटस के बेसिस पे रखी।

0: we were not connecting actor to actor. We were connecting role to role, position to position, relationship to relationship, status to status.
1: कुछ दिन पहले लिफ्ट में मेरी बहू, बच्चे और हम आ रहे थे नीचे, तो जैसे लिफ्ट रुकी तो मेरा हाथ गया दरवाजा खोलने में। एक सेकंड के लिए लगा मुझे कि मैं, ये तो बहू है, इसके लिए मैं दरवाजा खोलूं। तो फिर मैंने बोला नहीं, गुड एक्टर, अपना परफॉर्मेंस करना है, हमको अपना देखना है, मेक अदर्स फील नाइस एंड खुद फील नाइस। तब मैंने खोला एंड आई फेल्ट सो
0: सी दैट सिंपल है, डिफरेंस दिख रहा है।
1: लेकिन ऐसा यहाँ छापा है, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, इतना वेल ट्रेन्ड है माइंड के लिए, इसके लिए दरवाजा खोलना, इसके लिए नहीं खोलना, नौकर है तो वो पहले खोलेगा, ये है तो ये होगा। एक्टर टू एक्टर देखना इतना मुश्किल होता था मुझे पहले, लेकिन कहीं कहीं मैं जीत रहा हूँ।
0: हाँ, तो कहीं कहीं करना है,
1: 5% 10% का
0: कहीं कहीं तो करना है ना, कहीं कहीं करते करते ही तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी।
1: लेकिन अच्छा लगता है जब ये चीजें आप ओवरकम करके कर लेते हो तो।
0: अब इस केस में आपने क्या किया, पहले जो आप परफॉर्म करने लगे थे, ये सारी परफॉर्मेंसेज तो है सीन में, तो पहले आपकी परफॉर्मेंस होती, आप रुक जाते एंड आप एक्सपेक्ट करते कि सामने वाला करेगा। क्यों? क्राइटेरिया क्या था? मैं बड़ा, वो छोटे, मैं फादर इन लॉ, वो बहू, ये क्राइटेरिया
1: खोले, स्टाफ खोले, कोई भी, कोई भी खोले, मैं क्यों खोलूं?
0: क्राइटेरिया ये था ना। Now, ये जो क्राइटेरिया वर्क कर रहा था, ये जो कॉन्शियसनेस थी कि मैं कौन, इसको हम कहेंगे ईगो, कि मैं कौन, मैं बड़ा, मैं बॉस, मैं ससुर, मैं फादर, मैं हस्बैंड, मैं अमीर, दूसरे मैं मालिक, ये सारे क्राइटेरिया थे। तो ये सारे क्राइटेरिया के थ्रू, ये कॉन्शियसनेस के थ्रू जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी होती? आप ऐसे खड़े रहते एंड फिर वेट करते कि दूसरा खोलता। अब सपोज दूसरे ने नहीं खोला, चेन कैसे बनेगी एक सीन से दूसरे सीन? सपोज दूसरे ने नहीं खोला एकदम से, या ठीक
1: जो आपने अभी कहा कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर एक्ट, इस एक्टर का क्या होना चाहिए
0: था, तो सामने वाले ने नहीं परफॉर्म किया, तो हम क्या करेंगे? विच मीन्स नॉट इन जस्ट अ स्मॉल थिंग लाइक ओपनिंग अ लिफ्ट डोर,
1: इवन इन ग्रीटिंग, कोई पहले आपको नहीं करे, बिजी है, खेल रहा है, बहू हो, बेटी हो, बीवी हो, बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रही है, तो खुद बोल दो ओम शांति, गुड मॉर्निंग, जो भी।
0: अगर नहीं किया और सिर्फ वेट किया कि मैं बड़ा हूँ, वो करेंगे, फिर अगर उधर से उन्होंने नहीं किया तो हम क्या करेंगे? उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की। अब जब हम कहते हैं उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उस क्षण हमारी जो ईगो कॉन्शियसनेस थी वो क्या हो गई है? सामने वाला आपको काके कहेगा आपकी ईगो हर्ट हो गई ना, सामने वाले ने नहीं किया ना आपसे ठीक से, आपकी ईगो हर्ट हो गई। तो हम कहते ईगो थोड़ी हर्ट हुई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ये, ईगो हर्ट हुई है ये।
1: नहीं, सामने वाला बोलेगा आपकी बेइज्जती हो गई,
0: ईगो हर्ट हो गई। अब बेइज्जती हो गई कौन बोलेगा? जो खुद अपने कौन से कॉन्शियसनेस से काम कर रहा है, जिसकी खुद की ईगो ये देख रही है कि सामने वाले को करना चाहिए था क्योंकि वो छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। कॉन्शियसनेस, व्हाट विल बी आवर कॉन्शियसनेस, सो विल बी आवर एवरी परफॉर्मेंस इन एवरी सीन ऑफ लाइफ।
1: कितना कॉम्प्लिकेटेड,
0: इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड
1: जिंदगी को।
0: आज अगर हम अपने जीवन को देखें, रिश्तों को देखें, हर जगह हम काफी कॉम्प्लिकेटेड हुए हुए हैं।
1: मोर देन कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रॉन्गर वर्ड,
0: अदरवाइज लाइफ कैन बी एक्सट्रीमली सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। इवन ये सेम सीन को ले लेते हैं, ये सेम सीन को लेते हैं, इतना छोटा सा सीन है, अब इसी इक्वेशन को बड़े सीन्स में लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा सीन है कि हम लिफ्ट में 5 लोग खड़े हैं सपोज, ठीक है, एक बहू है, एक नौकर है, मतलब एक फैमिली मेंबर छोटा है, एक बच्चा है, नहीं एक स्टाफ मेंबर भी है, लेट्स ठीक है, तो एक नौकर भी है, मेड भी है, चलो मेड भी है, तो 5 एक्टर्स होने चाहिए ना लिफ्ट के अंदर। अब वो सारे खड़े हैं, आई विल मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर माई सेल्फ इफ आई विल वेट कि ये करेगा, फिर मैंने ये नहीं कर सकता था तो ये तो कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी तो ये तो कर सकता था, मतलब मैं जो सबसे बड़ा, एज में भी बड़ा, पोजीशन में भी बड़ा, रिश्तों में भी बड़ा, और ये सब ऐसे खड़े हुए हैं और ये नहीं करेंगे, लाइफ कैन बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। एंड अगर मैं अपने नेचुरल सेल्फ में हूं, ईगो नहीं है उस क्षण, ईगो नहीं है, ईगो भी कभी कभी होती है, कभी कभी चली जाती है। उस क्षण ईगो नहीं है तो मुझे वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने में
1: याद भी नहीं आएगा,
0: क्योंकि ईगो नहीं है उस क्षण।
1: क्यों तो खुलना ही है, खोलो और निकल जाओ, कि ध्यान ही नहीं रहता है।
0: उस क्षण ईगो वर्क नहीं कर रही है, आई द नेचुरल सेल्फ एम वर्किंग। लेकिन अगर ईगो होती परफॉर्मेंस अलग होता, फिर उसके बाद अगर कोई नहीं खोलता तो हर्ट भी होता, फिर हर्ट होके वो स्टाफ मेंबर को डांट भी देते कि दिख नहीं रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खोलूंगा, तुम नहीं खोलोगे उसको क्या।
1: कितने हजारों जन्मों का ये संस्कार है मन, अपने छपा हुआ, जो यहाँ आप बोल रहे थे एक इम्प्रिंट, जैसे अंगूठा लग जाता है तो लग गया, दस्तावेज पे लगता है ना, स्टैम्प पेपर पे।
0: हाँ।
1: तो वो तो मेरी मिस्टेक नहीं है ना, वो तो पुरानी बातें हैं ना, उनको सिर्फ ठीक ही कर रहे हैं हम अभी तो।
0: पुरानी बातें एक्चुअली क्या है कि ये सारी लेयर्स हमने इस जीवन में अक्वायर कर ली हैं, और ऐसे ही हमने कई जन्मों में भी लेयर्स अक्वायर की थी कि मैं कौन। इसीलिए आप देखो, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो फिलोसफी है, हर एक ने हमें आकर एक ही बात कही, हु एम आई, मैं कौन। इस क्वेश्चन का अगर आंसर मिल गया तो जीवन जीने का तरीका बहुत।
1: उन्होंने हु एम आई के साथ साथ बोला था लव।
0: हाँ,
1: एक शब्द यूज कर, अनकंडीशनल लव भी सबने बोला है।
0: हु एम आई मिलने के बाद, हु एम आई नहीं मालूम तो अनकंडीशनल लव नहीं आ सकता।
1: सही बात, तो कुछ भी नहीं आ सकता।
0: हु एम आई के बिना अनकंडीशनल लव नहीं आ सकता, क्योंकि हु एम आई नहीं मालूम तो ईगो है, ईगो है तो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस है तो कंडीशनल है, अनकंडीशनल कैसे होगा। तो हु एम आई,
1: ईगो है तो मैं ही नहीं हूँ,
0: नहीं है ना, ईगो है ना। ईगो मतलब क्या, कोई ना कोई चीज जो मैंने इस जीवन की यात्रा में प्राप्त की है उसको मैंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया, चाहे वो मेरी स्कूल में मार्क्स थे, चाहे वो मेरी कॉलेज की डिग्री थी, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, चाहे वो मेरी डेजिग्नेशन थी, चाहे वो मेरा रिश्ता था, चाहे वो मेरा कोई स्किल था जो मैंने अक्वायर किया, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी पोजेशन थी मैंने अक्वायर की, चीजों को हम अपनी आइडेंटिटी बनाते गए बनाते गए बनाते गए। मैं कौन, एक बच्चे को देखना चाहिए, छोटा बच्चा, अभी उसने कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है, तो जब तक उसने अक्वायर नहीं किया होता ना, उसके फेस को अगर हम देखें तो बच्चे के फेस के अंदर डिविनिटी दिखाई देती है, क्योंकि उसने अभी जीवन की यात्रा में कुछ अक्वायर नहीं किया है।
1: सबको स्माइल करता है,
0: अनकंडीशनल, अनकंडीशनल,
1: सबको एक ही तरीके से स्माइल करेगा, सबसे एक ही तरह से बात करेगा,
0: अनकंडीशनल है ना। वो अनकंडीशनल इसलिए है क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मैं कौन और मैं ये तो लोग कौन और लोग ये तो लोगों को मेरे साथ कैसा होना चाहिए, उसकी लेयर्स नहीं बनी अभी तक। हमारे ऊपर लेयर्स बनी है, मैं कौन उसकी लेयर, फिर ये कौन उसकी लेयर, और फिर ये तो इनको मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। ये पूरी एक लेयर बनती गई। अब जितनी लेयर्स बनती गई तो वो जो अंदर बच्चा था मतलब वो जो अंदर डिविनिटी थी, वो जो प्योरिटी थी, वो क्या होती गई, वो यहाँ छुप गई, और ऊपर से लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर, जितनी लेयर्स बनती गई हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर होते गए। इस जीवन की यात्रा में हमने कितना कुछ प्राप्त किया है, लेकिन जो कुछ हमने प्राप्त किया उसको हमने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया।
1: आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया मतलब
0: आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ा।
1: आई एम एक्टर सो एंड सो, आई एम डॉक्टर, आई एम कर्नल, आई एम रिटायर्ड सो एंड सो।
0: आप फिल्म में आए, आप एक्टर बने, आप बहुत सक्सेसफुल हुए, तो जब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे उससे पहले जब आप बाहर जाते, लोगों से मिलते, तो आपकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करेंगे, और फिर आप फिल्म में आए और सक्सेसफुल बने और आप उस क्षण उस समय उस पीरियड में एक हीरो हैं, और तब आप बाहर जा रहे हैं एंड लोगों से मिल रहे हैं, एंड इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो दी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट?
1: यस,
0: एक्सपेक्टेशंस वर डिफरेंट, राइट? पहले,
1: बाद में वीआईपी ट्रीटमेंट की एक आदत पड़ जाती है ना।
0: हाँ, मतलब लोग मेरे लिए खड़े होंगे, मुझे आगे जगह देंगे, मेरे सामने झुकेंगे, ये करेंगे, मेरे से प्यार से बात करेंगे।
1: आपको टिकट नहीं पूछेगा, आपसे वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं पूछेगा, आपसे कोई आपको पुलिस वाला रोक के बात करके आपका लाइसेंस नहीं पूछेगा। सो मेनी थिंग्स, नॉट वन।
0: आई रिमेम्बर कि कुछ साल पहले जब आपके साथ एयरपोर्ट पे जाना हुआ और किसी ने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाना है, एंड उस क्षण आपने उसको डांट दिया था। ये कई साल पहले की बात है, लेकिन आपने उसको डांट दिया था। उस क्षण कौन हर्ट हुआ था? अब तो आप बहुत प्यार से दे देते हैं,
1: अब तो पहले से टिकट के साथ रखते हो, तो लोग बोलते भी ऐसा, आप क्यों दिखा रहे हो?
0: वो अलग बात है, लेकिन जिस क्षण किसी ने मांगा था
1: तब की बात अलग है।
0: वी नीड टू रिकलेक्ट कि तब में और अब में मेरे में क्या चेंज आया है, व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज आवर जर्नी।
1: तब तो हर्ट हुआ था,
0: तो कौन हर्ट हुआ था?
1: मैं
0: कौन?
1: मेरा ईगो।
0: ईगो क्या? ईगो मीन्स हर्ट हुआ था, मींस
1: मेरा लेबल।
0: कौन सा लेबल हर्ट हुआ?
1: एक्टर का, नॉन का, वीवीआईपी का।
0: यस, वो लेबल हर्ट हुआ था कि ये मैं एक्टर, मैं वीआईपी, मैं सो एंड सो, ये सामने वाला मुझे पहचान नहीं रहा, मुझे आई कार्ड मांग रहा है, हर्ट हुआ। जैसे ही वो लेबल हर्ट हुआ, वो ईगो हर्ट हुआ, मतलब जो एक्सपेक्टेशन का व्यवहार हमने सामने वाले से रखा था, डिपेंडिंग ऑन माय दैट अक्वायर्ड लेयर। अब इस केस
1: में साथ में एक और लाइन भी ऐड कर दीजिए, और आसपास देखने और सुनने वाले लोग क्या कहेंगे?
0: फिर वो लोग भी क्या कहेंगे बेस्ड ऑन कि ये एक्टर है और इसको ये आईडी कार्ड मांग रहा है, तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। मतलब इंसल्ट सारी किसकी हुई थी एक्चुअली? वो लेबल की इंसल्ट हो रही थी उस दिन। लेकिन जब हमने उस तरह से रिएक्ट किया और गुस्सा कर दिया, तब एक्चुअली इंसल्ट किसकी हुई? तब मेरी इंसल्ट हुई, मेरी, क्योंकि मैंने अपना राइट परफॉर्मेंस नहीं दिया, बिकॉज माय राइट परफॉर्मेंस इज फीलिंग नाइस एंड मेकिंग अदर पीपल फील नाइस। सो स्पिरिचुअलिटी, ब्रह्मा कुमारीज में जो हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, उसका जो मेन लक्ष्य है, जिसको हम कहेंगे ना, हर मेडिटेशन का एक लक्ष्य होता है। आजकल बहुत बार भाई बहने कहते हैं कितने सारे स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन है, नो देयर आर सो मेनी थॉट्स कि इस तरह से भी मेडिटेशन हो सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला करना है? तो यहाँ जो हम मेडिटेशन सीखते हैं, उसका जो एम ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका जो पर्पज है, वो है ये सारे लेयर्स जो आ चुके हैं ऊपर, सारे लेयर्स, वो सभी लेयर्स को धीरे धीरे धीरे धीरे, देन एक बार करना शुरू कर दो तो इट डजंट टेक टाइम टू रिमूव इट, लेकिन एक एक लेयर
1: सूखे हुए गिर रहे हैं।
0: यस, तो एक एक इस लेयर को उतार के अंदर जो वो ओरिजिनल आई है जो छुप गया है उस लेयर्स की वजह से, तो वो ओरिजिनल आई की जो पर्सनालिटी है, जो इस अक्वायर्ड ईगो की वजह से कुछ और बनने लग गया था, उस दिन जब आप एयरपोर्ट गए और सामने वाले ने आपको आई कार्ड मांगा, अगर आपके पास मैं एक्टर हूं ये लेयर ना होती, जैसे हम सब बाकी लोग तो जाते हैं, हमसे भी आई कार्ड मांगते हैं, लेकिन हमारे पास वो लेयर नहीं है कि मैं एक्टर हूं, तो वो लेयर न होने के कारण हमारा व्यवहार डिफरेंट है। अब आपके ऊपर वो लेयर थी,
1: और यही अगर मैं अमेरिका में होता,
0: हाँ, तो
1: तो बताता पासपोर्ट।
0: यस, दिस इज व्हाट इट इज, कॉन्शियसनेस कि मैं यहाँ हूँ और मैं कौन हूँ और सामने वाले को मेरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको क्राइटेरिया रखा तो परफॉर्मेंस गलत हो जाती है।
1: सो मेनी टाइम्स अगला बंदा भी ईगो की वजह से दुनिया को दिखाने के लिए बोला, देखा वो फलाना एक्टर है, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने बोला आप बताओ, माय ड्यूटी, माय ड्यूटी।
0: हम सामने वाले की तो परफॉर्मेंस पे अब डिपेंडेंट ही नहीं हो सकते,
1: क्या होता है ना, आदत हो जाती है। एक दिन, दो दिन, दस दिन, हजारों दिन लोग कैसे हैं आप, कौन सी पिक्चर आ रही, बात करते हैं व्हेन यू एंटर एंड ऑल दैट, सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक आई कार्ड कभी जेब में नहीं रखा था, उस दिन वॉज अ लेसन फॉर मी, तो अच्छा हुआ।
0: आई कार्ड जेब में नहीं रखना अलग बात थी, और रिएक्ट कर जाना
1: वो भी सही
0: है ना। अगर हमसे किसी ने मांगा, हमें आदत नहीं थी रखने की, हमने नहीं रखा होता, हम प्यार से अपोलोजाइज कर देते, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट कैरिंग इट टुडे, बट आई डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम से ये मेरे पास हमेशा होगा. रिएक्शन ना आता
1: उस दिन के बाद तो टिकट के साथ मैं लगा के देता हूँ, ये आई कार्ड लो और ये लो.
0: लेकिन रिएक्शन क्यों आया? जब तक ईगो हर्ट नहीं होती, मतलब ईगो को किसी ने अगर टच नहीं किया, मतलब जो मैंने लेयर अक्वायर किए उसको अगर किसी ने टच नहीं किया, हम कभी हर्ट नहीं होंगे, कभी रिएक्ट नहीं करेंगे. कोई ना कोई इमेज जो हमने बनाया, कोई ना कोई चीज जो हमने अक्वायर की, जिसको हमने समझा ये मैं हूं, उतनी देर हम भूल गए कि मैं एक्चुअली कौन हूं, तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है सारी उस शर्त पर.
1: बहुत सही बात है ये. और हमारे राजयोग का लक्ष्य क्या है, इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं, ये अगले एपिसोड में बात करेंगे.
0: थैंक यू.
1: ओम शांति. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
2: द वे वी रिस्पॉन्ड टू अ सीन क्रिएट्स अ परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑन द सोल. वंस अ रिकॉर्डिंग इज क्रिएटेड, द चांसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग द सेम वे in another scene increases, and gradually that becomes our sanskar. The soul is the actor performing every scene on the stage of this world drama. The personality of the actor will reflect in every role and every scene. Let us create the consciousness, I am a divine being, and reflect divinity in our every scene today. When we are role conscious, we perform on the basis of our position, relation, and age, and expect the same from others. When we are conscious of the quality of the actor, then irrespective of the role, we will radiate our quality in every scene. Ego is when we make something that we have acquired our identity. It could be our qualification, our position, our skill, our relation, or religion and caste. When we make any of these our identity, we enact our scenes based on this identity and expect others to be with us on the same basis.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडियो पुणेरी आवाज।
2: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
4: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आशा करती हूँ आप प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है, सबका प्रिय वही होता है जो प्रभु का प्रिय होता है, यानी कि सर्व प्रिय ही प्रभु प्रिय है। किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो अक्सर अपने परिचय में हमें वह बताता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, शिक्षक हूँ, इस तरह से चिकित्सक हूँ, इस तरह से अपना वो परिचय देता है। अध्यात्म कहता है कि व्यापार करना, शिक्षा देना या चिकित्सा करना उस व्यक्ति की सृष्टि रंगमंच पर भूमिका है, वास्तव में वो एक आत्मा है। सफल अभिनेता भी वही है जो हर रोल बड़ी संजीदगी से निभाए। आत्मा एक क्या है? प्रकाशमान सितारे के आकार की अति सूक्ष्म दिव्य सत्ता है जो शरीर रूपी ड्रेस पहनकर रंगमंच पर रोल प्ले करती है। कोई भी आत्मा एक शरीर धारण कर केवल एक रोल प्ले नहीं करती, बल्कि अनेक प्रकार के रोल एक ही शरीर से प्ले करती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक सफल व्यापारी है, परंतु व्यापारी की भूमिका क्या है? हाँ, उसके साथ साथ वो उसकी अन्य भी कई भूमिकाएं हैं, जैसे भाई की, पुत्र की, पिता की, पति की, पड़ोसी की, हाँ पेशेंट की, यात्री की, तो या ग्राहक की, या दर्शक की, पाठक की। तो हम देखते हैं कि व्यापारी की भूमिका में वो वाहवाही लूटता है, परंतु यदि अन्य भूमिकाओं में अगर वो खरा नहीं उतर पाता है, जैसे कि पत्नी से झगड़ा, पुत्रों से क्रोध, माता से अनबन, बहनों से उदासीन, पड़ोसियों से कटाकटा, अपने चिकित्सक के साथ झुंझलाया हुआ, यात्रा में भी बेचैन, तो उसे सृष्टि रंगमंच का कैसा अभिनेता मानेंगे? सफल अभिनेता भी वही है, हाँ वह माना जाएगा जो हर भूमिका बड़ी संजीदगी से निभाता है। मान लीजिए कोई अगर फिल्मी अभिनेता किसी फिल्म में उसे राजा का रोल करना है तो बहुत ही सुंदर प्ले करता है, परंतु अन्य 10 फिल्मों में उसका रोल क्रमशः नौकर का, सिपाही का, चपरासी का, शिक्षक का, या पिता का, कुली का, भिखारी का, पहरेदार का, पुत्र का, पति का, या अन्य किसी भी रोल में वो रहता है। ये उसने संजीदगी से निभाए हाँ या नहीं निभाए, नहीं अगर निभाए हैं तो उसके लिए कहा जाएगा कि अमुक अभिनेता की केवल एक फिल्म सफल हुई, बाकी सब फ्लॉप हो गई। इसी प्रकार सृष्टि रंगमंच के उस उपरोक्त अभिनेता की केवल एक भूमिका व्यापारी रूप में सफल हुई, बाकी सब फ्लॉप हो गई। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है सबका प्रिय वही है, यानी कि सर्वप्रिय ही क्या होता है, प्रभु प्रिय है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि एक्टर एक फिल्म में अगर उसने अच्छी भूमिका निभाई और दूसरे में उसने उसका अभिनय अगर अच्छा नहीं है तो उसकी जो फिल्म है वो फ्लॉप क्यों हुई, ये क्यों हो जाती है, भूमिकाएं यहाँ पर क्या है उसकी। कोई भी अभिनेता जब किसी भी भूमिका का निर्वहन करने से पहले उसकी तैयारी में समय नहीं देता उस भूमिका को आकर्षक बनाने के लिए, स्वयं को उसके अनुरूप नहीं ढालता तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ न्याय नहीं करता तो करता है तो उसकी वह भूमिका फ्लॉप हो जाती है। उसी प्रकार है कि जीवन रूपी नाटक में भी जब कोई भी एक्टर अपनी किसी भी भूमिका को समय नहीं देता, उसकी अहमियत को नहीं समझ पाता, उसे सम्मान नहीं देता तो उसकी भी वह भूमिका क्या होती है, फ्लॉप हो जाती है। वह अपनी किसी एक इमेज को सवारने में समय शक्ति ऊर्जा लगाता है परंतु अन्य भूमिकाओं पर वो क्या करता है, गौण उसको मानकर उसकी अवहेलना करता है। तब कहने में तो आता है ना कि वह अपनी पत्नी से पुत्रों से न्याय नहीं करता, परंतु वास्तव में तो वह अपनी पति वाली भूमिका से और पिता वाली भूमिका से न्याय नहीं करता। हाँ, इस प्रकार वह क्या होता है, ऑलराउंडर अभिनेता बनने के बजाय किसी एक भूमिका को पकड़कर उसी तक सीमित रह जाने वाला साधारण एक्टर बन जाता है। यहाँ देखते हैं कि हम भूमिका को सीमित या असीमित करते हैं अवगुण और अवगुण, अवगुण और गुण जो होते हैं उसको भी हम देखते हैं कि उस पर क्या करते हैं। सृष्टि रंगमंच पर मानो जो है कि भूमिका को सीमित कौन कर देता है, हाँ उसको हम देखते हैं उसकी भूमिका जो है सीमित या असीमित करते हैं उसके अवगुण और गुण, मानो चाहे तो सारी सृष्टि को प्रभावित कर सकने वाली भूमिका भी प्ले नहीं कर सकता और चाहे तो ऐसी भूमिका भी प्ले कर सकता है कि उसके नजदीकी लोगों पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। जैसे मान लीजिए बाजार से हमने एक लोहे का टुकड़ा खरीदा, अब उसकी कीमत है 50 रुपए। हमने उस टुकड़े को इस प्रकार ढाला कि वह एक स्कूटर का महत्वपूर्ण पुर्जा बन गया, अब जिससे उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत हो गई 500 रुपए। इससे भी आगे अगर आप देखें तो यदि हम उसे और अधिक तराश कर कार का पुर्जा बना देते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 1000 रुपए। और यदि इतना आकार दे कि वह हवाई जहाज में काम करने वाला कोई महत्वपूर्ण स्क्रू बन जाए तो कीमत उसकी 5000 रुपए तक भी की जा सकती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लोहे के टुकड़े के साथ गुणवत्ता जुड़ती गई और कीमत बढ़ती गई। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है सर्वप्रिय ही प्रभु प्रिय है। एक होता है यहाँ पर हम देखते हैं इंद्रियों की जो गुणवत्ता की वृद्धि। इसी प्रकार कोई भी साधारण जो व्यक्ति होता है वो ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से यदि अपने विचारों में सर्व के लिए शुभकामना, नेत्रों में सर्व के लिए पवित्रता की किरणें और मुख में सर्व को ऊंचा उठाने वाले बोल और हाथों में परोपकार के कर्म भर ले तो उसकी भूमिका जो है वैश्विक हो जाती है। हर कोई उसे जाने लगता है, हर कोई उसे अपना मानने लगता है। वह सर्वप्रिय अर्थात लोकप्रिय के साथ साथ प्रभु प्रिय भी बन जाता है। ऐसा इसलिए वो पाया क्योंकि उसने अपने एक एक इंद्रियों की गुणवत्ता को बढ़ा लिया। कई भाई बहन के मन में एक प्रश्न आता है कि हम अपनी भूमिका को सर्वप्रिय बनाना चाहते हैं, परिवार में सबको राजी रखने के साथ साथ समाज देश में भी सबको राजी रखना चाहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों हमसे ऐसा चिंतन भूल और कर्म हो जाते हैं जो भूमिका फ्लॉप हो जाती है। अब इस प्रश्न के उत्तर में हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी जो है किसी दीवार के साथ टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तब वह कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता

मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये टकराए, परंतु पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। कैसे हो गया, इसका स्पष्ट उत्तर है कि चालक में नियंत्रण शक्ति की कमी थी। उसने समय पर गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाए, ब्रेक की सुविधा होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए दुर्घटना घट गई। यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं कि नियंत्रण शक्ति की कमी। इसी प्रकार मानव जो है जीवन रूपी गाड़ी की जो चालक मानव आत्मा है, मानवीय जो गाड़ी के सभी महत्वपूर्ण अंगों को चलाना या रोकना यह आत्मा के वश में है। अब यदि मुख से क्रोध के शब्द या अन्य प्रकार के नकारात्मक शब्द निकलते हैं तो इसका अर्थ है कि आत्मा चालक में नियंत्रण शक्ति की कमी है। वह अपनी ही एक अंग मुख को कमांड नहीं दे पा रही है कि कब उसे क्या बोलना है, क्या बोलना है उसे ये नहीं पता, कितना बोलना है। तो यहाँ हम देखते हैं लौकिक दुनिया में जब कोई ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल कर न कर पाए और दुर्घटनाग्रस्त कर ले, तो उसका जो लाइसेंस जब्त हो जाता है और अदालत में उस पर कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार जब हम अपने और शरीर की जो कर्म इंद्रियों को अगर ठीक से कमांड नहीं दे पाते हैं और उनके कारण किसी से टक्कर या चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारा भी सुखमय जीवन जो है जीने रूपी जो है उसकी लाइसेंस जो है जब्त हो जाती है, अर्थात हम रोग शोक के शिकार हो जाते हैं। और हम पर क्या होता है, हम पर भी धर्मराज की अदालत में कार्यवाही चलती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सर्व का प्रिय प्रभु प्रिय। जैसे कि हम देखते हैं कि आत्मा की इंद्रिय पर नियंत्रण शक्ति बनी रहे और बढ़ती रहे, इसके लिए भगवान शिव कहते हैं, प्रजापति बने हो, इंद्रियों रूपी प्रजा के मालिक हो, क्या अनुभव करते हो? हाँ, स्टॉप कहा और कोई भी कर्म इंद्रियां जो है स्टॉप हो गई। ऐसे नहीं, आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। हर कर्म इंद्रिया की शक्ति को आंख के इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्म इंद्रिय चित बनू तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो अपने से पूछो, हर कर्म इंद्रिया जी हुजूर जी हाजिर करते हुए चलती है? आप राज्य अधिकारी का सदा स्वागत और सलाम करती रहती है? राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है? हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है? मंत्री उपमंत्री कहीं धोखा तो नहीं देते हैं? चेक करते हो अपने राज्य दरबार को? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी? राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार ही भविष्य में काम करेंगे। फौलादि दृढ़ता का प्रतीक आसमान में चमकते हाँ ही चमकने वाला ध्रुव तारा जिस ध्रुव बालक की यादगार है उसकी पौराणिक कहानी में दिखाया गया है कि वी माता के कटु वचनों से आहत होकर वह अकेला ही तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा और तपस्या में रत हो गया। तपस्या करते करते भूख प्यास श्वास निद्रा भय सब पर विजय प्राप्त कर ली। इस अखंड तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया, बेटा ध्रुव जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह तक ने नहीं पाया है, जिसे और भी कोई नहीं पा सका है, वह ध्रुव लोक तुम्हारा है। अभी तुम घर लौट जाओ, पिता के बाद सिंहासन को घोषित करना, पृथ्वी पर राज्य भोग कर फिर तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। आत्मनियंत्रण और निरंतर जो तप ने ध्रुव को प्रभु प्रिय के साथ सर्व प्रिय भी बना दिया। हम सब भी विकारों रूपी वी माता के कटु वारों से आहत हो परमात्मा पिता की अव्यविचारी याद रूपी तपस्या के पद पर अग्रसर है। इस पद का एक ही मूल मंत्र है, स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों पर विजय। इंद्रिय जीत ही विश्व जीत, विश्व प्रिय लोक प्रिय सर्व प्रिय और प्रभु प्रिय है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। सदा हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर, पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। कहते हैं, तलाशी मेरे हाथों की लेकर क्या पालोगे तुम, तलाशी मेरे हाथों की लेकर क्या पालोगे तुम, चंद लकीरों में छिपे अधूरे से कुछ किस्से हैं, चंद लकीरों में छिपे अधूरे से कुछ किस्से हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। आइए ख्वाबों के सफर को यादगार और सुहाना बनाते हैं। और आज के हमारे हम सफर विभा जी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी। ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार से प्यार भरा नमस्कार।
1: जी विभा जी, स्वागत है आपका। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अलग अलग कलेक्शन लेके हमारे बीच में आते हैं। तो आज किस कलेक्शन की बात होगी, कौन से अक्षर वाले गाने हमें सुनाएंगे आप?
2: आज भी मेरे पास ओ अक्षर वाले ही गाने हैं।
1: अरे वाह, मुझे तो लगा खत्म हो गया आपके पास।
2: नहीं, अभी चल रहे हैं, कुछ ही गाने हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: और पहला गाना मैं देना चाहूंगी, ओ शमा मुझे फूक दे, मैं ना मैं रहूं तू ना तू रहे। इसमें ये एक स्टेज पे फिल्माया गया यह गाना है। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो सेट है उसपे शमा और परवाने के एक लाइट को दिखाया गया है और शमा जल रही है। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इसको गाया भी गया है और स्टेज के ऊपर नाच के साथ फिल्माया गया है। इसमें बहुत ही खूबसूरती है। और जैसे कि इसके बोल हैं, ओ शमा मुझे फूक दे, इतना प्यार होने के बावजूद भी जैसे शमा और परवाना मिल नहीं पाते, जो कि इश्क का दस्तूर भी है। तो उसमें गाने के बोल हैं, पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने ना कोई मेरे दिल की जलन, जब से है जमी प्यार की ये दुनिया, तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर है।
1: विभा जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। आशिक इस एल्बम से है जो 1960 में रिलीज हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म के कलाकार हैं शम्मी कपूर, नंदा, पद्मिनी, लीला चिटनिस। इन पर पिक्चराइज किया गया था। और जैसे आपने कहा कि ये जो एक रोमांटिक लव स्टोरी की कहानी है और कहीं ना कहीं इसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी मिलती जुलती भी होती हैं, लेकिन फिर इस फिल्म को जो है थोड़ा सा अलग करने की कोशिश ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है। क्लाइमैक्स इसमें यही है कि गोपाल नाम का एक व्यक्ति है और प्रताप नाम का एक व्यक्ति है, दोनों के बीच में क्लाइमैक्स बताई गई है। प्यार की कहानी में आशिकी बताई गई है। अभी इस गाने को हम लोग सुनेंगे जिसे लिखा है शैलेंद्र जी ने, लता मंगेशकर और मुकेश जी ने गाया है। शंकर जयकिशन का संगीत बद आशिक इस एल्बम का ये पहला गाना कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: कहते हैं जब मोहब्बत को लोग खुदा मानते हैं, फिर क्यों प्यार करने वालों को बुरा मानते हैं? माना कि ये जमाना पत्थर दिल है, फिर क्यों लोग पत्थरों से दुआ मांगते हैं? आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। और हमारे हम सफर गानों को लेकर आए हैं, जी हाँ, विभा जी। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ। जो आपने शेर सुनाए, बड़ा गहरा शेर है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा।
1: धन्यवाद जी।
2: मेरे पास है गाना, ये काफिला जा रहा है और इसमें काफिले में चलते हुए भगवान से शिकायत भी की जा रही है और अपना दुख का इजहार भी किया जा रहा है। ओ जिंदगी को देने वाले, ओ जिंदगी को लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। बहुत ही दुख है इसमें, गाने में शिकायत है और भगवान से जैसे लड़ के और उससे अपना प्रीतम को वापस लेने की एक गुजारिश की गई है इसमें। इसके बोल बहुत ही सुंदर है। मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे, फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे। मुझे मेरी जान दे दे, प्रीत को ये दान दे दे, खोए हुए मेरे प्राण दे, दिल मेरा तोड़ के बता तुझे क्या मिला। ये भगवान को कह रहे हैं।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, बहुत ही अच्छा सुदिंग गाना है। और इस गाने को हम लोग सुनेंगे, और ये मुझे लगता है कि नागिन नाम की एक फिल्म आई थी 1954 में, उस फिल्म का ये गाना है। और इसमें प्रदीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन और जौहर साहब ने काम किया था। और फिल्म में स्टोरी नागिन वाली है। नागिन यानी एक जो हीरो है वो शिकार करने जाता है, और शिकार करते करते एक नाग जो है उससे मर जाता है। फिर नाग मर जाता है तो नागिन वहाँ आती है, और नागिन को ये पता चलता है किसी इंसान ने मेरे नाग को मारा है, तो वो नागिन जो है हीरो के पीछे लग जाती है और आखिरी में बदला लेना चाहती है। तो इस तरह का ये जो है नागिन फिल्म की स्टोरी है, एक नागिन की। तो आइए इस गाने का आनंद लेते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं। ओ अक्षर वाले कहते हैं, क्यों तन्हा कर देते हो यू दूर जाकर, क्यों तन्हा कर देते हो यू दूर जाकर, इंतजार करते हैं हम बेकरार होकर, वक्त बदलता है माना हमने, न छोड़ कर जाया करो अनजान बनकर। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। आइए विभा जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, गाने को एंजॉय कर रही हूँ और बड़े मजे के साथ सुन रही हूँ सारे गाने।
0: जी जी, अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना मेरे पास है ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, डेफिनेटली ये सारे गाने ब्लैक एंड व्हाइट पे हैं मोस्टली गाने।
0: हाँ,
1: लेकिन ये संजीव कुमार बैलगाड़ी पे बैठे हुए आप जस्ट इसको इमेजिन
0: कर
1: और वो ये गा रहे हैं बड़े प्यार के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ वो गाना गा रहे हैं। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ये बहुत ही मुकेश का गाया हुआ गाना है
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: संजीव कुमार क्योंकि ये मेरे फेवरेट एक्टर हैं, इनको इस गाने को मैंने YouTube में कई बार देखा है और ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है और इसके इनके बोल जो मुझे बहुत पसंद है
0: जी, जी, जी।
1: कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मूत हैं, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने।
0: जी विभा जी, बहुत ही खूबसूरत गाना जैसे आपने याद कराया है और इसके जो लिरिक्स हैं या जो भाव बने हुए हैं और जो रिदम में बनाया गया है वो सभी को आकर्षित करता है। मुझे भी बहुत प्यारा लगता है ये गाना। इंदिवर साहब का लिखा है, मुकेश जी का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत से सजा, अनोखी रात इस एल्बम का ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, अनोखी रात इस एल्बम का। और जैसे कि मैं कह रहा था कि अनोखी रात ये एक यूनिक फिल्म कह सकते हैं, थोड़ी सी कहानी इसमें नया बताने की कोशिश रही। संजीव कुमार, जाहिदा, अरुणा ईरानी, तरुण बोस पर पिक्चराइज किया गया था और असित सेन का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। और इस फिल्म में एक कहानी इस तरह से बताई गई है कि एक व्यापारी होता है, वो अपनी पत्नी को लेकर किसी व्यापार के सिलसिले में गांव की तरफ बढ़ता है, तो बीच में अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरी रात में आगे और यात्रा न करने की वजह से वो किसी आश्रय को ढूंढते हैं, तो पास के एक गाँव में जाते हैं और उस गांव में वो आश्रय लेते हैं। लेकिन जिस घर में वो आश्रय लेते हैं वो एक डाकू का घर होता है और डाकू इन दोनों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि जो व्यापारी है उसकी पत्नी को देखकर डाकू को अपनी मरी हुई पत्नी की याद आ जाती है, उनकी हमशक्ल लगती है। तो इस तरह की ये कहानी यहाँ पर बताई गई है, तो बहुत ही अलग स्टोरी है। और जैसे आपने कहा कि इस गाने को बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिक्चराइज किया गया था और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास है सनी, जैसे मैं आपको बोलूँ की हेलन पे पिक्चराइज किया गया एक गाना है, तो आपके सामने आप विजुअलाइज करेंगे वो कैबरे करती हुई या स्टेज पे वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए डांस कर रही हैं। लेकिन ये जो गाना मैं लेके आई हूँ इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गाना है, इसमें इसके बोल हैं, पहले मैं बोल बता दूं, उई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जाए। और इसमें ये एक घगरा चोली पहन के हेलन डांस कर रही है, इतनी खूबसूरती से इन्होंने नृत्य किया है और अपनी सखियों के साथ हाले दिल बयां कर रही हैं।
1: अच्छा।
2: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी, जी,
2: और कह रही हैं शीशा हो तो तोड़ भी दो, दिल ना तोड़ा जाए।
1: वाह बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि गाना सुन लिया जाए पहले
2: जी।
1: तो चलिए मैं सीधे गाने की तरफ आपको रुख करता हूँ। फारूक कैसर साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत पारस मणि का आपके लिए। अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाने बड़े प्यारे प्यारे आपने सुनाए विभा जी, और कहते हैं मेरी मोहब्बत की ना सही, मेरे सलीके की तो दाद दे, तेरा जिक्र रोज करते हैं हम, तेरा नाम लिए बगैर। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। तो चलिए पारस मनी, इस एल्बम से आपने जो गीत सुना वो बहुत ही खूबसूरत गीत था, और हेलन की जिस तरह से विभा जी ने बातें की थी उसी तरह का ये जो है भाव प्रकट करता है। और पारस मनी ये फिल्म जो आई थी 1960s में रिलीज हुई थी, 63 में, और इस फिल्म की कहानी भी थोड़ी सी यूनिक रही। अरुणा ईरानी, मनहर देसाई, हेलन पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। और उस जमाने में इस फिल्म को शायद लोगों ने काफ़ी देखा, क्योंकि एक पॉपुलर नाम है पारस मनी, और पारस मनी मना किसी हीरे की बात हो रही है यहाँ पर, और उस मनी को छूने से जो है व्यक्ति अपने उम्र को ख़त्म कर देता है, यानी अपने अगर जितने भी उम्र में वो है वो जवान हो जाता है और उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे इसमें इस हीरे के बारे में बताया गया है। और पारस जो है ये नाम भी एक अपने आप में एक मैसेज देता है, जिसके पास भी ये पारस जो आ जाता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, ऐसे बताया गया है। कहानी जो है बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैंने बताई आपको। और विभा जी कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: जी जी, तो चलिए आप आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में हम लोग, क्योंकि ओ अक्षर वाले गाने मेरे ख्याल से अब पूरे हो गए हैं विभा जी।
2: जी जी बिल्कुल जी, और इसमें बहुत से गाने हमने मिक्स करे हैं, इसमें प्यार भी था, चांद सितारों से बातें भी थी, और नैया थी, खिवैया थे, और इसको ऑलमोस्ट सबको हमने समेट के एक ही पिटारी में ला के उसको अच्छे से सुना, पूरा एंजॉय किया। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने बड़े प्यार के साथ इसको सुना और अपनी शायरी को उसमें ऐड करते हुए कि उसमें जो आपने रस डाला है उसका तो श्रोताओं ने बिल्कुल, मैंने तो एंजॉय किया, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत बहुत एंजॉय किया होगा।
1: जी जी जी, चलिए अब अगले पड़ाव में हम लोग अगले अक्षर की तरफ जाएंगे, पी अक्षर। पी बहुत ही एक प्यार वाला शब्द है, प्यार से शुरू होता है और पवित्र शब्द है पी अक्षर।
2: जी जी बिल्कुल, पी से प्यार है, प्रेम है, पवित्रता है, परछाई है।
1: जी जी, और इसके गाने भी बहुत सारे हैं इस अल्फाबेट से।
2: जी जी,
1: तो अगले पड़ाव में हम लोग इसी अल्फाबेट के साथ जुड़ेंगे हमारे श्रोताओं के साथ में, और जाते जाते कुछ गजलें और एक पी अक्षर वाला गाना जरूर मैं श्रोताओं की तरफ नजर करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप एक गाना अगर पी अक्षर वाले आपके पास हो तो जरूर मुझे बताइए।
2: जी, इस टाइम मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है ये कॉमेडी है, इसमें महबूब जो है उन्होंने एक्ट किया है।
1: अच्छा,
2: और
1: अच्छा,
2: बहुत ही अपने प्यार का इजहार जो है उसको बड़ी कॉमेडी के तरीके से उन्होंने किया, उनको पिक्चराइज ऐसे किया, अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और एक्चुअली वो अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहे हैं, जो उनके ससुर उसको उनको अपनी पत्नी के पास नहीं जाने देते। तो ये गाना ऐसा है, प्यार की आग में तन बदन जल गया, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे। ये जैसा मैंने कहा ये कॉमेडी का गाना है, और इसके बोल है, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह, जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे। बहुत ही
1: चलिए, बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया पी अक्षर वाला जाते जाते। और ये फिल्म थी जिद्दी जो 1964 में रिलीज हुई थी, और ये एक युवक की कहानी इसमें बताई गई है, और जॉय मुखर्जी, महमूद अली, शोभा खोटे, आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। और इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग हट के बताई गई है। इस फिल्म का जो गाना आपने याद कराया है, इस गाने को हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है और मन्ना डे साहब ने इसे गाया है, सचिन देव बर्मन ने संगीत से संवारा है। तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा कि वक्त हो गया है हमारे श्रोताओं से इजाज़त लेने का, एंड थैंक यू सो मच विभा जी आपको।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं को भी इतने प्यार से सुनने के लिए, और आपको बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार। चलिए विभा जी, जाते जाते दो लाइनें आपके लिए खास और हमारे सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा। अगले पड़ाव में हम लोग पी अक्षर के बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर वापस आपके साथ रहेंगे इसी तरह ख्वाबों के सफर में। और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कहते हैं औरों से कहा तुमने, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कभी हमसे कहा होता, कभी हमसे सुना होता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत, बहुत सारी शुभकामनाएं दुआओं के साथ। सलाम नमस्ते खमा गनीसा, खुश रहो खुशियां बांटो,
2: खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पिछली कड़ी में आपने जाना कि 19वीं सदी में पराधीन भारत की क्या दशा थी। दिशाहीन समाज कई कुरीतियों के जाल में फंसा था। उस समय कई महात्मा और समाज सुधारक हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से समाज के इस पतन को रोकने की कोशिश की, परंतु सदियों के कदाचार को वो पूरी तरह मिटा ना सके। उन महापुरुषों का उल्लेख किए बिना हम भारत के सामाजिक इतिहास का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। आइए अब उसके बारे में जानें। उन्नीसवीं सदी तक आते आते भारतवासी आदर्शच्युत तथा आत्मविस्मृत हो धर्म समाज एवं राष्ट्र के क्षेत्र में अधःपतन की चरम सीमा पर पहुंचे थे। मुगल साम्राज्य भी आखिरी सांसें गिन रहा था। इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर अंग्रेजों का मापदंड धीरे धीरे राजदंड में बदल गया और हिंदू व मुसलमान दोनों निरुपाय जातियां बिना प्रतिवाद के ही अंग्रेजों के चरणों में झुक पड़ी। भारत की दीनता और दुर्बलता का प्रायश्चित प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी में।
1: तो क्या इसी समय को सुधार युग या रेनेसां युग कहा जाता है? भारत में क्या इसी समय पुनर्जागरण काल आया? सदियों से सोते हुए भारत को एकाएक किसने जगाया?
0: किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से इतना बड़ा काम संपन्न नहीं हो सकता था। उस कालखंड में कई महापुरुषों तथा समाज सुधारकों का जन्म हुआ था जिन्होंने असहाय भारत को नई दिशा दी।
1: परंतु आदर्शच्युत तथा बिखरी हुई भारतवासी जाति पहले मुगल काल में भी तो अपने जातीय स्वातंत्र और वैशिष्ट को पर्याप्त मात्रा में ज्यों का त्यों बनाए रखकर अपनी आत्मरक्षा कर सके थे, फिर वे पाश्चात्य शक्ति के सामने क्यों कर झुक गए?
0: हाँ, ब्रिटिश युग में एक विपरीत शिक्षा और सभ्यता के संघर्ष में प्राचीन समाज की पुरानी विधाओं का कोई उपयोग न रहा। नवीन शिक्षा और सभ्यता की बाढ़ को पुरानी दीवार रोक नहीं पाई। काल और परिस्थिति के अनुसार आत्मरक्षा तथा आत्म प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में संपूर्ण रूप से असमर्थ भारत सदियों के कुसंस्कारों के भार से दबकर लगभग सभी प्रकार से कमजोर हो चुका था। विजित जाति सहज में ही विजय जाति के गुण गौरव से मोहित हो जाती है। कई सदियों की पराधीनता के फल स्वरूप आत्मविस्मृत भारत के सामने पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता अपनी सम्मोहिनी शक्ति लेकर इंद्रधनुष की तरह उद्भासित हुई। भारतीय इतिहास और विशेषकर बंगाली जाति के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
1: बंगाल का ही विशेष उल्लेख क्यों? क्या अंग्रेज साम्राज्य का पहला गढ़ था बंगाल इसीलिए?
0: हाँ, उनके समान अन्य किसी भी प्रांत के निवासियों ने उतनी तेजी से पाश्चात्य सभ्यता के स्रोत में बह जाने की चेष्टा नहीं की थी। फलस्वरूप पाश्चात्य आदर्श के साथ प्राच्य के संघर्ष से जिस क्रिया प्रतिक्रिया का प्रारंभ हुआ, दासों की तरह दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति ने समाज और जीवन में जिस चंचलता की सृष्टि की, वो मुख्यतः बंग भूमि में ही जोर से पनपी और इस आंदोलन का केंद्र स्थल बना भारत की नव प्रतिष्ठित राजधानी कलकत्ता नगरी।

लकीर का फकीर समाज यह समझने लगा कि कुछ पुरानी प्रथाओं और निषेधों को मानकर चलना, त्योहार मनाना, तीर्थ यात्रा करना और गंगा स्नान करना, ब्राह्मण वैष्णवों को दान दक्षिणा देना तथा खान पान में कुछ निर्दिष्ट नियमों का पालन करना ही धर्म है। इनमें से

0: पढ़कर नौकरी कर लेना या चिट्ठी पत्री लिख लेना और हिसाब रखना रखाना ही शिक्षा का चरम आदर्श था।
1: इसी समय कलकत्ते का बाबू कल्चर चरम पर था। धनी और बाबू बंगालियों का चरित्र कई तरह से भ्रष्ट हो चुका था। धन रहने पर पत्नियों के सामने ही उपपत्नियां रखना आम बात थी। अश्लील एवं कुरुचिपूर्ण संगीत अथवा कविताओं का वाक्युद्ध लोग बहुत पसंद करते थे। कलकत्ते के बाबू लोग बुलबुल की लड़ाई, कबूतरबाजी, पतंगों के पेंच तथा चटकीली भड़कदार पोशाक पहनकर गणिकाओं के साथ बगीचों में मौज मस्ती उड़ाने में ही मस्त रहते थे।
0: ऐसे ही समय एक मेधावी महापुरुष कलकत्ता नगर में आविर्भूत हुए। ऊंघते हुए बंगाल ने चौंक कर चेतना पाकर देखा राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय के धर्म और समाज सुधार के आंदोलन से कलकत्ता नगरी विक्षुब्ध हो उठी। सर्वत्र इन्हीं की चर्चा होने लगी। बाबुओं के बैठक खाने में, भट्टाचार्यों की चौपालों में, गांवों के चंडी मंडपों में, जहां देखिए वहां राजा राममोहन राय की ही चर्चा। अंतःपुर के अंदर भी इस प्रवाह की लहरें अपना असर दिखाती रही।
2: अरे हम तो कहे देते हैं, राजा राममोहन राय जो भी कर रहे हैं ये कुछ भी उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। राम राम राम, शांतम पापम शांतम पापम,
3: ऐसा होना नहीं चाहिए।
4: क्या करें,
3: नहीं होना चाहिए,
4: हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए।
2: अरे हम तो चाहते हैं आप युवा लोग आगे आए। अरे आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो।
5: हम तो पहले से ही कह रहे हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं पूरा राष्ट्र को संभालने के लिए, हम पूरा सब इतना कार्य करते हैं, हमें भी तो कुछ चाहिए।
2: चाहिए, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महानुभाव, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ।
4: हम लोग बिल्कुल
6: हम आपके साथ हैं, बिल्कुल
5: बातें हम सबको बताएंगे,
6: बिल्कुल
2: सीताराम सीताराम। चलो भैया चलो चलो चलो।
1: राजा राममोहन राय उस युग की जरूरत थे। उनका जन्म एक धनी तथा अभिजात परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में उन्होंने पटना में अरबी तथा फारसी भाषा सीखी थी और उसी भाषा में कुरान, यूक्लिड एवं अरस्तु के ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसके बाद काशी जाकर उन्होंने संस्कृत एवं वेदांत का अध्ययन किया। वेदांत एवं कुरान का अध्ययन करते समय वे मूर्ति पूजा के विरोधी तथा एकेश्वरवादी बन गए। इसके बाद कलकत्ता आकर उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन तथा हिब्रू भाषा सीखकर बाइबल आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विभिन्न धर्म के तत्वों को जानने वाले राजा राममोहन राय ने ही सर्वप्रथम विभिन्न धर्म मतों की तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात किया।
0: बंगाल आकर उन्होंने कई जगह नौकरियां की। कलकत्ते में कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उसी दौरान उन्होंने हिंदू धर्म में निहित कुरीतियों तथा विदेशियों द्वारा प्रचारित मतवादों की सारहीनता पर बराबरी से प्रहार किया। उनका मूल मंत्र था वेदांत दर्शन। मिशनरी समाज तथा विरोधी हिंदू समाज एक साथ उनके विरुद्ध खड़े हो गए।
1: क्या यही वो विख्यात वेदांत युद्ध नामक ऐतिहासिक घटना थी?
0: हाँ, एक ओर थे अपनी जाति के सदियों से संचित कुसंस्कार और दूसरी ओर थी विदेशियों द्वारा हिंदुओं के धर्म और दर्शन की गलत व्याख्या। राममोहन को एक ही साथ इन दोनों के विरुद्ध शास्त्र और युक्ति का प्रयोग करना पड़ा।
1: राजा ने सारी प्रतिकूल शक्तियों के विरुद्ध अकेले खड़े होकर जिस असाध्य बात को संभव बनाने की कोशिश की थी, आज उसकी कल्पना करना भी कठिन है। तभी तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था,
7: उन्होंने क्या नहीं किया? शिक्षा, राजनीति, बंगला भाषा, बंग साहित्य, समाज, धर्म, जो कुछ भी कहिए, बंगाली समाज के जिस किसी विभाग में आगे जो भी उन्नति हो रही है वो मानो केवल उन्हीं के हस्ताक्षर हैं जो नए नए पृष्ठों में अधिकाधिक प्रकट हो रहे हैं।
0: राममोहन ने समाज सुधार के जितने भी अभियान चलाए थे उनमें से सती प्रथा का उन्मूलन सबसे ज्यादा कारगर रहा। उनके मूर्ति पूजा या जाति भेद प्रथा के

0: विरुद्ध आंदोलनों से सनातन समाज नाराज तो था, परंतु सती प्रथा को आम जनता की सहमति प्राप्त थी, अतः इसका भयंकर विरोध हुआ। राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा की स्थापना कर लोग इस निर्दयी आचरण का समर्थन करने लगे।
1: पर सुनने में आता है कि उस समय में स्त्रियां स्वयं सती होना चाहती थी।
0: नहीं, कभी कोई विरली ही नारी स्वेच्छा से सती होती थी। अधिकांश अवसरों पर तो संपत्ति और धन के लोभ से शोकार्त विधवा को भंग, धतूरा आदि खिलाकर उससे सहमरण की सम्मति ली जाती थी और उसे चिता पर बांधकर बांस से दबाकर जला दिया जाता था। ये सब जानते हुए भी लोग इस बर्बर प्रथा का समर्थन करते थे।
2: राम मोहन, तू अभी बच्चा है, नहीं समझेगा मेरे बच्चे।
3: बताओ ना बुआ, सहगामना क्या होता है? भाभी भाभी को लोग कहाँ ले जा रहे हैं?
2: देख बेटा, जिसका पति मर जाता है उस महिला को अपने पति के साथ स्वर्ग जाना होता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी होती है ना पति की। तो चिता में पत्नी को भी अपने मरे पति के साथ बिठाया जाता है, इसी को सहगामना कहते हैं, मतलब सती होना कहते हैं बच्चे।
3: भाभी भाभी तो जिंदा है, वो जल नहीं जाएंगे चिता की आग में।
2: मैंने कहा था ना बच्चे कि तू नहीं समझेगा, बस इतना समझ ले कि पति के साथ पत्नी भी स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है।
3: पर ये तो गलत है, भाभी जिंदा है, भाभी तो जिंदा है ना।
4: नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती।
1: राममोहन के दीर्घ 12 वर्ष के आंदोलन के फल स्वरूप 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सतीदाह प्रथा को निषिद्ध ठहराने वाला एक कानून बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राममोहन की युक्ति के औचित्य को समझा।
0: उसी समय एक और भयंकर प्रथा के विरुद्ध कानून बना, वो था गंगा सागर में संतान फेंकने की प्रथा। माताएं अपने शिशु को गंगा सागर में विसर्जित कर ये आशा करती थीं कि स्वयं माँ गंगा उस शिशु को वापस कर देंगी और उसकी आयु लंबी होगी।
1: राममोहन की सर्वतोमुखी प्रतिभा की प्रखर दृष्टि जातीय जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ी थी। स्वधर्म अनुरागी तथा जातीयता बोध के प्रथम राममोहन ने ही सबसे पहले नवजागरण के भेरी निनाद से देश को जागृत होने के लिए पुकारा था।
0: एक प्रचलित गलत धारणा है कि राममोहन ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। उन्होंने किसी नवीन धर्म या संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। उसके संस्थापक हैं महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। वे प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के पुत्र तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे। उनके धन बल तथा जन बल की सहायता से ब्रह्म समाज ने थोड़े ही समय में शिक्षित समाज की दृष्टि को आकर्षित कर लिया और बंगाली समाज में धर्म परिवर्तन को अपनाने की जो बाढ़ आई थी उसमें रोक लगी। युवा वर्ग ब्रह्म समाज में सम्मिलित होने लगे।
1: इसी समय एक और शक्तिशाली पुरुष का आविर्भाव हुआ। वे थे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंग भाषा के निर्माता एवं पालक विद्यासागर, शिक्षा के प्रचार में रत विद्यासागर, दीन दुखी एवं आर्तों की सेवा में जीवन व्यतीत करने वाले विद्यासागर, और सबसे बढ़कर समस्त देश के समाज की दुर्गति एवं दुर्नीति को दूर करने का व्रत लिए हुए विद्यासागर की अतुलनीय कीर्ति कथा नव बंगाल के इतिहास की एक अक्षय संपत्ति है।
0: जैसे राममोहन राय का नाम सती प्रथा उन्मूलन के कारण से अमर हो गया, ठीक उसी प्रकार विधवा विवाह प्रथा को विद्यासागर ने शास्त्र सम्मत प्रमाणित कर दिया और उन्हीं के एकांतिक प्रयत्न का फल था कि विधवा विवाह सरकार द्वारा कानून के रूप में स्वीकृत हो गया। विधवा के दुख से कातर ऐसी पौरुष युक्त और प्रभावशाली वाणी की गर्जना बंगाल में और कभी नहीं हुई थी। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने विद्यासागर के पास आकर कहा था,
5: इतने दिन नाला, गड्ढा और तालाब देखा, आज सागर देखने को मिला।
1: यह रामकृष्ण परमहंस देव कौन थे? नवजागरण में उनकी कौन सी भूमिका थी?
0: नवीन नागरिक सभ्यता की केंद्र भूमि कलकत्ता, जिस समय इन सब प्रबल सुधार आंदोलनों की क्रिया प्रतिक्रिया से आंदोलित हो रहा था, उसी समय इस नगर के निकट दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के काली मंदिर में एक अज्ञात पुजारी ब्राह्मण आए। ये तरुण पुजारी सरल हृदय और उदार थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे। वहां सभी मतों के, सभी पंथों के साधक आते थे, उनसे मिलते थे। उन्होंने तंत्र, वेदांत तथा अद्वैत ब्रह्म तत्व की शिक्षा भी ली थी। कालांतर में वे विवेकानंद के गुरु बने।
1: एक दिन सुधार युग के नेता केशव चंद्र की मुलाकात रामकृष्ण देव से हुई। मूर्ति पूजा विरोधी केशव मूर्ति पूजक रामकृष्ण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, यदि शांति चाहते हो तो दक्षिणेश्वर के महापुरुष के चरणों के पास बैठकर धन्य बनो।
0: सिर्फ केशव चंद्र ही नहीं, नव विधान समाज के प्रचारक एक और सुधारवादी प्रताप चंद्र मजूमदार ने रामकृष्ण देव के लिए कहा,
6: उनमें और मुझमें भला क्या समानता है? मैं यूरोपीय कल्चर का प्रेमी हूं, अरिस्टोक्रेट, आत्मभिमानी और अर्ध संदेहवादी हूं, तथा कथित शिक्षित युक्तिवादी हूं, और वे तो धनहीन निरक्षर अमार्जित रुचि मूर्ति पूजक मित्रविहीन हिंदू भक्त हैं। क्यों मैं उनकी बात सुनने के लिए घंटों बैठा रहता हूं? मैं जो डिसराइल, फासेट, स्टैनली, मैक्स मूलर तथा पश्चिमी जगत के सभी विद्वानों और पादरियों के उपदेश सुन चुका हूं, मैं जो ईसा मसीह का एकांत भक्त और अनुचर हूं, उदार हृदय मिशनरियों का मित्र और समर्थक, युक्ति पंथ ब्रह्म समाज का अनुगत भक्त और कर्मी हूं, मैं भला क्यों उनकी वाणी सुनता हुआ मंत्रमुग्ध हो जाता हूं? और अकेला मैं ही नहीं, मेरी तरह और अनेक व्यक्ति भी इसी प्रकार सम्मोहित हो जाते हैं।
1: इस तरह कई ब्रह्म समाजी पुनः सनातन धर्म से प्रभावित हुए। केशव चंद्र इस आंदोलन के अग्रणी रहे। उन्होंने ब्रह्म समाज के विपरीत हिंदू मत से अपना कन्यादान किया। उनकी परिवर्तित आस्था की भारी आलोचना हुई, उथल पुथल मच गई और ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो गए और सुशिक्षित समाज में ब्रह्म मत का प्रभाव घटने लगा।
0: सुधार युग के प्रवर्तक राममोहन राय की बात अगर छोड़ दी जाए तो उनके बाद के सुधारकों ने ध्वंस नीति का अनुसरण करते हुए शक्ति का इतना अधिक क्षय किया था कि संगठन या निर्माण उनके लिए असंभव और असाध्य हो गया, जिससे समाज जुड़ने की बजाय टूटने लगा। पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण तथा प्राचीन समाज एवं धर्म के मस्तक पर अकारण प्रहार, बस यही बात के शक्तिहीन दुर्बल सुधारकों का एकमात्र पेशा हो गया।
1: इसी समय 19वीं सदी की अंतिम मांग में, जब हम सुधार के भंवर में पड़कर यह नहीं समझ पा रहे थे कि किधर जाएं, पाश्चात्य की प्रखर चकाचौंध से जब हमारी आंखें चौंधिया रही थी, जब सारा राष्ट्र दिग्भ्रमित हो रहा था, जब राष्ट्र के सामने प्रश्न के बाद प्रश्न, संदेह के बाद संदेह धीरे धीरे स्तूपाकार होते जा रहे थे, जब विजातीय पथ पर स्वजाति का सुधार रथ चलने में असमर्थ होकर रुक सा गया था, एक दीर्घ शताब्दी के सुधार के परिणाम को सोचकर जब हम एक तरह से निराश होकर बैठ गए थे, आगे क्या करें यह सोच न पा रहे थे, उस समय सुधार की उस आंधी से आंदोलित समाज के गम से आविर्भूत हुए स्वामी।

विवेकानंद जो ध्वंस के विरोधी थे, उनका मूल मंत्र था संगठन। उन पर पूर्ववर्ती सुधारकों और साहित्यकारों का प्रभाव था। उनके मानसिक विकास के इतिहास में हम देखते हैं कि वे अपने पूर्वगामी सुधार युग को संपूर्ण रूप से आत्मसात करके अग्रसर हुए हैं। प्रत्येक परवर्ती युग प्रवर्तक को ऐसा करना पड़ता है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D, mad. Mad माने पागल, B-O-Y, boy. Boy माने

चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: हर रोज एक नया अवसर है, हर रोज हर दिन एक नया मौका है हमारे पास कुछ कर गुजरने का, कुछ ऐसा जो न केवल खुद को चैन और सुकून का नींद दे, लेकिन आसपास के लोगों के अंदर भी प्रेरणा से उनका जीवन भी बदल दे। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में मैं आरजे शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि आज भी हमारे साथ हमारे प्रिय साथी जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, शहीद भगत सिंह दल के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, और जिन्होंने कोरोना काल में लाखों लाखों परिवारों को एक अनूठे सेवा से सुख पहुंचाया है। लाशों का अंतिम संस्कार करना, ये बहुत बड़ी सेवा शहीद भगत सिंह दल और शंटी जी ने मिलकर के किया है। तो आइए हम जारी रखते हैं हमारे बातचीत को। हम सुन रहे थे शंटी जी से कि कारगिल के उस जवान ने क्या कहा
4: कि जब करगिल की लड़ाई हुई तो एक जवान की आंख में गोली लगी थी। तो मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप चली गई, आप अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। तो उसके जवाब ने जो ना मुझे खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जी मैं दुश्मन को एक आंख बंद करके गोली मारता था, अब तो परमानेंट बंद होगी, अब टिका टिका के।
3: ये बहुत अच्छा था।
4: तो हमारे साथ भी वही हुआ
3: जी,
4: कि हमारा हौसला और बुलंद हो गया कि मर के बच के आ गए। सच बोलूं मैं आपको, जिस प्रकार 1947 का कत्लेआम लोग नहीं भूलते हैं, पार्टीशन हुआ, विभाजन
3: जी,
4: जिस प्रकार 1984 के कत्लेआम को लोग नहीं भूलते हैं, भोपाल गैस कांड को नहीं भूलते
3: जी,
4: कोविड को लोग 200 साल तो नहीं भूलेंगे, 200 ईयर्स, क्योंकि वो जो चीजें थी, जैसे विभाजन की बात करें तो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के बॉर्डर्स थे, ज्यादा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ ज्यादा इफेक्टेड था, आगे नहीं था, आसाम में नहीं था,
3: सारे लोग इकट्ठे इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, यहाँ तो पूरे देश पे आया हुआ था,
4: सारे इफेक्टेड
3: जी, बिल्कुल। क्या छोटा क्या बड़ा,
4: कोई व्यक्ति बचा हो या तो उसका परिवार से, या उसके रिश्तेदारी से, या दोस्ती में से, या बिजनेस सर्कल में से, या मोहल्ले में से, कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ है। और मैं एक बात बताऊं आपको, लोगों ने तो टीवी पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, हमने लाइव देखा है। मैं वो 22 दिन घर नहीं गया, इस वजह से नहीं गया कि कहीं किसी की लाश झलने से ना रह जाए यार। लिटरली मैंने, मतलब बचपन में जैसे देखते थे राशन की लाइनें लगी हुई हैं, दूध की बोतलों की लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ शमशान के बाहर 50-50, 60-60 लोग लाइन लगा के लाश लेके खड़े हैं, ट्रॉली पे नंबर नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो हमने हालात देखे, किस प्रकार छोटा सा बच्चा 11-12 साल का अपने पिताजी की डेड बॉडी लेके आता है। एक दो पड़ोसी साथ आए थे हमारी एम्बुलेंस में, वो भाग गए और बच्चा अकेला रह जाता है। अब उस बच्चे को क्या पता लाश क्या होता है, संस्कार क्या होता है। उसका मैंने दाह संस्कार साथ खड़े होकर करवाया, वो बच्चा मेरे से चिपट के रो रहा है, मेरे पिताजी चले गए। अब उससे भी बुरा समय कब आया, जब 7 दिन के बाद वही बच्चा अपनी माँ की लाश लेके आया, और वो लाश के साथ गाड़ी के अंदर लेटा हुआ माँ के साथ चिपक जाता है। और उसको माँ से अलग करने में हमें बहुत समय लगता है, और माँ माँ चलाता है। और वो एक ही बात बोलता है कि मेरे पापा भी मर गए, मम्मी भी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा। मतलब वो जो शॉर्ट्स थे ना, मैं भूलता नहीं हूँ, बहुत खतरनाक शॉर्ट्स थे वो। मैंने अपने जीवन में वो जो कत्लेआम देखा है ना, दैट वाज रियली कत्लेआम था वो। मतलब वो प्रशासनिक लापरवाही से मरे हैं, छोटी छोटी बच्चियां पिता की लाश लेके आई अपने कार के अंदर, बड़े से बड़े लोग वहां रो रहे थे कि हमारा संस्कार करा दीजिए। लेकिन मैं देश की जनता को यही बोलूंगा कि आप खुद तैयार रहिए, आप किसी का भरोसा मत। बहुत कुछ देखा हमने, बहुत पास से देखा।
3: तो शंटी जी, जहां तक स्पिरिट को तैयार करने की बात है, कौन सी 3 बातों ने आपके स्पिरिट को तैयार किया है, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी वो 3 बातें?
4: एक तो हालात से लड़ना सीखिए। ऐसा नहीं कि भूखे तो भूखी सो जाइए
3: जी।
4: अब कोशिश कीजिए, आसमान से भी लोग तोड़ के ले आते हैं, पहली बात। हालात से लड़ना सीखिए, पहली बात। दूसरी बात, हिम्मत नहीं छोड़नी है। मैं जब डेथ बेड पे था, मेरा बीपी 35 था, 35, डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं आएंगे। फिर किसी ने कहा कि ये फलाना इंजेक्शन मंगा लीजिए, हम आके ये लगाएंगे, से बीपी बढ़ेगा आपका। मैंने अपने एक दोस्त थे, हमारे मेंबर थे, अजिंदर सिंह जी, बुलाया रात 2:30 बजे, वो ढूंढने जा रहे हैं, दुकानें सब बंद हैं, सुबह 5 बजे ढूंढ के लाए। फिर किसी डॉक्टर साहब को घर बुलाया, पकड़ के लाए जाके प्यार से, डॉक्टर रश्मि थी लेडीज, बहुत अच्छे थे, उन्होंने आके इंजेक्शन लगाया। मैं 12-14 घंटे बाद, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, मेरा बीपी 35 है, और मैं फोन पर बात करके ड्राइवर को कह रहा हूँ एम्बुलेंस ले जाओ, वहां ले जाओ, उसने बचाया मुझे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, किसी को भी ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत समर्थ हूँ, अपने अहंकार में ना रहे। ये पहले सोचे कि मैंने पड़ोसी को पहले बचाना है। और ये सिखाया कोरोना में लोगों को, देश ने, प्रवासी जा रहे थे, कोई चप्पले बांट रहा था, कोई रोटी दे रहा था, कोई पानी पिला रहा था। बुरा समय था ये देश के लिए, बहुत बुरा, विभाजन से ही बुरा था, सच्ची बोलू मैं आपको। इसलिए, लेकिन मैं इसके लिए तो सैल्यूट करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे हैंडल किया है इसको
3: जी।
4: तो बहुत बुरा समय था, और मैं तो सच बोलू, मैंने मेंबर अपने खोए, दोस्त खोए, मोहल्ले के लोग खोए, लेकिन इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया।
3: शंटी जी, आप हिम्मत की बात कर रहे हैं, और मैंने एक कहावत सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, जो हिम्मत करता है उसको ही खुदा मदद भी पहुंचाता है। तो आपने तो हिम्मत की, और आपने बहुत हिम्मत वाला काम करके भी दिखाया। आपने भी खुदा का मदद कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, कोई ऐसा खास किस्सा, कोई ऐसी घटना इस दौरान जब आप कोविड के टाइम पे मदद कर रहे थे, जो खुदा की मदद कहेंगे जिसे आप, जिसको आप याद करते तो आपको लगता है कि ये तो ना कोई इंसान कर सकता था, ना किसी के बस में थी, दिस इज ऑल बाय गॉड हिमसेल्फ। सो ऐसा कोई एक कहानी या किस्सा आप हमें सुनाइए।
4: जब शमशान घाट में लकड़ी खत्म हो गई, 40 डेड बॉडी बाहर थी अभी
3: जी,
4: उससे मेरी परीक्षा थी। मैंने किसी को भेजा, तुम गाजियाबाद से लाओ, यूपी से जाके, एक टेम्पो में वो ज्यादा नहीं 10-12 टन लकड़ी मिल गई कहीं से, अब वो लेके आ रहे थे तो टोल टैक्स वालों ने रोका। मैंने उनको, उन्होंने मुझे फोन पे कहा टोल टैक्स वाले गाड़ी नहीं आने दे रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात कराई उनसे, तो मैंने उनको कहा दो बात। मैंने कहा देखिए, आपके परिवार में से भी कोई जा सकता है, यहाँ बहुत भयंकर समय है, भीड़ लगी है, कुरला रहे हैं लोग, लाशों में से बदबू आ रही है, छोड़ दीजिए इसको। उनको पता नहीं लालच आ गया या पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रेशर था, उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी। मैं खुद गया और मुझे लिटरली उनके साथ झगड़ा करके वो लकड़ी लेके आया, लेकिन मुझे सब्र नहीं आया। मैंने कहा ये तो यार 25-30 बॉडी इससे हो जाएंगी, कल क्या करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था, एकदम दिमाग में आया कि सोशल मीडिया, मैंने लाइव किया है और लोगों को बोला हुआ है। मैं आज आपसे पहली बार अपील कर रहा हूँ, मुझे पता है और कहीं से अपील के मदद नहीं मिलने वाली है, लेकिन मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ लकड़ी शमशान घाट पे बिल्कुल नहीं है, ऐसा ना हो कि कल लाशें यहाँ पड़ी रह जाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। सुबह 4 बजे भाई साहब, कोई टेम्पू पे, कोई इनोवा गाड़ी में, कोई रिक्शे में, बहने भाई, इवन लोग अपने घर में जो चार पाई की टूटे हुए गोभी लकड़ी थी वो भी ले आए,
3: ब्यूटीफुल,
4: सैकड़ों टन लकड़ी इकट्ठी हो गई वहां। मैं अगर मैं उस दिन ये सोचता लकड़ी कहाँ से आएगी, मैं नहीं करा सकता, मैं हिम्मत छोड़ दूं, ना वो हिम्मत बड़ी काम आई। वो हिम्मत नहीं, 4200 संस्कार करा दिए हमारे। और मैं 2 दिन नहीं भूलता हूँ कि 21 अप्रैल को हमारे सूर्य नगर रामप्रस्था में ब्रह्म कुमारी आश्रम से बहन सुनीता जी थे, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत काम किया था, टीचर थे वो, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी उनको लाने के लिए। तो मुझे एक बिट्टू भाई हैं हमारे क्षेत्र में, वो भी बीके से जुड़े हुए हैं, उनका फोन आया कि शंटी वीर जी ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर अजय भाई जी ने भी बात करी, फिर हमने अपनी एम्बुलेंस भेजी डेड बॉडी, मैंने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार कराया। वो बड़ा खतरनाक समय था, वो भूल नहीं सकते हैं कि जो हालात बने, और ऐसे ऐसे हालात बने कि परिवार वाले लोग, एक मेरे दोस्त थे सुनील जी, उनका फोन आया कि माता जी का स्वर्गवास हो गया और हम भी कोविड में। मैं खुद गया, डेड बॉडी को सैनिटाइज किया, लेके आए, संस्कार किया। 2 दिन के बाद उनके पापा की भी डेथ हो गई, 1 हफ्ते के बाद उनके भाई की भी डेथ हो गई,
3: एक ही परिवार से
4: 3 लाशें मैं उठा के लेके आया। हम एक दिन में 40 से 50 लाशें घरों से उठाते थे जिनके घर में या तो कुछ था नहीं, था तो अकेले अकेले लोग। हम ऐसे अपनी गाड़ी लेके जाते थे, लाश उठाते थे, गाड़ी में रखते थे, और आगे जाते फिर रखते थे, फिर और आगे जाते थे, कोरियर कंपनी जाती, फिर लाके सबका दाह संस्कार कराना, शाम पड़ जाती थी। यहाँ तक कि मुझे एक फोन आया मीडिया से कि द्वारका में 5वीं मंजिल पे एक लाश पड़ी है और बहू ससुर के पास लाश के पास बैठी हुई है, उसका पति कैनेडा में है, शंटी जी कुछ करिए। मैं वहां गया, लाश को ऊपर से नीचे उतारा, सैनिटाइज किया, पैक करा, तो वो जो बहन जी थे वो थोड़ा सा रोने लगे। तो एक माता जी ने कहा कि बेटा अब क्यों रो रही है, अब तो ये खुद आ गए हैं लेने के लिए। तो वो बहन जी ने जो बात कही ना उसने मुझे झकझोर दिया, कहने लगी आंटी जी आंसू तो मेरे सूख चुके हैं 4 दिन में, सच बोलूंगा ये तो पता नहीं मेरे को अंदर से कोई श्रद्धा आ रही है क्या आ रही है कि जहां दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर 4 दिन से मैंने कोई ऐसा फोन नंबर छोड़ा नहीं या फोन ना किया उनकी संस्कार के लिए, लेकिन मुझे खुशी है कि जहां सरकार फेल होगी एक सरदार आके हमारा काम उसने मुझे गौरव दिया कि हमारी पगड़ी की लाज रखी, इतना मान सम्मान दिया। इसलिए वो समय बड़ा खतरनाक था जी, और मैं समझता हूँ शहीद भगत सिंह सेवा दल को सेवा का मौका मिला, ये ईश्वर ने दिया, ये भी ईश्वर शक्ति थी। उसमें वही बात करूंगा कि हमारी जो कम्युनिटी थी उसकी जो स्टाइल ऑफ द सेवा है वो बड़ा काम आया, जो बचपन से देख रहे थे।
3: जी जैसा कि आपने कहा और मैंने देखा भी है, हम सबने सुना है और देखा भी है, अनुभव भी किया है कि जो सिख कम्युनिटी है वो सेवा के लिए बहुत मशहूर है। कभी भी आप गुरुद्वारों में जाइए वहाँ लंगर लगा हुआ है, जहाँ पर कोई भी धर्म का कोई भी जाति का व्यक्ति आकर के बैठ करके एक ही प्रकार का भोजन करता है। कई लोग व्यस्त लोग जिनको आप कभी ऐसे देखेंगे नहीं कि या सोच भी नहीं सकते कि ये क्या सेवा करते होंगे, लेकिन आप ऐसे लोगों को देखेंगे गुरुद्वारे में, वो जूता निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं और हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा जो है वो तो एक सिख कम्युनिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ऐसे ही सेवा जो है कई दूसरे धर्म के या एनजीओस के लिए भी प्राइमरी है, उनके भी काम में हमें दिखता है। सेवा के लिए जब बात सेवा की आती है तो आपके हिसाब से कौन सी बातें मुख्य हैं? अगर मुझे सेवा करना है, चाहे मैं एक व्यक्ति हूँ या एक संगठन हूँ या एक धर्म हूँ या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है हम, तो सेवा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है?
4: निष्ठा।
3: निष्ठा,
4: निश्चय।
3: निश्चय,
4: बचपन से हम पढ़ते हैं देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहो न टरो न डरो अरसो जब जय लरो, निश्चय कर अपने जीत करो। तो वो शक्ति जो ईश्वर ने दी है उसको इस्तेमाल करके सेवा करके डट के निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय करना है हमने और होता है वो काम, आप शुरू करके देखिए।
3: सेवा के रास्ते में भी हमने देखा शंटी जी कि कई बार ऐसे संगठन एनजीओ संस्थाएं ऐसे होती हैं जो सेवा तो करती हैं लेकिन उनके सेवा में थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको कमर्शियलाइजेशन दिखता है, वो सेवा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉमर्स, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो झलकने लगता है, ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: मेरा जवाब ये, देखिए जी जिस युग में राम जी हुए तो रावण तभी हुए हैं, कृष्ण जी हुए तो कंस हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए तो औरंगजेब हुए। तो जब अच्छे लोग संस्थाएं चला रहे तो दूसरे भी तो आएंगे ना। अब जहां एक तरफ डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत करी, नर्सेज ने की, पुलिस ने की, सफाई कर्मचारियों ने की,
3: सबने अपना अपना पार्ट,
4: हॉस्पिटल ने उठा भी तो
3: जी
4: हॉस्पिटल ने दिखा दिया ना। अभी 2 हॉस्पिटल में छापा पड़ा है, एक नोएडा में और एक गुड़गांव में, अभी महीना भी नहीं हुआ। एक के पास से 42 करोड़ रुपए का सोना मिला है, 4 करोड़ कैश मिला है उसी हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल के अंदर से। सोचिए ना, ये भी तो लोग हैं, ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो देश द्रोही वाला।
3: लेकिन कई बार इस प्रकार की चीजों को देखते हुए जो लोग सच में सेवा करना चाहते हैं उनका मनोबल कम ना हो, वो अडिग रहें अपने पथ पर, तो ऐसे सेवाधारियों के लिए आपका क्या मैसेज है?
4: नहीं, वो ये समझ जाए इस कोरोना में जिनके पास करोड़ों रुपए घर में पड़ा था वो जान नहीं बचा सके, बस समझ लीजिए आप। ऐसे वो एनजीओ जो अरबों खरबों रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं
3: जी,
4: उनको तो प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री नहीं दिया, राष्ट्रपति जी ने बुलाया नहीं उनको, समझिए बात आप। मैं सैल्यूट करता हूँ राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने खुद फोन किया, हमने तो नॉमिनेशन भी नहीं किया था
3: जी।
4: तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग में आ रही हैं, आज हमारे देश में ये मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है, समझ लीजिए आप। ये हॉस्पिटल्स पे रेड होना, ये उन लोगों पे रेड होना जिन्होंने लैब के थ्रू 5 लाख वैक्सीनेशन नकली दिखा दी हरिद्वार में कुंभ के मेले में, सब जेल जा रहे हैं, अब नहीं बचेगा कोई भी। ये कह दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि इनको नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने जिन्होंने इस बुरे समय में देश का साथ नहीं दिया वो कभी दे भी नहीं सकते आगे। वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे ना
5: जी,
4: तो आज उनको जेल जाने दीजिए ना। जो लोग गलत काम कर रहे हैं एनजीओ वाले, सोच के चले कि वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, मानवता के साथ धोखा कर रहे हैं। आपने धंधा करना तो बिजनेस करिए ना।
3: इसका मतलब चाहे आप एक अकेले व्यक्ति हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, संस्था है, कंपनी है, ये बात तो तय हो गई कि लालच किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, लालच सबके लिए बुरी बला ही है।
4: की बात है,
3: कभी भी नहीं।
4: लालच करिए, जहाँ बिजनेस करिए लालच करिए।
3: लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लक्ष्य रखिए, ऊंचा लक्ष्य रखिए, क्योंकि ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन लक्ष्य ऊंचा हो लेकिन लोभ नहीं हो, क्योंकि जहां लोभ आया, जहां लालच आई, वहां तो उसका अंजाम बुरा होना ही है। तो इसलिए लक्ष्य ऊंचा रखिए लेकिन उसमें लोभ नहीं मिक्स होने दीजिए।
4: बिल्कुल ठीक बात है। देखो ना, हर फील्ड में अच्छे लोग भी थे, जैसे कोविड आया मुझे अक्षय कुमार जी का फोन आया फिल्म इंडस्ट्री से
3: जी,
4: किशन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा बताइए। मैंने कहा जी एक एम्बुलेंस एडवांस वाली चाहिए, 2 भेज दी उन्होंने। बताइए, छोटी बात है वो। अच्छे लोग भी थे, जहाँ बुरे थे वहाँ अच्छे भी तैयार खड़े थे उस समय लोगों ने अपने।
3: अच्छे लोग बहुत अच्छा काम करे, इसके लिए क्या जरूरी है?
4: बुरे की तरफ देखे ही मत।
5: बिल्कुल,
4: बुरे की तरफ देखे ही मत, अपने काम पे डटे रहे, क्योंकि अब बुरे की तरफ देखे तो ऐसा ना उनका मन विचलित हो जाएगा। बल्कि बुरे वाला जब देखेगा कि यार अच्छे वाला बहुत आगे निकल गया,
5: तो चलो मैं भी थोड़ा अच्छा कर लूं।
4: समझ रहे बात? जैसे हम शमशान घाट की सेवा करते थे, एम्बुलेंस डेड बॉडी की, हमें देखा देखिए 10 संस्थाएं और तैयार हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है यार अवेयरनेस तो आई। हम सारा पैसा धार्मिक स्थलों पे लगाया जा रहे हैं
5: जी,
4: जहाँ जरूरत थी देश के लिए वक्त आने पर। लोगों को 50,000 रुपए देके एम्बुलेंस नहीं मिली उस समय, कोई स्थल नहीं काम आया, कोई काम आया। लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों ने लंगर लगाए दिन रात, ऑक्सीजन भी बांटी दिन रात, दवाइयां भी बांटी, और यहाँ तक कि जो बहुत परिवार कमजोर थे, हॉस्पिटलों का पैसा नहीं दे सकते, उनको पैसा भी दिया। और मुझे जहां जहां पता लगा कि लाश नहीं दे रहे या पेशेंट को नहीं छोड़ रहे, मैंने 25-25 लाख रुपए छोड़वाया एक एक हॉस्पिटल से जाकर, कानूनन रूप से, क्योंकि राइट, एक ऐसा राइट टू पेशेंट आया था 2017 में, सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है, और ये चार्टर भी आया था, उसकी मेरा कॉपी है, मैं लेके जाता था कि आप छोड़ रहे हैं, आपको मैं एफ आई आर करवाऊँ अगेंस्ट, तो समझ जाता था इनको नॉलेज है, छोड़ देते थे। बहुत लोगों को छुड़ाया। तो मैं तमाम देश की जो एनजीओज है, चाहे वो धार्मिक है चाहे सामाजिक है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप वही काम करिए जिससे देश का भला हो, मानवता का भला हो। अपना भला तो आपको ईश्वर कर ही देगा ना, कोई टेंशन नहीं।
5: सर्व का भला जहाँ कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें सर्व में मैं खुद तो आ ही जाता हूँ।
4: हमारे गुरु ग्रंथ साहिब लिखे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे
5: सर्व का भला। बिल्कुल जी,
4: हमेशा सबका भला मांगना चाहिए, और अरदास भी हमारे यहाँ तो यही होती है
5: जी,
4: अपने लिए नहीं होती है, सर्वत के भले के लिए होती है। और इस कोविड ने तो जीना सिखा दिया। वो एक वक्त फिल्म आई थी बलराज सानी जी की, उसमें गाना था ना कि वक्त की हर शय गुलाम, उसका एक अंतरा है, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। मिजाज ही तो बदला। करोड़पति घर के नीचे बैठा था, दरवाजे के नीचे थाली आ रही है जैसे जानवर में दी जाती है, दिखा दी ना औकात
5: में।
4: साइकिल वाला भी घर बैठा था, 1 करोड़ की कार वाला भी घर बैठा था। तो अभी भी हमको अभी भी कोई अकल लेने की जरूरत है क्या? अगर भी हम अभी भी भूल जाते हैं तो फिर हम इंसान नहीं है।
3: जीवन का मर्म सीखने में ही है। और शंडी जी, आपसे तो कितना सीखा जा सकता है, आपसे बात करने बैठे तो घड़ी के कांटे कहाँ जाते पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी समय की सीमा को देखते हुए मैं आपके साथ अभी इस एपिसोड को एक रैपिड फायर राउंड में लेके जाना चाहूंगा, जिसमें मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आपसे छोटे छोटे उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में। भारत क्या है?
4: भारत धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है।
5: वेरी ब्यूटीफुल। सेवा क्या है?
4: सेवा एक जज्बा है जो यहाँ से निकलता है,
5: दिल से निकलता है। शांति क्या है?
4: शांति पाने से आएगी, देने से नहीं आएगी। जिस दिन हमने सोच लिया कि मेरे जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, आगे शांति।
5: बिल्कुल,
4: मर के तो शांति मिलनी है आपको, तो पहले शांत हो जाओ भाई, पहले अपने आप को शांत करो, ये शांति
5: जी। खुशी क्या है?
4: खुशी का एहसास कीजिए ना। जब मैं मरने वाला था कोविड में, तो मैं लोगों की सेवा क्यों कर रहा था? खुशी के लिए। आज भी मैं रात के 3 बजे फोन उठाता हूँ, मैं अपने ड्राइवर्स को भी कहता हूँ कि आप 10 बॉडी रोज उठाते हैं ना, लेकिन जिसके घर में डेथ हुई है वो एक हुई है 20 साल के अंदर। तो भाई वो खुशी हमने लेनी है सेवा करके, खुशी पाई ली जाती है, देता नहीं आप, ठीक है, आप खुशी रहना सीखिए।
5: इट्स एन आर्ट। जितेंद्र सिंह शंटी कौन है?
4: नगर सेवक।
5: बहुत ब्यूटीफुल। और आपका अगर कोई एक ऐसा मैसेज हो जो आप देना चाहते हो?
4: देखिए, जिंदगी में ना किसी काम को छोटा मत समझो। मैंने जब पहली बार एम्बुलेंस का और शवान की सेवा शुरू की तो मेरी माता जी ने एक बात कही थी कि बेटा या तो शुरू मत करना, अब शुरू किया ना एक तो इसे बंद मत करना अभी, और एक किसी को ना नहीं करनी आप, दिन हो चाहे रात हो, मना नहीं करना किसी को। और तीसरा उन्होंने कहा था कि अपने अंदर गुमान मत लेके आना, जिस दिन गुमान लेके आओगे कि मैं कर रहा हूं, खत्म हो जाओगे। एक तो मैं लोगों को कहूंगा कि किसी काम को छोटा मत समझो, छोटे से छोटा काम भी आपको कहीं पहुंचा सकता है। अगर 1995 से लाशों की सेवा करते करते आज जितेंद्र सिंह शंटी, शहीद भगत सिंह सेवा दल, राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं
5: जी।
4: पहली बात। दूसरी बात, प्रशासन पर डिपेंड मत रहिए, अपने आप को बुलंद कीजिए और एहसास कीजिए कि हमारे साथ भी हो सकता है, उन सेवाओं के लिए तत्पर रहिए, मेन चीज ये। और अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, बड़े भाई की इज्जत कीजिए, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, सबसे बड़ी बात। और अंत में यही कहूंगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
5: बहुत खूब शंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके जीवन के हर पहलू से, आपके एक एक वाक्य से अंदर में इतना बल अनुभव होता है कि मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों को आपने तो आज बहुत बहुत धन्यवाद बना दिया है। लेकिन स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपने जीवन के इन स्वर्णिम क्षणों को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम सुन रहे थे आज भ्राता जितेंद्र सिंह शंटी जी को, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, जिन्होंने कोरोना काल में हजारों लाशों का अंतिम संस्कार किया है। एक ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे के नज़दीक आते आना ही नहीं चाह रहे थे या आ नहीं पा रहे थे, इन्होंने कईयों के जीवन में वो रोशनी लाई जो रोशनी हम और आप शायद नहीं ला पा रहे थे। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व से मिलते हुए आज मैं और आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। यशस्वी भारत का ये यशस्वी पुत्र जितेंद्र सिंह शंटी एक प्रेरणा है मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, कि देश और मैं अलग नहीं है, मुझसे ही मेरा देश है। आइए अपने जीवन से, अपने हर रोज के जीवन शैली से अपने देश को यशस्वी बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी विचार के साथ मैं आरजे शांतनु आपसे अलविदा कहता हूँ। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर यशस्वी भारत को यशस्वी बनाने वाले एक और व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के चौथे अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं प्रीत माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण का प्रेम इतना सुंदर और गहन है कि हर हृदय की भक्ति और अनुराग भर उठता है। गोपियों के प्रति उनका स्नेह, मित्रों के प्रति उनका अपनापन और भक्तों के प्रति उनका असीम करुणा, यही है प्रीत माधुरी का सार। कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप केवल शक्ति या ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तो वह केवल दो आत्माओं का संगम नहीं होता बल्कि यह ब्रह्मांडीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। हर भक्त जब श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में अनुभव करता है तो उसका जीवन भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस अध्याय में डूब जाए उस प्रीत माधुरी में जो हमें सिखाती है कि प्रेम ही ईश्वर का सबसे मधुर उपहार है। तो दोस्तों सुनते हैं प्रीत माधुरी कलाए का एक सुंदर गीत।

तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था, वह प्रेम वृंदावन की हर गोपी, हर जीव जंतु और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जन स्वार्थ था, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्पण था। इसी कारण श्री कृष्ण को कृत माधुरी की कला का प्रतीक माना जाता है। यह कला हमें सिखाती है कि ईश्वरीय प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समस्त सृष्टि को आलिंगन करता है। हर हृदय में, हर जीव में, हर कण में वही प्रेम व्याप्त है। तो दोस्तों, आइए इस अध्याय में हम अनुभव करें उस प्रीत माधुरी को, जो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही ईश्वर का सबसे सुंदर मधुर उपहार।

तो दोस्तों, भागवत कथा में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण रासलीला करते थे तो हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ है। ये अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। हर भक्त को लगता है कि वह ईश्वर का सबसे प्रिय है और यही अनुभूति भक्ति को अमर बना देती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही है प्रीत माधुरी, वह कला जो हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ, सर्वव्यापी और अनंत है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गूंजती बांसुरी सब मिलकर यह संदेश देते हैं कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा के सीमित नहीं था, वह तो हर जीव, हर प्राणी और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जनस्वार्थ या जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्पण।

नमस्कार श्रोताओं, प्रीत माधुरी हमें सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ है आत्मा पूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देते हैं, तब हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। कृष्ण का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। यह प्रेम हमें बताता है कि भक्ति का मार्ग त्याग और समर्पण से ही प्रशस्त होता है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गुंजती बांसुरी तब यही दर्शाते हैं कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है आत्मा का परमात्मा में विलय। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तभी सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण का एक प्यारा सा सुंदर गीत।

तो दोस्तों श्रीमद् भागवत में कहा गया है राधव माधव वंदे राधा माधव माधवम। इस श्लोक का भावार्थ है कि राधा और माधव का प्रेम अद्वितीय है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। जब भक्त अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो उसका जीवन प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण यह दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि भक्ति का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम अनंत और हर हृदय को अलौकिक करता है। तो दोस्तों सुनते हैं प्रीत माधुरी का अगला एक सुंदर गीत।

सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया फिरज का पाका, संभाल तेरी गगरी रे। ओ

तो सोचा हो यह चीज चौथी कला प्रीत माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला पड़ाव होगा गीता माधुरी यानी श्री कृष्ण की मधुरता। वह गीत जिनमें भक्ति का रस है, प्रेम का संदेश है और जीवन को आनंद से भर देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य साधन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, सुनते रहो और सुनाते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स की इन दिनों हम बात कर रहे हैं। देख रहे थे कि किस तरह से खुशी कभी भी छूमंतर हो जाती थी, लेकिन अब जब अपने पर काम करना शुरू किया और बहुत सारे एस्पेक्ट समझे, अब समझ में आया कि वो खुशी जो मेरे अपने ही अंदर है, ना मुझे उसे कहीं खोजना है, ना कहीं तलाशना है, ना बाहर ढूंढना है, ना अंदर ढूंढना है, बल्कि वो है। वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं हमेशा रह सकती हूँ। हैप्पीनेस, पीस, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में रहना, इस सिचुएशन में, इस स्टेबिलिटी में रहना कैसे संभव है, ये हमने समझा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा राजयोग का, मेडिटेशन का। आज अपनी पहचान के बाद कुछ और बातें जानते हैं कि किस तरह से उस पहचान को लगातार अपने साथ, उस याद को लगातार अपने साथ कायम रख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, इस बात को हम हमेशा याद रख पाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ ये बात पता चले कि मैं कौन हूँ, वो चैतन्य शक्ति जो कि मास्टर हूँ इस पूरे शरीर की, अमेजिंग ना? इट एक्चुअली जस्ट गिव्स मी अ वेरी डिफरेंट फील अबाउट माई सेल्फ
1: एंड दिस इज पावर। यू नो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे हमारे यूथ बच्चे बार बार ये कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये पता चलेगा सेल्फ कौन है। सेल्फ का आंसर मिल गया तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप बिल्डअप हो जाता है। इसलिए जहाँ भी सेल्फ वर्ड आता तो सबसे पहले मैं कौन हूँ वो पहचानना, और ये जब मैं की पहचान मिली तो मैं से रिश्ता भी जुड़ना लग गया। यू नो टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई इट्स मेडिटेशन इज फर्स्ट रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। अपना ध्यान रखना, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट, आई एम अ प्योर बींग, पीसफुल बींग, सी हाउ इट फील्स। और ये एक दिन में, दो दिन में, दस दिन में होने वाली चीज नहीं है, दिस टेक्स टाइम। जब हम सेंटर पर आते तो हमें रोज वो प्रोसेस होता याद दिलाने का,
0: जो आपने कहा था कि याददाश्त कहीं गुमी हुई है।
1: अब बिना यहाँ आए और बिना रोज स्टडी किए मुझे दो चार दिन में वो बात भूल जाती है, क्योंकि फिर वही एनवायरनमेंट में जहाँ सब लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, मेरा अपना संस्कार तो है ही बहुत पक्का, तो अगेन आई गो इनटू दैट। लेकिन रोज आना सेंटर पे वो याद दिलाने का प्रोसेस बनता है, फिर वो याद धीरे धीरे नेचुरल होती जाती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एवरी डे। इसीलिए रोज हम जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बातें रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं, उसका फोकस ये होता है रोज मैं कौन वो याद रखना और मेरी क्वालिटीज क्या। और फिर जब ये याद आ जाता तो मैं किसका हूँ, इज ही हुम आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। क्योंकि इट्स लाइक मैं बैटरी हूँ लेकिन मेरी पावर आज थोड़ी कम हो चुकी है, देन आई कनेक्ट टू द पावर हाउस। देखो जो हमने पहले मेडिटेशंस की बात की, या तो वो ब्रीदिंग टेक्निक है, मंत्र जाप है, थॉटलेसनेस है सारा, या जो कुछ चक्र पर भी फोकस करते, सब लोग किस पर फोकस कर रहे हैं, मैं खुद पर फोकस कर रही हूँ। तो इट इज़ लाइक अ डिस्चार्ज्ड बैटरी ट्राइंग टू चार्ज इट्सेल्फ, जो कि वो अचीव करते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा और रिजल्ट उतनी नहीं। तो फिर इसलिए कहते हैं हमें एक घंटा रोज करना, दो घंटा रोज करना, क्योंकि डिस्चार्ज स्थिति में खुद को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक डिस्चार्ज्ड बैटरी अगर पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए तो बैटरी डजंट हैव टू डू मच, सिर्फ बैटरी को जोड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कनेक्शन
0: स्ट्रांग हो,
1: ठीक है। लेकिन लगे कि जुड़ा हुआ है लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो सालों साल भी ऐसे रखेंगे तो वो चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन कनेक्शन राइट है, चार्जिंग होनी ही होनी है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए अपनी पहचान के बाद हम उनकी पहचान लेते कि परमात्मा कौन है, क्योंकि आज परमात्मा के बारे में भी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इतने सारे डाउट्स हैं कि कई बार फिर लगता है कि पता नहीं
0: है भी कि नहीं है,
1: है भी कि नहीं। तो जिनके एग्जिस्टेंस पर ही डाउट है तो उनके साथ कनेक्शन जुड़ना बहुत मुश्किल है। अब जब हमने अपने को बॉडी समझा, फिजिकल मैटर समझा, तब हमने समझा मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल ही होगा। यू नो ये एक गलती से फिर अगली गलती हुई कि मैं फिजिकल तो मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल। तब हमने परमात्मा को कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब समझ में आया कि आई एम जस्ट एनर्जी, प्योर कॉन्शियंट बींग, तो मेरा पिता कौन, तो देन ही इज ऑल्सो अनदर कॉन्शियंट बींग। और इसलिए हम कहते हैं आई एम अ सोल, child of the supreme soul, energy, and he is the super energy. Ab super kis form mein? Ki I am a peaceful soul, so he is the ocean of that peace. Na ke ki main choti si atma hu aur wo badi atma hai.
0: Aur maine usme sama jana hai.
1: Yeah.
0: You know, again, this is a major belief system which yes. we actually need to see.
1: Yes.
0: Ki main ultimately usi mein sama jaungi.
1: ये बहुत सारी हैं, पर वो हमें धीरे धीरे और क्लैरिफिकेशन इस पर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन शायद उन पर कभी
0: रिफ्लेक्शन
1: नहीं किया. यू नो, सुन लिया और तुरंत ऐसे स्वीकार किया, और जो भी हमने सुना उसके पीछे एक एसेंस था, उसके पीछे एक मीनिंग था, लेकिन मीनिंग नहीं पकड़ा. जैसे मैं परमात्मा में समा जाऊँ, एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि मैं इतना याद करूँ उनको, इतने उनके वो प्यार में लीन हो जाऊं कि जैसे कि मैं उनकी याद में समा जाऊं. लेकिन हमने हर चीज फिजिकल देखनी थी ना, तो मैं उनमें समा जाऊं मतलब क्या कि मैं उनमें समा जाऊं,
0: फिजिकली मैं उनमें समर्ज हो जाऊं.
1: यस, बिकॉज एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस. जैसे ही आप सोल कॉन्शियस हैं और आप ये महावाक्य सुनेंगे कि आप मैं परमात्मा में समा जाऊं, तो विल बी वेरी क्लियर कि समा जाना मतलब प्यार में समा जाना, याद में समा जाना. लेकिन बॉडी कॉन्शियस है तो मैं समा जाऊं मतलब मेरी एंटिटी ही. आप देखो, अगर मैं समा जाऊं, वी आर सेइंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जहां मैं किसी चीज के अंदर समा गई तो मेरी एंटिटी, मेरी एग्जिस्टेंस फिनिश हो गई. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो इसको जो कुछ भी आज दिन तक पढ़ा है सब में मीनिंग है, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर उसके मीनिंग को समझना है. जैसे हम किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं तो कहते हैं ये तो उन्हीं में खोए हुए हैं. नहीं कहते. जैसे इफ आई सी यू कि आप किसी की याद में बैठे, मैंने कहा ये ना उन्हीं के उसमें खोई हुई है, लेकिन आप थोड़ी उसके अंदर समा गए.
0: इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं, हाँ, कि प्रेम की भी पराकाष्ठा यही कही जाती है कि खुद को हम समर्पित कर दें, खुद को भूल जाएं और उसको. हाँ,
1: लेकिन विद व्हाट? विद थॉट्स एंड फीलिंग्स ना, नॉट के एंटिटी ही फिनिश हो जाए. तो इसलिए परमात्मा के बारे में हमने जितना भी आज दिन तक पढ़ा था उसके पीछे एक एसेंस है, लेकिन शायद उसको हमने उतना क्लैरिटी से नहीं स्टडी किया. तो अगली बार जो भी सुने या पढ़े उसको थोड़ा गहराई से मनन भी करें. तो राजयोग में परमात्मा ही डायरेक्ट आकर जब हमें खुद अपना परिचय देते हैं, क्योंकि आज दिन तक हमने सुना कि एक वो समय आएगा व्हेन ही विल हैव टू कम हिमसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. इनफ वी हैड दैट everyone else has introduced him. So when everyone else introduced him, they were right, but yet they were little different. And kyun wo thode thode alag the? Kyunki wo har ek apne perspective se, apne rishte ke anubhav se suna rahe the. Lekin uska direct aur accurate parichay kaun dega? Jab Parmatma khud aakar wo denge. And har scripture mein, chahe wo Srimad Bhagavad Gita hai, Bible, Quran, every scripture we have read and heard, कि एक ऐसा समय आएगा when he himself will have to come. And वो समय होगा जब unrighteousness, irreligiousness is at its peak. तो we need to ask ourselves, क्या ये वो समय हो सकता है?
0: धर्म की पुनर्स्थापना की जो बात की,
1: yes, क्योंकि जब इतनी ग्लानी हो चुकी है, धर्म की ग्लानी पर उस सृष्टि पर आते हैं, तो शायद ये वो ही समय है. आई नीड टू आस्क myself. तो परमात्मा इस समय आकर अपना परिचय देते कि जैसे मैं आत्मा हूँ तो वो भी आत्मा है, लेकिन परम आत्मा है, क्योंकि वो उन क्वालिटीज में परम है, सुप्रीम है. वो परम धाम का रहने वाला है. परम धाम अर्थात इस सृष्टि से पार, स्पेस, यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट वी कैन सी एंड रीच, उसके बियॉन्ड जो हम आत्माओं का रहने का स्थान है, जिसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं. आज भी देखो, जब हम दर्द में होते हैं, दुखी होते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो नज़र कहाँ जाती है? ऊपर. क्लैरिटी नहीं है क्या है, लेकिन कुछ तो है, वो स्मृति है, तो उधर ध्यान जाता. तो परमात्मा हम सबको आकर पहले अपना परिचय देते कि मैं कौन आत्मा, फिर अपना परिचय देते कि परमात्मा कौन, घर का परिचय देते, परम धाम का मैं रहवासी हूँ. उससे और भी बहुत सारी फिर क्लैरिटी आती, क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें? यू नो, हम तो इतना कन्फ्यूजन है. हमने कहा कि परमात्मा तो हर जगह है, हर एक के अंदर है. देखो, इतना जब कन्फ्यूजन हो जाएगा तो परमात्मा को याद करना बहुत डिफिकल्ट है. सो परमात्मा निराकार, इनकॉर्पोरियल, पॉइंट ऑफ लाइट, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आकर अपना नाम बताया कि उनका नाम है शिव। और जब शिव कहते, इट मीन्स पॉइंट, एंड शिव मीन्स पीस, एंड ही इज़ आवर फादर, सो हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा आकर खुद अपना परिचय देते, वो शांति के सागर हैं, प्योरिटी के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। और हम में और उनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम सब आत्माएं शरीर लेते हैं और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आते तो हमारी बैटरी डिप्लीट हो जाती, लेकिन वो परम आत्मा इस सृष्टि चक्र पर, इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते, तो उनकी जो पावर है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इसीलिए वो ही एक हैं जो हमें इस चक्र से फिर
0: बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनफैक्ट जो चक्र में नहीं होगा वही उसे ही सोल्यूशन भी पता होगा।
1: एब्सोल्युटली,
0: वी आर प्लेइंग अ गेम आल्सो,
1: जो नहीं है उस गेम में
0: उसको सब कुछ पता है कि कैसे है।
1: तो वो हमें चक्र का, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान समझाते और हमें इस साइकिल से फिर कैसे हमने अपना पाठ बजाना है ये भी सिखाते। तो परमात्मा को जब हम पहचान लेते कि वो कौन है और उनका रोल क्या है, आज दिन तक परमात्मा के रोल पर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। जब भी तकलीफ में है तो कहते भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर।
0: अच्छा, इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी से कि तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया। यू नो, कितनी बार हम अपने मतलब इस तरह से करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
1: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिचुएशंस है मेरी, परमात्मा का रोल ये नहीं है कि आकर मेरी सिचुएशन को ठीक कर दे, क्योंकि मेरे सामने जो सिचुएशंस आई हैं वो तो मेरे ही एक्शंस का रिजल्ट है, जिसको हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट। लेकिन परमात्मा का रोल क्या है कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करूं, पावर हाउस से वो पावर लूं, अपने अंदर वो शक्ति भरो और उस शक्ति से अपनी परिस्थिति को फेस करो। तो जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े तो इसलिए नहीं कि हे भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दे, लेकिन परमात्मा से वो शक्ति ले, वो भी मांगना नहीं कि हे भगवान मुझे शांति दे दे। पिता है तो पिता से बच्चे को मांगना थोड़ी पड़ता है, जो पिता का है वो बच्चे का है। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वी विल नॉट से ओ गॉड गिव मी पीस, ओ गॉड गिव मी लव, नो, आई द सोल आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ पीस। ये थॉट क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली
0: पावर विल फील।
1: मैं कौन हूँ ये आंसर चाहिए था, तो मैं कौन हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ पीस एंड रेजिडेंट ऑफ लैंड ऑफ पीस। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर का बच्चा, शांति धाम का रहवासी। अब गुस्सा, गुस्सा कहाँ से, क्योंकि हमारी सारा दिन जो पर्सनालिटी है वो किस बेसिस पर है, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है ना। यू नो, कोई बहुत रोल,
0: बहुत बार हमारा बिहेवियर होता है, यस, यू नो,
1: आप कौन है, यू नो, जब कोई गलती भी हो जाए,
0: yes. कितनी बार हम बोलते हैं आपको पता है कि मैं किसका बेटा हूँ।
1: और पेरेंट्स भी जैसे बच्चों को कहते ऐसे नहीं करना, आपको पता है आप किस खानदान के हो, आप किसके बेटे हो, तो आप किसके बच्चे हो, ये जब स्मृति में आएगा तो पर्सनालिटी अपने आप चेंज हो जाती। तो आज से ये स्मृति में रखना है, मैं कौन हूँ, आई एम अ प्योर सोल एंड चाइल्ड ऑफ दैट ओशन ऑफ प्योरिटी, चाइल्ड ऑफ दैट सुप्रीम बीइंग। सारी दुनिया उनको याद करती है, क्यों, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। मैं जो अपवित्र बन चुकी हूँ, डिप्लीट हो चुकी हूँ ना, आज दिन तक हम कहते आए कि पतित को पावन बनाने वाला, समझ में नहीं आया लेकिन कि पतित को पावन बनाना मतलब क्या, कि मैं आत्मा जो डिस्चार्ज हो चुकी हूँ, इम्प्योरिटीज जो मेरे अंदर आ चुके हैं, उस पावर हाउस से कनेक्ट होने से वो प्योरिटी

0: अभी बैठे बैठे दर्द एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो यहाँ नहीं है, लेकिन सिर्फ याद, इसका मतलब याद के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस अनुभव को अभी क्रिएट करती, और अनुभव क्रिएट हुआ मतलब आपका संस्कार बनना शुरू हुआ। अभी आपने प्यार का अनुभव किया, आपका प्यार का संस्कार क्रिएट हुआ, आपने दर्द का अनुभव किया, आपने दर्द का संस्कार क्रिएट किया, अब आप पवित्रता के सागर को याद करते हैं तो आपका संस्कार कौन सा क्रिएट होगा? प्योरिटी का। आप शांति के सागर को याद करते हैं, संस्कार क्रिएट हुआ शांति का। दिस इज मेडिटेशन, इट्स वेरी सिंपल,
1: बट वी आर नॉट एबल टू सस्टेन इट, यू नो, लाइक ये क्यों नहीं हो पाता? आई जस्ट, यू नो, अब मैंने एकदम से सडनली आपसे बात करते करते ये किया, कोशिश की, तो बच्चे को याद करना है तो वो एकदम से आ जाती है विजन, या जिसने मुझे थोड़ी पेन दी हो उसकी विजन भी एकदम से आके आप कर सकते हैं। जब आपने कहा कि हम शांति के उस सागर को जिसको हम अभी तक ढूंढ रहे थे, हमारा पिता आज पहचान मिले, उसको याद करने की कोशिश करो, इवन इफ परमधाम की भी बात करते हैं, वो सस्टेन नहीं होता,
0: वो ट्रांजिएंट हो जाता है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। अभी सोल कॉन्शियसनेस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता जाएगा। सी, इट्स अ टू वे थिंग, एक है कि ये कनेक्शन तब स्ट्रांग बनता जाएगा जब हम सोल कॉन्शियस है, लेकिन दूसरा है कनेक्शन जोड़ते जाएंगे तो सोल कॉन्शियस होना इजी होता जाएगा। सो वी स्टार्ट डूइंग बोथ द थिंग्स, कि सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें सारा दिन में, और समय निकालकर उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन,
1: और इसके साथ जो अटैचमेंट है उसे छोड़ते जाएंगे ना।
0: एक्चुअली छोड़ना नहीं पड़ेगा,
1: वो अपने आप हो जाएगा। यस,
0: अपने आप। देखो, मुझे ये नहीं याद करना है आई एम नॉट द बॉडी, ये नहीं याद रखना है। हाँ, ये याद रखना है कि आई एम अ प्योर सोल। तो फिर ऑटोमेटिकली, अब डिटैचमेंट की भी जो हमने बात की, तो डिटैचमेंट क्या था? कुछ छोड़ नहीं देना है, लेकिन ये याद रखना है कि ये मैं नहीं हूँ। अटैचमेंट क्या होता है? जब हम किसी चीज के साथ इतना जुड़ जाते कि उसी में मेरा अस्तित्व चला जाता, एंड मेरी अपनी आइडेंटिटी खत्म। अब मैं आत्मा हूँ, दिस इज डिटैचमेंट। ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का रोल है, ये रिस्पॉन्स ना, दिस इज डिटैचमेंट। अब ये स्थिति में रहकर अगर यहाँ कोई हर्ट भी होता, जब मैं माँ हूँ, सी, तो अगर बच्चा हर्ट होगा तो माँ हर्ट होगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ, दिस इज डिटैचमेंट। अब बच्चा अगर हर्ट होगा तो मैं आत्मा पावरफुल हूँ, मैं हर्ट नहीं होंगी, और क्योंकि मैं नहीं होंगी
1: बच्चे को ऊपर लेकर जा सकते
0: हैं। इसलिए डिटैचमेंट फोर्सफुली करने जैसी चीज नहीं है। अगर यू नो, कई बार जबरदस्ती
1: खींचने की, हाँ, एक्चुअली यू कैन विजुलाइज आल्सो कि जब ऐसे है तो उसको ऐसे खींचने की जरूरत नहीं,
0: वो डिटैचमेंट नहीं होगा, वो इनसेंसिटिविटी हो जाती है, वो जबरदस्ती का विड्रॉवल हो जाता है, वो नहीं है। डिटैचमेंट मीन्स सोल कॉन्शियसनेस। हम सोल कॉन्शियस होते जाए, हम ईगो जो हमारा है वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि ईगो क्या है? अटैचमेंट टू ऑल दीज इमेजेस। अब सोल कॉन्शियस इज ऑपोजिट ऑफ ईगो, यू नो, सेल्फ एस्टीम, ऑपोजिट ऑफ ईगो। तो जितना सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे, ईगो खत्म होगा। ईगो खत्म हुआ तो सारे वाइसेस वो सब अपने आप खत्म होते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: सिस्टर शिवानी, एक मैं यहाँ बात पूछना चाहूंगी कि जब आपने कहा कि अटैचमेंट किसी भी पर्टिकुलर चीज से ना करके, तो अटैचमेंट कॉन्शियसनेस में रहते हुए अगर मैं सुप्रीम के साथ अटैचमेंट करती हूँ, वही वाली अटैचमेंट जिसकी मैं आदि हूँ, सो इज दैट आल्सो राइट?
0: या बिकॉज इन दैट देयर विल बी नो पेन। सी, अटैचमेंट वर्ड तब आ रहा था जहाँ हमने पहले भी देखा कि अटैचमेंट अगर किसी के साथ है तो प्यार है लेकिन हर्ट भी है, यू नो, क्योंकि उस आइडेंटिटी अपनी खो दी। लेकिन जब परमात्मा के साथ जो रिश्ता जुड़ता उसमें प्यार जुड़ता है। अटैचमेंट वर्ड हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ते में या कोई भी इंटरेक्शन में आपको हर्ट की अनुभूति नहीं होने
1: वाली। मैं अपनी आइडेंटिटी उसमें भी खोता हूँ?
0: मैं खोऊंगी नहीं, क्योंकि अटैचमेंट नहीं होने वाली है। सी, अटैचमेंट जब हो जाती है, वेयर यू लूज योर आइडेंटिटी इन टू समथिंग, तब आपको हर्ट होने, सी, एक्सपेक्टेशंस होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तब हर्ट होगा। लेकिन परमात्मा के साथ रिश्ते में ना एक्सपेक्टेशंस जो आप रखेंगे, बट प्रोवाइडेड यू कीप द राइट अंडरस्टैंडिंग कि परमात्मा का रोल क्या है। हम ये कहें कि परमात्मा मुझे नौकरी दे दे, परमात्मा मेरे बिजनेस में प्रॉफिट करा दे, नो, विद नॉलेज कि परमात्मा का रोल है मुझे एम्पावर करना, फिर मेरा रोल है उस पावर के साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स को हैंडल करना।
1: यस, यू नो, एंड कहीं ना कहीं मुझे विजन, मेरी विजन को क्लियर करते जाना, विजडम लेकर मैं को आगे बढ़ना है,
0: एंड आई विल बिकम वेरी क्लीन हियर, क्योंकि चार्जिंग होती जा रही है। फिर जो हमने बात की कि वैल्यूज पर चलने की ताकत चाहिए, आज वैल्यूज पता है।

0: लेकिन चलने की ताकत नहीं है, क्यों? पावर नहीं है, लेकिन परमात्मा से वो कनेक्शन जुड़ा, आत्मा शक्तिशाली बनी, आत्मा शक्तिशाली बनी, उसको किसी बात का डर नहीं लगता, डर नहीं लगता तो वैल्यूज पे चलना
1: आसान हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, बिकॉज दैट्स द राइट वे वी नीड टू डू, यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट इट, हम हमेशा चाहते थे ऐसे करना, लेकिन अब वो संभव हो पा रहा है। तो सचिवानी, हमने राजयोग की बात की, हमने इस पूरी श्रृंखला में खुशी की बात की है, जो कि हम हर बार कई बार सोचते भी हैं, लोग बोलते हैं कि जन्म से अधिकार है हमारा, लेकिन डेफिनेटली
0: जन्म से अधिकार है, क्योंकि हम आनंद के सागर के बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट ओशन ऑफ ब्लिस, तो फिर जिसके बच्चे हैं तो जन्म से अधिकार
1: तो है,
0: खुशी है,
1: बिल्कुल। और वो अब हमें इस पूरी श्रृंखला में चलते चलते ये भी समझ में आया कि वो है ही हमारे पास, हमारा अपना अपनी वैल्यू है, अपना संस्कार, अपना अनुभव है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शिवानी कि हम किस तरह से परमात्मा को याद करके कैसे उनकी याद में बैठे और कैसे वो ताकत लें उनसे, कैसे पावर लें।
0: परमात्मा को याद करना वैसे ही होता जैसे किसी और को भी याद करते, सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये कि जब भी किसी और को याद करते तो फिजिकल फॉर्म में याद करते, अब हम उस परम आत्मा को याद कर रहे हैं, तो पहले मुझे किस स्थिति में बैठना पड़ेगा, आत्मा हूँ, जब तक मैं आत्मा हूँ उस स्थिति में नहीं बैठी तो परमात्मा नहीं याद आएगा। आज दिन तक परमात्मा को याद करना क्यों मुश्किल हो रहा था, याद करने बैठा कौन था,
1: मैं,
0: माँ बैठी थी, तो माँ को कौन याद आएगा, बच्चा याद आएगा, परमात्मा नहीं याद आएगा, लेकिन आत्मा जब बैठेगी याद करने कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को परमात्मा याद आएगा।
1: I think सिर्फ परमात्मा ही फिर याद आएगा।
0: Absolutely.
1: है ना? अब actually ऐसा हो पाएगा कि हम सिर्फ परमात्मा,
0: जैसे ही आप सोल कॉन्शियस हो गए आपको परमात्मा ही याद आएगा, और याद करना मतलब मैं किसका बच्चा हूँ, और उस घर में जाना, यू नो, विद द पावर ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट, जैसे अगर आप यहाँ बैठे अपने बच्चों को याद करो तो कहाँ याद करोगे, वो घर में बैठे हैं, तो तुरंत आपके सामने क्या आता जाएगा, वो घर में हैं, ये कर रहे हैं, आप उनको वहाँ देखेंगे तो वही याद करोगे ना। अगर मॉर्निंग में याद करते तो कहाँ याद करते, वो स्कूल में है, ऑटोमेटिक है। तो अब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें, वो कहाँ है, उस घर में है, और फिर हम भी बुद्धि से उस घर चलते, जैसे हम यहाँ बैठकर इस घर जा सकते, अब हम यहाँ बैठकर वो घर चल सकते, और जैसे ही हम ये थॉट्स क्रिएट करेंगे परमात्मा की याद आएगी, तो उनकी पावर प्योरिटी हमारे अंदर आ जाएगी। करके देखें,
1: बिल्कुल करते हैं।
0: जस्ट लेट्स सिट बैक, कंफर्टेबल होकर बैठे, हम कुछ मुश्किल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने पिता को याद करने बैठे हैं, उनसे वो कनेक्शन जोड़ने बैठे हैं जो शायद काफी समय से टूट गया था। अपने आप को देखें इस शरीर में, शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर पीसफुल बींग, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। आई टेक दिस मोमेंट टू गो होम, अपने आप को देखें, ऊपर अपने घर की तरफ चलते हुए देखें उस सितारे को, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्रॉसिंग the sun, moon and the stars, I'm going home, my home, mujh atma ka ghar, the land of silence, peace and purity, charo taraf golden red light, aaj din tak is ghar ko yaad kiya tha, आज मैं उस घर में आकर पहुंची हूं, अपने पिता के पास आकर पहुंची हूं, मेरे पिता जस्ट लाइक मी, पॉइंट ऑफ लाइट, आज दिन तक ढूंढ रहे थे, वेरी वेरी पावरफुल, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, मन पे कोई भी बोझ, कोई क्वेश्चन है, अपने पिता से करें, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूं. As I fill myself with the power of purity and peace, धीरे धीरे मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचते. Coming back to the center of the forehead. With this consciousness, I am a peaceful soul, child of that ocean of peace. Peace is my nature, it's my personality. Happiness, जिसको मैं हर जगह ढूंढ रहे थे, this is my original nature. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much, Sister Shivani.
0: Om Shanti.
1: अगर आपको याद हो, जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, हमने आपसे कहा था कि आप खुश हैं, और हमारा एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम सामने आया था, आज के इस वक्त में कौन खुश रह सकता है. ऐसे ही बहुत से संस्कारों और बिलीफ सिस्टम्स पर हमने अपनी ज़िंदगी की वो खूबसूरत खुशियाँ और वो शांति, प्रेम, वो जो हमारी अपनी इनेट क्वालिटीज़ हैं, उन्हें गंवा दिया है. कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ है, वो हमारा पिता, हमारा साथ देने को तैयार है, हमें शक्ति देने को तैयार है. हम फिर उन खुशियों को लौटा सकते हैं. बॉल इज इन आवर कोर्ट. अगर आपके पास कोई सवाल, कोई मन में बात उठ रही है, कोई सजेशन है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क करें.
2: हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org.
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक ऐसी शक्ति लेकर आज हम सब अपने साथ हैं. थोड़ी देर मनन करें. आज जो हमने सीखा इस पूरी श्रृंखला में, जो हमें बात समझ में आई है, ये सारी खुशियाँ, ये सारे एहसास हमारे अपने हैं, खुद क्रिएट किए जा सकते हैं. किसी भी पल, किसी भी सिचुएशन में मैं अपनी स्टेबिलिटी कायम रख सकती हूँ. इस ताकत के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई।

0: मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: मौलाना मजरूल हक सदाकत आश्रम के संस्थापक और सच्चे सत्याग्रही थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पोषक, सादगी और साफ गोई की मिसाल और बड़े ही ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने मादरे वतन की आजादी और सांप्रदायिक गुत्थियों को सुलझाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। मजरूल हक का जन्म बिहार के सारण जिले के फरीदपुर गांव में 22 दिसंबर 1866 में हुआ था। उनके पिता शेख अहमदुल्ला साहब एक छोटे से जमींदार थे। वे अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। सन 1886 में प्रवेशिका परीक्षा पास करके वे 1887 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में दाखिल हो गए। वहीं उनके मन में इंग्लैंड जाने की इच्छा जागृत हुई, मगर घर वालों से इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे चुपचाप ही बिना किसी को बताए हुए बम्बई पहुंच गए और हाजियों के जहाज में बैठकर अदन पहुंचे और फिर वहां से वे इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। ये एक इत्तेफाक की बात थी कि इस जहाज में मोहनदास करमचंद गांधी भी सफर कर रहे थे। जहाज में दोनों की मित्रता हुई जो जिंदगी भर बरकरार रही। 5 दिसंबर 1888 को वे इंग्लैंड पहुंचे। मजरूल हक साहब ने अपना समय सिर्फ कानून पढ़ने में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के कामों में भी बिताया। सन 1891 में भारत लौटने पर वे कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट हो गए। सन 1892 में हक साहब अवध प्रांत के मुंसिफ हो गए। वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेज अफसर अपने अधीनस्थ भारतीय कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इस बात से उनका मन उचाट हो गया। वे वहां से इस्तीफा देकर सन 1896 में छपरा आकर वकालत करने लगे। इसके बाद से उन्होंने देश की आजादी और समाज की भलाई के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1906 में वे पटना आकर प्रैक्टिस करने लगे। पटना में उनकी वकालत की प्रैक्टिस सफल हुई। सन 1912 में पटना में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब वे स्वागत अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया था वो देश प्रेम और आजादी की लगन की वजह से आज तक याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि देश प्रेम का ये तकाजा है कि किसी के सामने हमारा सिर न झुके। 1916 के इस अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार में भाषण देने और बातें बनाने का वक्त गुजर गया, अब काम का समय है। आप भारत के लिए होम रूल या स्वशासन की मांग कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये चीज सिर्फ मांगने से मिल जाएगी? हमें अपने हुक्मरानों को ये दिखाना होगा कि भारत का हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करने के लिए किस तरह अटल है।

सन 1920 और 21 के असहयोग आंदोलन में मसरूल हक ने अपनी शानदार बैरिस्ट्री को ठुकरा दिया। वे बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, पर असहयोगी होने पर उन्होंने स्वदेशी बाना धारण किया और सादगी को अपनाया। सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके वे राष्ट्र के सच्चे पुजारी बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन के जमाने में कॉलेज छोड़ दिया था, मौलाना साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा कि उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने फौरन अपनी सजी सजाई कोठी सिकंदर मंजिल छोड़ दी और उन विद्यार्थियों के साथ पटना दानापुर रोड पर दिगाह की एक बाड़ में शरण ली। उन्होंने कुछ झोपड़ियां खड़ी की, फूल लगाए और देखते ही देखते एक आश्रम बन गया। इस तरह सिकंदर मंजिल की ठाट बाट का जीवन गुजारने वाला व्यक्ति बाग में बनी हुई झोपड़ी का वासी बन गया। मौलाना मजरूल हक ने इस स्थान को नाम दिया सदाकत आश्रम। इस नाम के पीछे हिंदू मुस्लिम संस्कृति के सम्मिश्रण का विचार था। बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम में है। सन 1920-21 में हक साहब उसके कुलपति थे और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उप कुलपति। सदाकत आश्रम से अंग्रेजी साप्ताहिक मदरलैंड अखबार निकलने लगा। इस अखबार के माध्यम से हक साहब ने कई लेखों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत की भलाई इसी में है कि दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध और आजादी के आंदोलनों के लिए बहुत कुछ लिखा। सही बात के हिमायती और हुक्मरानों को खरी खोटी सुनाने के एवज में सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और 1000 रुपए जुर्माना किया, मगर मौलाना ने जमानत की रकम देने के बदले जेल जाना मंजूर किया।

सन 1917 में मजरूल हक ने चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी की बड़ी सहायता की। जब गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया तो वे फौरन मोतिहारी पहुंचे। बाद में गांधी पर से मुकदमा उठा लिया गया तो उन्हें साथ लेकर वे छपरा आए। 27 दिसंबर 1929 के अंत में हक साहब को लकवा मार गया, उनका बायां अंग शिथिल हो गया और उसके बाद 2 जनवरी 1930 को उनके इंतकाल की खबर सुनकर भारतवर्ष में मातम छा गया। महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि वे एक महान देशभक्त और सच्चे मुसलमान थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि वे कांग्रेस के शारीरिक और बौद्धिक दोनों दृष्टियों से महारथी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में कहा था कि वे असहयोग आंदोलन के बहुत बड़े नेताओं में से थे और हमारा ये धर्म है कि हम उनकी याद मनाएं। आजाद भारत मौलाना साहब की महान सेवाओं को हमेशा याद रखेगा।

श्रोताओं, वक्त का गुजरना एक कभी न रुकने वाला सिलसिला है। वक्त के इस चलने के साथ हम भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीतते दिन महीनों के साथ किसी तारीख को हम नया साल भी कहते हैं। वक्त की ये सौगात हम सब के लिए है। शुभ हो नया साल। रोशनी हर आंगन खिले, रंग हर जीवन में बरसें, और सबसे चटख केसरिया, सफेद और हरा रंग लिए मुस्कुराए नए क्षितिज के पार चले हमारा देश, हमारा भारत। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने और समन्वय किया संजय यादव ने। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस शख्सियत का जिक्र किया गया। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस शख्सियत का जिक्र किया गया। आपके जवाब हमारे पास 10 दिनों के भीतर इस पते पर पहुंच जाने चाहिए। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल। पिन 4620002।

खौफ और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: विद ब्रह्मा कुमारी में हर रोज की हमारी मुलाकात यूं होती जा रही है और ऐसा लगता है कि अब ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी हमारी जिंदगी के कहीं ना कहीं क्लियर होते जा रहे हैं, जिंदगी बेहतर है। लेकिन हम इन दिनों बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की। बहुत कुछ जाना स्ट्रेस के बारे में, सबसे पहले ये बात कि स्ट्रेस से मुक्ति, तनाव से मुक्ति मुमकिन है। जहां हमने इस बात को मान लिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत आसानी से हो सकता है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमने यही उठाया था कि कैसे खुद को जाने। उसके बाद कई और एस्पेक्ट्स थे जिन पर हम काम करते गए और अब आज बात करते हैं कि कौन से वो प्रैक्टिकल बातें हैं, कौन से वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो दिन भर अगर हम जिंदगी में शामिल करेंगे तो फिर स्ट्रेस का नाम ही नहीं रहेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आइए जानते हैं कैसे। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इतनी कॉन्फिडेंस से सिस्टर शिवानी अब मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर हम पूरी जर्नी को देखते हैं तो जहाँ वो बातें बिल्कुल ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, परमात्मा का वो ज्ञान जब हमें मिलता गया तो वो असंभव संभव होता गया है। आई थिंक दिस इज समवेयर मिरेकल हैपनिंग।
1: या बिकॉज हमें जो लगा था वो नेचुरल है तो वो एक्चुअली अननेचुरल था, तो परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है वो हमें अननेचुरल से वापस नेचुरल की तरफ लेकर जाता है। और जैसे ही आत्मा अपने नेचुरल की तरफ जाना शुरू करती है, इवन इफ इट्स वन स्टेप, इवन इफ इट इज इन वन डे, एक बार मुझे गुस्सा नहीं आया, यू नो, इवन दैट वन इज ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं गुस्से से नहीं रिएक्ट किया, मतलब शांति में रही और पीसफुल रही, मतलब आई टच्ड माय रियलिटी। तो जैसे जैसे हम अपनी वास्तविकता के नज़दीक आते जाते हैं, इट फील्स so
0: at the end of the day, yes, it does feel good.
1: Feels beautiful. And iska testing, agar aapko check karna hai ki aapke andar change aa raha hai ki nahi, aapka meditation ka tarika sahi hai ki nahi, to you have to just check ki overall sara din mein aap kitna halka feel karte hain. There has to be a lightness ki jaise, you know, you're flying through the day, through your work. Pehle hum bahut bojh lekar chalte the, बहुत लोगों के बारे में सोचा, बहुत परिस्थितियों, पास्ट का, फ्यूचर का, देयर वाज लाइक बिग बिग बैगेज दैट वी वर कैरिंग, और इतना बोझ लेकर यात्रा पर जाना
0: संभव नहीं,
1: तो वो यात्रा कभी अच्छी नहीं होती है।
0: एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो एस्पेक्ट, सात एस्पेक्ट्स आपने बात किए थे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए।
1: स्ट्रेस का हमने सोचा कि सबसे पहले सिग्नल क्या है कि स्ट्रेस है क्या। इट्स अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी आई नीड टू चेंज। तो कहीं भी अंदर किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो रहा हो, चाहे वो ईर्ष्या है, नफरत है, क्रोध है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, कुछ भी प्रकार, यू डोंट हैव टू रियली लेबल इट, लेकिन कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द अगर अपने अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, इट इज़ अ मैसेंजर, स्टॉप। कहीं ना कहीं आप नेचुरल से परे जा रहे हैं, और इसको बढ़ने की बजाय जैसे ही वो होता हुआ महसूस हो तो तुरंत से स्टॉप करके देखना चाहिए मुझे क्या चेक और चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन वो तभी हम कर सकेंगे जब हम औरों को उसका जिम्मेवार नहीं ठहरा कर, अभी क्या होता है चेंजिंग के ऊपर ध्यान नहीं जाता, परिवर्तन के ऊपर, क्योंकि आप जिम्मेवार हो मेरे तनाव का, तो तनाव मेरे जीवन में रहेगा ही। यू नो, माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, सो शी टिल शी इज विद मी I will be in stress.
0: जब तक वो बदलेंगी नहीं मेरे जिंदगी में कुछ
1: My
0: नहीं
1: boss is like this only. तो जब तक मैं इस जॉब में हूँ तो हमने acceptance देते गए, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा accept लोगों को करना था, accept दर्द को कर लिया, और दर्द को स्वीकार कर लिया, लोगों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को उस दर्द का जिम्मेवार समझ लिया, तो लोग दूर होते गए, दर्द और नज़दीक आता गया, और दर्द को स्वीकार कर लिया, तो वी आर रेडी टू लिव विद इट, और अब हमें उस दर्द में रहने की एक क्या कहें आदत सी पड़ गई है, वो दर्द एक स्टिम्युलेंट सा बन गया,
0: एक नेचुरल है, दर्द मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मतलब इतनी सारी बातें, और ये झूठ नहीं बोल रहे होते लोग, इट हैपेंस, यू नो, पीपल से कि दर्द के बिना मैं सोच नहीं सकता कि मेरी जिंदगी कैसे हो सकती है, इट्स अ पेन आई हैव लर्न टू लिव विद।
1: जैसे कई फिजिकल पेन होते हैं जो हम बहुत इलाज कराने के बावजूद वो नहीं जाते, तो वी लर्न टू लिव विद दैट पेन। सिमिलरली इमोशनल पेन, लेकिन इमोशनल पेन एक अननेसेसरी बैगेज है जो हम कैरी करते, और परमात्मा का ये सुंदर ज्ञान हमें वो बैगेज से हल्का कर देता है। और निराकार परमात्मा शिव बाबा हमेशा यही कहते कि कितना बड़ा टोकरा आप लेकर अपने सिर पर चलते हो, आत्मा इतनी हल्की है, इट शुड बी फ्लाइंग एवरी डे, बट इट कैरीज दिस होल बैगेज ऑफ you know, so much that I'm carrying, and I keep on
0: taking it,
1: adding
0: more
1: to that baggage. तो कम तो क्या करना, लेकिन वो बोझ तो रोज
0: डेफिनेटली दिस इज व्हाट यू नो राइट नाउ आल्सो आई कैन शेयर दैट यू नो दैट बैगेज एक्चुअली गोज विद एवरीवन, लेकिन द मोमेंट इट गोज अप इट्स लिफ्टेड, आप इतना लाइट फील करते हो. आई एम फीलिंग इट, यू नो, सो इट्स ऑफ कोर्स द जर्नी इज स्टिल ऑन.
1: लेकिन देन इफ आई एम फीलिंग लाइट, तो मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, इज इट वर्थ इट. जितना मैंने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला, जो आज दिन तक हम समझते थे कि नहीं टाइम नहीं है, वो उतना थोड़ा सा समय निकालने से और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ और फिर दिन में थोड़ा सा अटेंशन रखने से, लुक एट द डिफरेंस कि कहाँ इतने दर्द में चल रहे थे और कहाँ सारा दिन खुशी खुशी. पूरी जीवन तो वही है, सिचुएशंस भी वही है और जो लोग थे आसपास वो भी वही.
0: अमेजिंग इज लाइक
1: दैट्स वेयर बाबा स्लोगन कम्स इन कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वो सब वही है. बट आई एम सो हैप्पी नाउ कि मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं, पहले वही लोग, यू नो, बिकॉज़ दैट वाज द एनर्जी दैट आई वाज कैरिंग.
0: परेशानी का कारण बन रहे थे. बिल्कुल,
1: जैसे ही फोकस, इट्स जस्ट वन रॉन्ग स्विच. एक था यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड नाउ फॉर एवरीथिंग. ये सुनने में थोड़ा सा लगता है ओ फॉर एवरीथिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल, एवरी टाइम आई हैव टू चेंज, बट यस, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ थोड़ी बार करने की बात है, उसके बाद आई लव टू चेंज.
0: नो नो, बिकॉज इट्स सो इजी. सी इट्स सो इजी, आई हैव टू चेंज. सो उनको मैं कोशिश करती रहूं, आई कैन एक्चुअली चेंज माय सेल्फ इन जस्ट वन थॉट.
1: थोड़े टाइम के बाद तो आई लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, हाँ क्या करना है, अपने आप को कहाँ और मोल्ड करना है, कहाँ और चेंज करना है, बिकॉज आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जितना करते जाएंगे उतना फायदा
0: मुझे ही हो रहा है,
1: मुझे ही होने वाला है. शुरू शुरू में जब हम करते तो हमें लगता है कि ये एफर्ट है, कि इनके लिए अब इनको गुस्सा नहीं करना, इन्होंने गलती की है, अब इनको कुछ नहीं बोलना, तो एक एफर्ट के थ्रू गुजरते, लेकिन उसका रिजल्ट तो कितना ब्यूटीफुल रिटर्न में मिलता है कि अपने संस्कार कितने चेंज होते जाते हैं. लेकिन बिगिन डूइंग इट, यू नो, जस्ट लेट्स सिट बैक एंड से कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं कर पाएंगे,
0: मैं तो कर नहीं सकते, वही रॉन्ग बिलीफ्स के साथ बिल्कुल हम चलते हैं. तो जैसे शिवानी इस सफर पर आगे चलते हैं कि जब अब हम सब बातें समझ गए, अब काम करने की बारी है, कि सवेरे के मेडिटेशन से शुरू होता है ये सफर और दिन भर चलता है.
1: सारा दिन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है. बातें अगेन फिजिकल नहीं, बाहर नहीं, कुछ ऐसी बातें अंदर जिन पर ध्यान देना है, लेकिन वो हमारी बहुत डीप रूटेड हो गई है तो उन पर अटेंशन देना होगा. एक है कि सारा दिन में प्रयास करें टू बी क्वाइट, यू नो, क्वाइट हियर इनसाइड. जैसे हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक लाइब्रेरी में एंटर होते ही एक अलग सा सन्नाटा हमें मिलता है, एंड इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग एक्चुअली. उससे आप उस समय महसूस करेंगे कि आपकी एकाग्रता शक्ति, आपकी इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई चली जाती है, क्योंकि यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज पीस. एंड व्हाई देयर इज पीस देयर, बिकॉज हर एक का माइंड इज फोकस्ड ऑन समथिंग. तो वो फोकस होने के कारण से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत कम चलते हैं, और इसलिए एकाग्रता शक्ति जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ वायुमंडल में एक सन्नाटा छा जाता है. और उस समय अगर कोई बोलता है
0: बहुत डिस्टर्बिंग होता है,
1: आप बच्चा कीप क्वाइट, क्योंकि नो यू डोंट वांट एनीथिंग टू डिस्टर्ब दैट साइलेंस. इसी तरह अंदर अगर हम देखें तो एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ बहुत सारी विजडम है. जैसे एक लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, अलग अलग शेल्व्स पे कितनी सारी विजडम है, तो वहाँ यहाँ भी बहुत सारी लेयर्स पे बहुत सारी विजडम है, लेकिन आगे नॉइज़ भी बहुत है. नॉइज़ है अभी के थॉट्स, इमोशंस, इसने क्या किया, वो क्या किया. अब वो सारी नॉइज़ में कहीं ना कहीं वो विजडम तक पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड इन दैट नॉइज़.
0: आई गेट एंटैंगल्ड इन दैट नॉइज़.
1: सो फॉर वन डे ट्राई इट आउट, जस्ट स्टॉप कि मेरे अंदर क्या विजडम है. तो अगर हम ये जो आवाज़ें आएँ इनको अगर हम थोड़ी देर के लिए कह सकें क्वाइट, अभी नहीं, 15 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद, तो जब ये सारे नॉइजेस हट जाएंगे तो बहुत डीप प्रोफाउंड विजडम आपको खुद अपने आप से मिलेगी, जो आपको खुद लगेगा कि ओ
0: इट वॉज विद इन मी,
1: ये मेरे को तो पता ही नहीं था कि आई नो दिस, ये मुझे पता ही नहीं था कि आई कैन डू दिस, लेकिन वो नॉइज़ के बियॉन्ड मिलती है. तो वो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है कि उस नॉइज़ को कॉन्शियसली साइलेंट करना, क्योंकि वर्तमान समय जब हम जिस माहौल में हम हैं तो बाहर भी बहुत आवाज़ है, एंड वो आवाज़ बढ़ने ही वाला है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. एंड अंदर भी बहुत आवाज है थॉट्स इमोशंस का. सारा दिन में हम बहुत सारी आवाज बाहर से कंज्यूम करते और बहुत सारी आवाज अंदर क्रिएट करते. तो इससे हमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल लगता शुरू में अंदर साइलेंस क्रिएट करने में, तो कुछ एक दिन के लिए अभ्यास करके देखें, अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंट, कि कॉन्शियसली टॉकलेस, कॉन्शियसली टॉकलेस थोड़े दिन थोड़ा सा कम बोलें. जो अननेसेसरी है ना उसको अवॉइड कर दें. एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अननेसेसरी ही जाती है. तो क्योंकि ये शुरू का है, ऐसे नहीं मतलब

0: परमात्मा हमें बहुत ब्यूटीफुली थ्री वर्ड्स में देते, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो. कुछ एक बार मुझे याद आता है, सेंटर पर एक भाई आए थे और उन्होंने एक बोर्ड देखा तो उस पर लिखा था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो. ही रेड दैट एंड देन ही सेड, फिर बोलो क्या अगर ये तीनों चीज़ें पर मुझे, क्योंकि वी आर सो लाउड सारा दिन में कि हमें लगता है कम भी बोलना है और मीठा भी बोलना है और धीरे भी बोलना है, मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचेगा. दैट्स हाउ मच वी आर डिसकनेक्टेड विद द नेचुरल रिदम. तो और एक्चुअली ये तीनों बातें ऐसी हैं कि इनमें से अगर आप एक को पकड़ेंगे बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. कम बोलेंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा बोलते हैं तो इट बिकम्स वेरी लाउड.
1: होता ये है ज्यादातर बार देखा गया है कि क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे बोलने से ज्यादा तेज चल रहा होता है, ज्यादा भाग रहा होता है, तो वो इतना ज्यादा हम तेज बोलते हैं क्योंकि हमें उसके साथ कैप्चर करना पड़ता है.
0: इट शुड नॉट बी अ सफोकेशन, बट बहुत लोगों के लिए कई बार वो एक सफोकेशन बनता है क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा. इट्स नॉट लाइक दैट. आप नेचुरल रहो, लेकिन एक कॉन्शियसली अगर आप रियली अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो तो जो अननेसेसरी बातें हैं उसको एक दिन के लिए छोड़ दो.
1: बट हाउ विल इट हेल्प द स्ट्रेस लेवल?
0: इट विल हेल्प द स्ट्रेस लेवल बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस इज टू क्वाइटन माई माइंड. स्ट्रेस कहाँ क्रिएट हो रहा है? यहाँ मेरे से हो नहीं रहा ना. आज इतनी नॉइज है अंदर कि अगर मैं बैठती भी हूँ 10 मिनट्स मेडिटेशन या 1 मिनट, जो 1 घंटे के बाद हम 1 मिनट पॉज करते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस डू यू थिंक कि वो 1 मिनट में रियली पॉज कर पाते होंगे? क्योंकि अगर 1 घंटा मेरा इतना नॉइज में बीता तो वो 1 घंटा 5th गियर में चला के यू डोंट एक्सपेक्ट कि 1 मिनट में वो न्यूट्रल में आ जाएगा. इट डजंट हैपन. गाड़ी को भी तो टाइम लगता है एंड वी एक्सपेक्ट इतना फास्ट एकदम ऑफ. इट विल नॉट हैपन. लेकिन अगर मेरा 1 घंटा एक अच्छे रिदम पर बीतता है फिर वो 1 मिनट
1: आसान हो जाता है,
0: बहुत ईजी हो जाता है उसको करना. अदरवाइज इट्स रियली नॉट पॉसिबल. दूसरी चीज जो बहुत डीप रूटेड है वो है हमारी अटैचमेंट्स. बहुत सारे, तो उसके लिए हमें फ्रेज जो अपने साथ हमेशा याद रखना होगा वो है लेट गो. ये लेट गो हमने पहले भी बहुत बार शेयर किया था एंड आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद ऑल द फैमिली वॉचिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिन्होंने लेट गो वर्ड तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने पकड़ लिया. दे सेड बट वी कांट लेट गो, यू नो, वी वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो. तो वो लेट गो पकड़ लिया एंड दे वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो. तो क्या बोलेंगे आप किसी को? आई वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो. आप एक वृक्ष पर एक पक्षी को देखिए, वो एक टाली पर बैठा हुआ है. अगर उसको उस टाली से उड़कर दूसरी टाली पर जाना है, अगर वो पंछी वहां पर बैठ जाए, आई वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो, ही नेवर फ्लाई. लेट गो मीन्स लेट गो. हम सर्कस में जाते थे बचपन में तो वो ट्रपीज पे नहीं वो जाते हैं,
1: वो छोड़ते हैं दूसरा. जब तक
0: एक को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम फ्लाई कर ही नहीं सकते दूसरे की तरफ. लेकिन अगर हम उसको पकड़ कर रखेंगे, एंड नॉर्मली छोड़ेगा कौन? नहीं, जिसको डर लगता है.
1: फियर.
0: आई हैव फियर ऑफ लूजिंग दिस. आई हैव फियर ऑफ इनसिक्योरिटी
1: एंड नॉट गेटिंग द अदर थिंग.
0: एब्सोल्युटली, कि मैंने ये वाला भी छोड़ दिया
1: और वो भी नहीं मिलेगा,
0: मुझे वो वाला नहीं मिलेगा. तो उस प्रोसेस में हम बहुत सारी चीजों को टाइट पकड़ के रखते हैं. लोग, हमारी आइडेंटिटीज, लेबल्स जो हमने बहुत सारी पकड़ी, ऑब्जेक्ट्स.
1: बट पीपल आर गोना से व्हाई शुड आई लेट गो.
0: नो, व्हेन वी से व्हाई शुड आई लेट गो, दैट मींस व्हाई शुड आई लेट गो ऑफ माय स्ट्रेस आल्सो देन, बिकॉज अटैचमेंट क्रिएट स्ट्रेस. द लेट गो डज नॉट मीन कि उनको छोड़ दो या उनको जाकर उनसे अलग हो जाओ. लेट गो मीन्स वो हैं आपके साथ और वो आपके साथ ही रहेंगे. जो वस्तु आपके पास है वो आपके पास ही रहेगी. आपको उठा के अपनी गाड़ी किसी और को नहीं देकर आनी है. लेकिन उस गाड़ी को अंदर या उस व्यक्ति को अंदर जो पकड़ कर रखा हुआ है वो लेट गो. क्योंकि वैसे वो व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ वो अटैचमेंट आ गई तो एक्सपेक्टेशन आएगी. एक्सपेक्टेशन आएगी, पूरी नहीं होगी तो दर्द मिलेगा. इट ऑल केम बिकॉज ऑफ होल्डिंग ऑन टू. कहीं आप मेरे से दूर ना चले जाओ, कहीं आप किसी और के पास ना चले जाओ. तो आई कीप ऑन होल्डिंग और जितना मैंने पकड़ लिया उतना टाइटनेस बिल्डअप होती गई और टाइटनेस कंफर्टेबल नहीं है. यू नो हाउ लॉन्ग कैन आई सिट लाइक दिस? 1 आवर? 1 आवर ऑल्सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सिट. तो ये तो दर्द होने लग जाएगा सारा. और यहाँ कितना है ऐसा नॉटेड अप हो.

0: गया सारा, क्योंकि हमने कितनी चीजों को इतना टाइट पकड़ के रखा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये वास्तविकता समझ में आ जानी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के पास एक्चुअली कोई अपना पोजेशन
1: हो नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली जो हम सारा दिन कहते हैं ये मेरा है, आप मेरे हो, यू नो कितने लोग बोलते हैं आप मेरे हो, रियली आस्क योरसेल्फ, आई हैव टू, डज रियली समबडी बिलोंग टू यू, क्या कोई है जिसको आप अपने साथ लेकर जा सकें?
1: यहाँ ये बहुत
0: चैलेंजिंग।
1: अच्छा, यहाँ एक सवाल हम आगे बढ़ने से पहले एक जुड़ता है कि अगर हम समझ भी लेते हैं कि देयर इज अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, जो मुझे, जो मेरे लव्ड वंस हैं, जब मैं वो डिटैचमेंट के पे आ जाती हूँ, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, समवेयर दे ऑल स्टार्ट फीलिंग कि दैट लव विच यूज टू फ्लो, विच वॉज देयर, विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मे बी पोजेसिवनेस और वट एवर, इज नॉट देयर एनी मोर,
0: देन आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आई एम डेफिनेटली, अगर किसी को मेरे जो नज़दीकी संबंधी या दोस्त हैं, अगर उनको एक बार भी मुझसे ये फील होना लग जाए कि पहले जो इनका प्यार था वो नहीं है, आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक, फिर मैंने डिटैचमेंट को एक्चुअली सही रूप से नहीं समझा, क्योंकि वो ही लोग हैं, वही फैमिली है, वही पेरेंट्स, वही बच्चे, वही सब है। पहले था अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है, आपका
1: पर उसके लिए मैं सब कुछ करती जाऊंगी ना, फिर
0: नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है?
1: उसी पे कि वो एक्सेप्ट कर
0: रहे हैं, बिकॉज़ आई एम अटैच्ड टू यू, तो मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है। आपका एक बोल, एक वर्ड मुझे सारा दिन उदास कर सकता है, राइट? जब आपका एक वर्ड मुझे सारा दिन उदास कर सकता है, मैंने आपके लिए कौन सी एनर्जी क्रिएट की उस दिन सारा दिन? सो कॉल्ड लव्ड वंस, यू नो, अगेन एवरीवन इज आवर लव्ड वंस, बट व्हाट इज द एनर्जी एक्सचेंज टुडे? क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपसेट कर दिया, मेरी, मैं आई एम अटैच्ड टू यू, तो मेरी खुशी आपके एक एक बोल पर डिपेंडेंट है। आपका एक ऐसी डिटैचमेंट मतलब क्या? डिटैचमेंट मतलब हम लोगों से दूर नहीं हो जाते।
1: ओके, मेरी खुशी जो है वो आपके बोल पर डिपेंडेंट नहीं होगी,
0: मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं, मेरी खुशी किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी पोजीशन पर, किसी अचीवमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज डिटैचमेंट। वो कब आती? जब मुझे समझ में आता मैं आत्मा हूँ ही आनंद स्वरूप। ये जब समझ में आता, अभी तक थी इट वॉज डिपेंडेंट ना, दैट्स वाई आई वॉज होल्डिंग ऑन टू यू। अब इंटरनली भी आपको छोड़ देना, मुझे क्यों डर लगता है? क्योंकि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है, तो आप चले गए, मेरी खुशी, एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स, दैट्स बॉटम लाइन, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन। तो इवन इफ आई से आई एम वेरी अटैच्ड टू यू, इट्स नॉट फॉर यू। विदाउट सोल कॉन्शियसनेस हमें डिटैचमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आ सकता। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब अटैचमेंट है ही है, वो अटैचमेंट क्रिएट नहीं करनी पड़ती, हमारा इतना डीप रूटेड संस्कार वो बन गया। जब आई से आई फियर कि आप चले ना जाओ या आपको कुछ हो ना जाए, तो इट्स लेस अबाउट आपको कुछ ना हो जाए, इट्स मोर अबाउट मुझे क्या होगा अगर आप चले गए। लेकिन अब जब माई सेल्फ का मीनिंग समझ में आ गया, तो अब मेरा क्या होगा इज नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। तो वो डिटैचमेंट है कि डिटैचमेंट मतलब मैं सबके साथ रहूंगी लेकिन मेरी खुशी उन पर डिपेंडेंट नहीं है। इमेजिन फॉर वन डे ऑल्सो इफ यू कैन अचीव दिस, यू नो, आप रियली उस स्थिति को अपने बना लो कि एक दिन के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरे फैमिली में जो है वो मेरे को कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो मेरे कहे अनुसार चले या नहीं चले, वो अपनी मर्जी से चले, तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे, डू यू फील लव कम हो जाएगा?
1: हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेरी होके अगर हम चलेंगे तो
0: दैट्स नॉट डिटैचमेंट।
1: हाँ, दैट्स नॉट
0: डिटैचमेंट, वो तो रूखापन। हाँ, वो तो एक रूखापन आ जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन कई बार उसको हम कहीं बाहरी रूप से करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ना सबसे थोड़ा सा दूर दूर कटे हुए रहना। डिटैचमेंट मतलब जो आई हैव एक्सपीरियंस, डिटैचमेंट उल्टा मुझे और भी लोगों के करीब ले आती है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है ना उनके ऊपर। अभी क्या था और उससे क्या होता है, मुझे सिर्फ कुछ लोगों के करीब नहीं, मुझे ज्यादा लोगों के करीब ले आती है, बिकॉज आई डोंट हैव ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, आई एम विद एवरीबडी, बिकॉज सोल कनेक्टिंग टू द सोल, इट्स विद एवरीबडी। तो डिटैचमेंट को बाह्य रूप से नहीं लेना कि अच्छा आपको दर्द हो रहा है या आपको तकलीफ है, होता रहे, इट्स नॉट माय कंसर्न, नो, आपको दर्द हो रहा है, आई एम टोटली विद यू, लेकिन मैं दर्द को कंज्यूम नहीं करूंगी,
1: इट विल नॉट बी माय पेन।
0: अब वो आपका दर्द है, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू, बट आई विल नॉट गो इन टू पेन. अर्लियर अगर आपको दर्द हो रहा था तो मुझे भी दर्द हो रहा था. अब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें ये आदत पड़ी होती है कि मुझे दर्द हो रहा है तो आपको भी दर्द होना चाहिए साथ में, क्योंकि मेरी बिलीफ सिस्टम वो बनी हुई है कि वो प्यार है, कि एक माँ को दर्द हो रहा है तो एक बेटी को दर्द होना ही चाहिए. अब अगर माँ के दर्द से बेटी को दर्द नहीं हो रहा, तब अगर माँ को ये महसूस होने लगे कि अब तो इसका मुझसे कोई प्यार नहीं है, देन माई रॉन्ग बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड. बट इट विल नॉट हैपन. वाई इट विल नॉट हैपन? क्योंकि दर्द जब नहीं होगा ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस ऑफ लव एंड कंपैशन यू विल गेट फ्रॉम द अदर पर्सन, एंड दैट विल हील माई पेन. तो पहले दो मरीज थे,
1: अब वो दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा.
0: एक ठीक हो जाएगा तो दोनों ठीक हो जाएंगे. तो वेयर इज इट एनी वेयर गोइंग टू बी डिसएडवांटेजेस? अब जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो रिलेशनशिप्स, अब क्या होता है परिवार में, एक दर्द में सारे दर्द में, एंड वी फील कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हमारी, हम सारे दर्द में, एंड वी लिव्ड विद दिस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कि वी आर सो क्लोजली नेट कि अगर एक दर्द में होता है तो सारे दर्द
1: का रिश्ता है. यू नो, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ पेन. वी ऑल एक्चुअली टॉक्ड अबाउट
0: दिस. स्नेह का रिश्ता होने के बजाय वी वर मोर प्राउड कि हमारा दर्द का रिश्ता है. दैट सो दीज आर बिलीफ सिस्टम्स व्हिच नीड टू बी चेक्ड. क्योंकि दर्द अगर सभी में है तो मतलब एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज भी दर्द है. आत्मा का आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज अगर नेगेटिव होगा तो कभी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकता. बाहर से हमें लग रहा है कि हमारी बहुत बॉन्डिंग है, सो दैट इज डिटैचमेंट. जो आज बहुत एक कॉमन चीज़ है कि आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत लोग सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग क्या होता है? आर्ट ऑफ डाइंग इज लेट गो. क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग में क्यों मुश्किल होती है, मृत्यु के समय हमें क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि हमें फोर्सिबली लेट गो करना पड़ता है. हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसे बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ता है, और वो नहीं करना चाहती है तो उसको शरीर से भी अटैचमेंट बहुत है. तो अगर हमने ये लेट गो का प्रोसेस अपने जीते जी कर लिया होगा तो दैट्स आर्ट ऑफ डाइंग, दैट यू ऑलरेडी लेट गो ऑफ एवरीथिंग. आई एम फ्री, I am independent because I am actually. मैं किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, attached नहीं हूँ, ये मैंने create की है. तो इसको थोड़ा सा, it is little deep, but मैं अगर सारा दिन में इसको करके देखूँ, it's easy also. सिर्फ conscious awareness चाहिए कि मेरी किन चीज़ों से attachment है. अगर वो एक बार हो जाए, let go करना ज़्यादा easier है. सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है अपनी attachments को, क्योंकि कई बार हमें भी नहीं पता चलता.
1: डेफिनेटली द मोमेंट यू नो दिस जर्नी स्टार्ट्स, इनर जर्नी, और जब हम बाहर की चीज़ों के लिए भी देखते हैं तो हमें खुद पता ही नहीं होता कि हम कितने अटैच्ड हैं. सिस्टर शिवानी, आज दो बातें जो बिल्कुल एस्पेक्ट्स आप समझ में आए, कि जब हमें टेंशन से या स्ट्रेस से दूर करने की बात है कि पीस, साइलेंस, यू नो समवेयर दैट साइलेंस, और तीन बातें जो बाबा के महावाक्य के रूप में भी हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो. एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज लेट गो. किस तरह से वो जो अटैचमेंट्स हैं उनका एक लिस्ट बना लें अगर हम, और फिर उनके बिना जीवन कैसा होगा उसे समझ लें और उस पेन से दूर हटने की कोशिश करें. ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी चीज़ को जो हम संभव करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो सकता है. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब लगता है कि ये संभव है, स्ट्रेस को दूर करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है. साइलेंस में रहना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, इतना मुश्किल नहीं है. हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अपना अनुभव खुद को खुद के सामने लेकर आएंगे और फिर जानेंगे कि डिड इट हेल्प. और उसके आगे अगर हम जाते हैं लेट गो, लेट गो उन अटैचमेंट्स का जो मुझे कहीं ना कहीं पेन दे सकती है, उनकी एक लिस्ट बना के, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, और उसके बाद उनके बिना ज़िंदगी कैसी होगी ये कोशिश करके देखें. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं UK 44075304 2670, USA 1347448 2359, इंडिया 9199744455, और हमारा ईमेल आईडी है awakening@bkmail.org. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा. आज जिन एक्सरसाइजेस पर, जिन छोटे छोटे टिप्स के साथ हमने कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है वो ज़रूर करेंगे. इसी वादे के साथ दीजिए इजाज़त. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
1: थैंक यू।
0: हम लोग बीइंग डिवाइन में बात कर रहे थे अबाउट मेकिंग अदर पीपल फील नाइस एंड ऑल्सो फील नाइस, और मैंने कई जगह ये पढ़ा भी है, सुना भी है लोगों से कि आप दूसरे को कैसे महसूस कराते हो, फील कराते हो, रेस्पेक्ट दूसरे की डिग्निटी, मतलब वेदर वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसको आपने क्या महसूस कराया?
1: ये लाइन लेते हैं कि वो अमीर हो, गरीब हो, आपसे पोजीशन में छोटा हो, बड़ा हो, आपसे रिश्ते में या आयु में छोटा हो या बड़ा हो, इर्रेस्पेक्टिव हम उसको कैसा महसूस कराते हैं बेस्ड ऑन हम खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जीवन जीने का तरीका सो इम्पोर्टेंट। आज हमने ध्यान रखते हैं कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार किस पर डिपेंडेंट हो गया है? कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किससे हमें क्या मिल सकता है, किससे मेरा क्या फायदा हो सकता है, किससे मेरे कौन से काम हो सकते हैं, किससे मैं आगे और बढ़ सकता हूँ अपने करियर में, किससे मेरा क्या रिश्ता है। तो हमारे व्यवहार, हमारे बोल उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो हम अंदर कुछ और फील कर रहे होते हैं, व्यवहार कुछ और कर रहे होते हैं। तो जो हमने पिछली बार देखा, फील

0: नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस विल बी डिपेंडेंट, अगर हम अंदर बाहर कैसे हैं, सेम, हम अंदर बाहर एक हैं। अब अगर हम इसको जीवन जीने का तरीका बना लें तो हर सीन में बहुत इजी होगा ये अपने आप को बताना कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी इन दिस सीन राइट नाउ। जीवन एक बहुत बड़ा ड्रामा, ड्रामा इन द सेंस एक परफॉर्मेंस इतनी बड़ी जो चल रही है इस रंगमंच पर, हर एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है, हर एक एक्टर की अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यवहार, अपने संस्कार। अभी अलग अलग एक्टर्स के बीच में हम हैं एंड हर क्षण एक नया सीन है। सीन में कोई रीटेक नहीं है एंड जो सीन रिकॉर्ड हो गया वो एक परमानेंट इटर्नल रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग का कॉन्सिक्वेंस मुझे अभी भी आएगा, इसी क्षण मेरे फ्यूचर में भी आएगा।
1: सही बात।
0: इतनी अवेयरनेस से अगर जीवन जिया तो हर सीन वैसा होगा जो आपने पिछली बार कहा कि लोग तालियां बजाएंगे।
1: हाँ, किरदार ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद,
0: पर्दा गिरने के बाद तो ठीक है, अभी हर सीन ऐसा निभाओ कि सामने वाला फील्स नाइस। तो ताली बजाना डजंट मीन ताली बजाना लाइक दिस और अप्रिशिएटिंग, ओ इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। ताली बजाना मतलब अंदर से वो आपके लिए कैसा फील करे। अब ये क्राइटेरिया बनाकर अगर जीवन हम जीना शुरू करें तो एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर ब्लेम, फुल स्टॉप, नहीं हो सकता। हम दूसरे को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। सपोज आपने इस समय मेरे साथ ठीक से नहीं परफॉर्म किया, और ठीक से को भी हम क्या कहेंगे, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्म नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस से मैं प्रभावित हो गई और मैंने रिएक्ट कर दिया। ये रिएक्शन मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग बन गई। चाहे वो हर्ट था, चाहे वो गुस्सा था, चाहे वो ईर्ष्या थी, चाहे वो रिजेक्शन था, चाहे वो मैनिपुलेशन था, वो मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग बन गई है। अब वो जो परमानेंट रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ उस सीन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, वो एक जीवन जीने के तरीके की भी रिकॉर्डिंग हो गई है, जिसको हमने कहा वैसा हमने इनैक्ट किया तो अगली बार उस सीन को वैसा इनैक्ट करने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वी विल बी डूइंग इट द सेम वे मेनी मेनी टाइम्स, क्योंकि कोई भी चीज एक बार कर ली तो हम अगली बार भी वैसा करेंगे। एक बार गुस्सा किया तो सेकेंड टाइम करने के चांसेस बढ़ गए, थर्ड टाइम करने के चांसेस और बढ़ गए, फिर तो कई बार करने के चांसेस
1: तो
0: और बढ़ गए।
1: आपका संस्कार बन गया,
0: संस्कार बन गया, मतलब एक बार जो रिकॉर्डिंग हो गई वो यहाँ का हिस्सा बन गया।
1: रिकॉर्डिंग्स आर लाइक आवर रिहर्सल्स, एक बार रिहर्सल किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो इतनी आदत हो जाती, फिर नेचुरल
0: वे ऑफ लिविंग हो गया।
1: यस,
0: अब हमने आज डिसाइड किया कि नहीं, आई एम अ राइट एक्टर, मतलब मैं वो व्यक्तित्व, मैं वो पर्सनालिटी सही तब हूँ व्हेन आई फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। अब पास्ट को छोड़ देते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन आज से, कि इस क्षण से मुझे कैसी रिकॉर्डिंग करनी है। सिर्फ ये लाइन याद रखकर, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस, नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन परफॉर्मेंस। मतलब आज से ब्लेम गेम
1: बंद,
0: सामने वाला सही नहीं था, नॉट अलाउड टू से दैट, परिस्थिति ठीक नहीं थी,
1: नॉट
0: अलाउड टू से दैट ऑल्सो। जैसी भी परिस्थिति, सामने वाला एक्टर भी कैसा, माय परफॉर्मेंस हैड टू बी टू फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। अगर ये पकड़ लिया तो आपको नहीं लगता हर सीन में हमें एटलीस्ट मालूम होगा अब के हमें क्या करना है, हम कर पाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आंसर तो मालूम होगा कि व्हाट इज नीडेड।
1: यहाँ एक बात बोलूंगा बड़ा अच्छा, कभी कभी डायरेक्टर जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करो तो चिढ़ जाते हैं, और कुछ बहुत प्यार करते हैं, और कुछ आपको कॉर्नर में ले जाके बोलते वेरी नाइस, थोड़ा सा ये कर दे, तो वहां दे मेक यू फील सो नाइस, एंड वहां से आपका परफॉर्मेंस और नाइसर होता है।
0: ओके, अब इस मूवी का डायरेक्टर कौन?
1: मैं
0: खुद।
1: राइटर डायरेक्टर
0: राइटर भी मैं, एक्टर भी मैं, सी डायरेक्टर भी मैं, सीन कैसे परफॉर्म करना है वो डिसाइड भी, हाँ लॉस एंड प्रॉफिट भी मेरा, कितना जब इतना कुछ मेरा तो कितना अटेंशन, वहां तो सिर्फ एक्टर थे ना आप, वहां डायरेक्टर कोई और, प्रोड्यूसर कोई और, स्क्रिप्ट राइटर कोई और, रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन कोई और, यहाँ तो सब कुछ हम, तो अटेंशन कितना। अब ये सारा कुछ अगर हमने अटेंशन रखा, अब इसमें हमने एक लाइन ली बीइंग डिवाइन, तो बीइंग डिवाइन हमने अपने आप को कहा कि आई द एक्टर एम अ डिवाइन बींग, ठीक है, जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा आई द एक्टर आई एम अ ब्यूटिफुल बींग आई एम अ डिवाइन बींग, मतलब मुझ एक्टर का व्यक्तित्व क्या है, डिविनिटी, दिव्यता। अब ये डिवाइन एक्टर पूरे दिन कितने सारे सीन्स, कितने सारे को एक्टर्स, कितने सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं इसने, लेकिन एक्टर का व्यक्तित्व क्या, डिविनिटी।
1: एक्टर का व्यक्तित्व डिविनिटी,
0: डिविनिटी, जैसे आपकी मूवीज में अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी का
1: एक
0: कोई
1: पुलिस ऑफिसर है, एक चोर है,
0: रोल
1: है, जज है,
0: रोल अलग, एक्टर के पर्सनालिटी
1: है, द वे यू परफॉर्म द सेम रोल,
0: द सेम रोल। किसी के लिए हम कहेंगे कि बहुत स्पॉन्टेनियस है, ये एक्टर के अंदर बहुत स्पॉन्टेनिटी है, दिखता है,
1: रटा रटा है,
0: नेचुरल है। तो अब मैं एक्टर अलग अलग रोल, लेकिन मुझ एक्टर की पर्सनालिटी डिविनिटी, डिवाइन, मतलब मेरी पर्सनालिटी मेरे हर रोल, मेरे हर सीन, मेरे हर परफॉर्मेंस, मेरे हर डायलॉग में आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी है।
1: सही बात।
0: जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग एक्टर्स हैं, लोगों को अलग अलग एक्टर्स की पता है कि कैसे परफॉर्मेंस होती है,
1: जैसे डांस डायरेक्टर है ना,
0: हाँ,
1: तो मैं जब कोई फिल्म में देखता हूँ कि सॉन्ग पिक्चराइजेशन हुआ है, तो उस आर्टिस्ट के मूवमेंट से पता चल जाता है ये जरूर ये इस गुरु
0: ने, कोरियोग्राफर ने किया,
1: कोरियोग्राफर ने किया होगा, क्योंकि उसकी हल्की सी छाप आ जाती है।
0: और अगर सपोज आपने कोई परफॉर्मेंस देखा जो आपको पता है कि उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, लेकिन वो हम कहेंगे वो वाली बात, वो वाला जो एक उनकी है वो आई नहीं इसमें, तुम कहते हैं ये लगा ही नहीं जैसे उन्होंने किया है, मतलब एक्टर की पर्सनालिटी उसके रोल में आनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: एक्टर और रोल अलग नहीं हो सकता,
1: नहीं।
0: अगर एक्टर ने अपने रोल में नहीं लाया अपना व्यक्तित्व, तो फिर वो रोल देखने का हमें मजा नहीं आता। अब सारा दिन में हम इतने सारे रोल्स कर रहे हैं, सपोज आप लें अपने आप को, आप किसी के लिए एक फादर है, किसी के लिए एक हस्बैंड है, किसी के लिए एक फादर इन लॉ है, किसी के लिए ग्रैंडफादर है,
1: भाई है,
0: किसी के लिए एक भाई है, किसी के लिए एक बॉस है, बहुत सारे रोल्स हैं। अब क्या हुआ, आज जीवन जीने के तरीके में हम ज्यादातर अपने रोल्स पर फोकस्ड हो गए। मेरा ये रोल है, मैं फादर हूं ना, तो फादर कैसे होना चाहिए था, ये बेटा है ना, तो बेटा कैसे होना चाहिए, बेटी कैसे होनी चाहिए, ये बहू है, ये दामाद है, तो दामाद कैसा होना चाहिए। तो हमने एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करना शुरू किया, दैट स्टार्टेड बीइंग बेस्ड ऑन द रोल, कि एक दामाद कैसा होना चाहिए, एक ससुर कैसा होना चाहिए, एक सास कैसी होनी चाहिए, वी वर इंटरेक्टिंग रोल टू रोल कॉन्शियसनेस। एंड अपनी परफॉर्मेंस को भी हम देख रहे थे ना, तो हमने कहा ससुर हूं ना, तो सामने वाले को कैसे होना चाहिए था, मैं बड़ा हूं ना, तो सामने वाले को कैसे होना चाहिए था। तो हमने अपनी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया भी अपनी रोल, अपनी पोजीशन, अपनी एज के बेसिस पे रखा, सामने वाले का परफॉर्मेंस भी, उसकी एक्सपेक्टेशंस हमने किस बेसिस पे रखी, उसकी रोल, उसकी पोजीशन, उसकी एज, उसके स्टेटस के बेसिस पे रखी। वी वर नॉट कनेक्टिंग एक्टर टू एक्टर, we were connecting role to role, position to position, relationship to relationship, status to status.
1: कुछ दिन पहले लिफ्ट में मेरी बहू, बच्चे और हम आ रहे थे नीचे, तो जैसे लिफ्ट रुकी तो मेरा हाथ गया दरवाजा खोलने में, एक सेकंड के लिए लगा मुझे कि मैं, ये तो बहू है, इसके लिए मैं दरवाजा खोलूं,
0: yeah.
1: तो फिर मैंने बोला नहीं, गुड एक्टर, अपना परफॉर्मेंस करना है, हमको अपना देखना है, मेक अदर्स फील नाइस एंड खुद फील नाइस, तब मैंने खोला एंड आई फेल्ट सो
0: सी द सिंपल है डिफरेंस दिख रहा है।
1: लेकिन ऐसा यहाँ छापा है यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, इतना वेल ट्रेन्ड है माइंड के लिए इसके लिए दरवाजा खोलना, इसके लिए नहीं खोलना, नौकर है तो वो पहले खोल लेगा, ये है तो ये होगा। एक्टर टू एक्टर देखना इतना मुश्किल होता था मुझे पहले, लेकिन कहीं कहीं मैं जीत रहा हूँ।
0: हाँ तो कहीं कहीं करना
1: 5%
0: है,
1: 10% का
0: कहीं
1: पड़
0: कहीं तो करना है ना, कहीं कहीं करते करते ही तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी।
1: लेकिन अच्छा लगता है जब ये चीजें आप ओवरकम करके कर लेते हो तो।
0: अब इस केस में आपने क्या किया, पहले जो आप परफॉर्म करने लगे थे, ये सारी परफॉर्मेंसेज ही तो है सीन में, तो पहले आपकी परफॉर्मेंस होती, आप रुक जाते एंड आप एक्सपेक्ट करते कि सामने वाला करेगा। क्यों? क्राइटेरिया क्या था? मैं बड़ा, वो छोटे, मैं फादर इन लॉ, वो बहू, ये क्राइटेरिया
1: खोले, स्टाफ खोले, कोई भी, कोई भी खोले, मैं क्यों खोलूं?
0: क्राइटेरिया ये था ना। नाउ ये जो क्राइटेरिया वर्क कर रहा था, ये जो कॉन्शियसनेस थी कि मैं कौन, इसको हम कहेंगे ईगो, कि मैं कौन, मैं बड़ा, मैं बॉस, मैं ससुर, मैं फादर, मैं हस्बैंड, मैं अमीर, दूसरे मैं मालिक, ये सारे क्राइटेरिया थे। तो ये सारे क्राइटेरिया के थ्रू, ये कॉन्शियसनेस के थ्रू जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी होती? आप ऐसे खड़े रहते एंड फिर वेट करते कि दूसरा खोलता। अब सपोज दूसरे ने नहीं खोला, चेन कैसे बनेगी एक सीन से दूसरे सीन? सपोज दूसरे ने नहीं खोला एकदम से, या ठीक
1: जो आपने अभी कहा कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर एक्ट, इस एक्टर का क्या होना चाहिए
0: था, तो सामने वाले ने नहीं परफॉर्म किया, तो हम क्या करेंगे? विच मीन्स नॉट इन जस्ट अ स्मॉल थिंग लाइक ओपनिंग अ लिफ्ट डोर,
1: इवन इन ग्रीटिंग, कोई पहले आपको नहीं करे, बिजी है, खेल रहा है, बहू हो, बेटी हो, बीवी हो, बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रही है, तो खुद बोल दो ओम शांति,
0: अगर नहीं
1: गुड मॉर्निंग, जो भी
0: अगर नहीं किया और सिर्फ वेट किया कि मैं बड़ा हूँ वो करेंगे, फिर अगर उधर से उन्होंने नहीं किया तो हम क्या करेंगे? उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की। अब जब हम कहते हैं उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उस क्षण हमारी जो ईगो कॉन्शियसनेस थी वो क्या हो गई है? सामने वाला आपको आके कहेगा आपकी ईगो हर्ट हो गई ना, सामने वाले ने नहीं किया ना आपसे ठीक से, आपकी ईगो हर्ट हो गई। तो हम कहते हैं ईगो थोड़ी हर्ट हुई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ये, कहते ईगो हर्ट हुई है ये।
1: नहीं, सामने वाला बोलेगा आपकी बेइज्जती हो गई,
0: ईगो हर्ट हो गई। अब बेइज्जती हो गई कौन बोलेगा? जो खुद अपनी कौन सी कॉन्शियसनेस से काम कर रहा है, जिसकी खुद की ईगो ये देख रही है कि सामने वाले को करना चाहिए था क्योंकि वो छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। कॉन्शियसनेस, व्हाट विल बी आर कॉन्शियसनेस, सो विल बी आर एवरी परफॉर्मेंस इन एवरी सीन ऑफ लाइफ।
1: कितना कॉम्प्लिकेटेड,
0: इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड
1: जिंदगी को।
0: आज अगर हम अपने जीवन को देखें, रिश्तों को देखें, हर जगह हम काफी कॉम्प्लिकेटेड हुए हुए हैं।
1: More than complicated, stronger word.
0: Otherwise, life can be extremely simple. Extremely simple. Even ये same scene को ले लेते हैं, ये same scene को लेते हैं, इतना छोटा सा scene है, अब इसकी equation को बड़े scenes में लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा scene है कि हम lift में 5 लोग खड़े हैं suppose, ठीक है? एक बहू है, एक नौकर
1: है,
0: मतलब एक फैमिली मेंबर छोटा है, एक बच्चा है, नहीं एक स्टाफ मेंबर भी है, ठीक है, तो एक नौकर भी है, मेड भी है, चलो मेड भी है, तो 5 एक्टर्स होने चाहिए ना लिफ्ट के अंदर। अब वो सारे खड़े हैं, आई विल मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर माई सेल्फ इफ आई विल वेट कि ये करेगा, फिर मैंने ये नहीं कर सकता था तो ये तो कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी तो ये तो कर सकता था, मतलब मैं जो सबसे बड़ा, एज में भी बड़ा, पोजीशन में भी बड़ा, रिश्तों में भी बड़ा, और ये सब ऐसे खड़े हुए हैं और ये नहीं करेंगे, लाइफ कैन बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। एंड अगर मैं अपने नेचुरल सेल्फ में हूं, ईगो नहीं है उस क्षण, उस क्षण ईगो नहीं है, ईगो भी कभी कभी होती है, कभी कभी चली जाती है, उस क्षण ईगो नहीं है तो मुझे वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने में
1: याद भी नहीं आएगा,
0: क्योंकि ईगो नहीं है उस क्षण,
1: ये तो खुलना ही है, खोलो निकल जाओ, कि ध्यान ही नहीं रहता है
0: उस क्षण, ईगो वर्क नहीं कर रहे है, आई द नेचुरल सेल्फ एम वर्किंग। लेकिन अगर ईगो होती परफॉर्मेंस अलग होता, फिर उसके बाद अगर कोई नहीं खोलता तो हर्ट भी होता, फिर हर्ट होके वो स्टाफ मेंबर को डांट भी देते कि दिख नहीं रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खोलूंगा, तुम नहीं खोलोगे उसको क्या।
1: कितने हजारों जन्मों का ये संस्कार है मन, अपने छपा हुआ जो यहाँ बोल रहे थे, एक इम्प्रिंट जैसे अंगूठा लग जाता है तो लग गया, दस्तावेज पे लगता है ना स्टैम्प पेपर पे।
0: हाँ।
1: तो वो तो मेरी मिस्टेक नहीं है ना, वो तो पुरानी बातें हैं ना, उनको सिर्फ ठीक ही कर रहे हैं हम अभी तो।
0: पुरानी बातें एक्चुअली क्या है कि ये सारी लेयर्स हमने इस जीवन में अक्वायर कर ली हैं, और ऐसे ही हमने कई जन्मों में भी लेयर्स अक्वायर की थी कि मैं कौन। इसीलिए आप देखो, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो फिलोसफी है, हर एक ने हमें आकर एक ही बात कही, हु एम आई, मैं कौन। इस क्वेश्चन का अगर आंसर मिल गया तो जीवन जीने का तरीका बहुत।
1: उन्होंने हु एम आई के साथ साथ बोला था लव। हाँ, एक शब्द यूज कर, अनकंडीशनल लव भी सब ने बोला है।
0: हु एम आई मिलने के बाद, हु एम आई नहीं मालूम तो अनकंडीशनल लव नहीं आ सकता।
1: सही बात, तो कुछ भी नहीं आ सकता।
0: हु एम आई के बिना अनकंडीशनल लव नहीं आ सकता, क्योंकि हु एम आई नहीं मालूम तो ईगो है, ईगो है तो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस है तो कंडीशनल है, अनकंडीशनल कैसे होगा। तो हु एम आई,
1: ईगो है तो मैं ही नहीं हूँ, फिर ईगो
0: है नहीं है ना, ईगो है ना। ईगो मतलब क्या, कोई ना कोई चीज जो मैंने इस जीवन की यात्रा में प्राप्त की है उसको मैंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया, चाहे वो मेरी स्कूल में मार्क्स थे, चाहे वो मेरी कॉलेज की डिग्री थी, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, चाहे वो मेरी डेजिग्नेशन थी, चाहे वो मेरा रिश्ता था, चाहे वो मेरा कोई स्किल था जो मैंने अक्वायर किया, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी पोजेशन थी मैंने अक्वायर की। चीजों को हम अपनी आइडेंटिटी बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। मैं कौन, एक बच्चे को देखना चाहिए, छोटा बच्चा, अभी उसने कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है, तो जब तक उसने अक्वायर नहीं किया होता ना, उसके फेस को अगर हम देखें तो बच्चे के फेस के अंदर डिविनिटी दिखाई देती है, क्योंकि उसने अभी जीवन की यात्रा में कुछ अक्वायर नहीं किया है।
1: सबको स्माइल करता है,
0: अनकंडीशनल, अनकंडीशनल,
1: सब कोई की तरीके से स्माइल करेगा, सबसे एक ही तरह से बात करेगा,
0: अनकंडीशनल है ना। वो अनकंडीशनल इसलिए है क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मैं कौन और मैं ये तो लोग कौन और लोग ये तो लोगों को मेरे साथ कैसा होना चाहिए, उसकी लेयर्स नहीं बनी अभी तक। हमारे ऊपर लेयर्स बनी है, मैं कौन उसकी लेयर, फिर ये कौन उसकी लेयर, और फिर ये तो इनको मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन बन चुके हैं। ये पूरी एक लेयर बनती गई। अब जितनी लेयर्स बनती गई तो वो जो अंदर बच्चा था मतलब वो जो अंदर डिविनिटी थी, वो जो प्योरिटी थी, वो क्या होती गई, वो यहाँ छुप गई, और ऊपर से लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर, जितनी लेयर्स बनती गई हम अपने ओरिजिनलिटी से दूर होते गए। इस जीवन की यात्रा में हमने कितना कुछ प्राप्त किया है, लेकिन जो कुछ हमने प्राप्त किया उसको हमने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया।
1: आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया मतलब
0: आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ा।
1: आई एम एक्टर सो एंड सो, आई एम डॉक्टर, आई एम कर्नल, आई एम रिटायर्ड सो एंड सो।
0: आप फिल्म्स में आए, आप एक्टर बने, आप बहुत सक्सेसफुल हुए, तो जब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे उससे पहले, जब आप बाहर जाते, लोगों से मिलते, तो आपकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करेंगे, और फिर आप फिल्म में आए और सक्सेसफुल बने, और आप उस क्षण, उस समय, उस पीरियड में एक हीरो हैं, और तब आप बाहर जा रहे हैं एंड लोगों से मिल रहे हैं एंड इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो दी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट।
1: यस,
0: एक्सपेक्टेशंस वर डिफरेंट, राइट। पहले,
1: बाद में वीआईपी ट्रीटमेंट की एक आदत पड़ जाती है ना।
0: हाँ, मतलब लोग मेरे लिए खड़े होंगे, मुझे आगे जगह देंगे, मेरे सामने झुकेंगे, ये करेंगे, मेरे से प्यार से बात।
1: आपको टिकट नहीं पूछेगा, आपसे वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं पूछेगा, आपसे कोई आपको पुलिस वाला रोक के बात करके आपका लाइसेंस नहीं पूछेगा. सो मेनी थिंग्स नॉट वन.
0: आई रिमेम्बर कि कुछ साल पहले जब आपके साथ एयरपोर्ट पे जाना हुआ और किसी ने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाना है एंड उस क्षण आपने उसको डांट दिया था. ये कई साल पहले की बात है लेकिन आपने उसको डांट दिया था. उस क्षण कौन हर्ट हुआ था? अब तो आप बहुत प्यार से दे देते हैं.
1: अब तो पहले से टिकट के साथ रखते हो तो लोग बोलते भी ऐसा आप क्यों दिखा रहे हो.
0: वो अलग बात है लेकिन जिस क्षण किसी ने मांगा था
1: तब की बात अलग है.
0: वी नीड टू रिकलेक्ट कि तब में और अब में मेरे में क्या चेंज आया है. व्हाट हैज हैपेंड. दिस इज आवर जर्नी.
1: तब तो हर्ट हुआ था.
0: तो कौन हर्ट हुआ था?
1: मैं
0: कौन?
1: मेरा ईगो.
0: ईगो क्या? ईगो मीन्स हर्ट हुआ था मीन्स
1: मेरा लेबल.
0: कौन सा लेबल हर्ट हुआ?
1: एक्टर का, नॉन का, वीवीआईपी का.
0: यस, वो लेबल हर्ट हुआ था कि ये मैं एक्टर, मैं वीआईपी, मैं सो एंड सो, ये सामने वाला मुझे पहचान नहीं रहा, मुझे आई कार्ड मांग रहा है. हर्ट हुआ. जैसे ही वो लेबल हर्ट हुआ, वो ईगो हर्ट हुआ, मतलब जो एक्सपेक्टेशन का व्यवहार हमने सामने वाले से रखा था डिपेंडिंग ऑन माई दैट अक्वायर्ड लेयर. अब इस केस
1: साथ में एक और लाइन भी ऐड कर दीजिए और आसपास देखते हैं सुनने वाले लोग क्या कहेंगे.
0: फिर वो लोग भी क्या कहेंगे बेस्ड ऑन कि ये एक्टर है और इसको ये आईडी कार्ड मांग रहा है. तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी. मतलब इंसल्ट सारी किसकी हुई थी एक्चुअली? वो लेबल की इंसल्ट हो रही थी उस दिन. लेकिन जब हमने उस तरह से रिएक्ट किया और गुस्सा कर दिया तब एक्चुअली इंसल्ट किसकी हुई? तब मेरी इंसल्ट हुई, मेरी, क्योंकि मैंने अपना राइट परफॉर्मेंस नहीं दिया. बिकॉज माई राइट परफॉर्मेंस इज फीलिंग नाइस एंड मेकिंग अदर पीपल फील नाइस. सो स्पिरिचुअलिटी, ब्रह्मा कुमारीज में जो हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं उसका जो मेन लक्ष्य है, जिसको हम कहेंगे ना, हर मेडिटेशन का एक लक्ष्य होता है. आजकल बहुत बार भाई बहने कहते हैं कितने सारे स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन है, नो देयर आर सो मेनी थॉट्स कि इस तरह से भी मेडिटेशन हो सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी. पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला करना है? तो यहां जो हम मेडिटेशन सीखते हैं उसका जो एम ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका जो पर्पस है, वो है ये सारे लेयर्स जो आ चुके हैं ऊपर, सारे लेयर्स, वो सभी लेयर्स को धीरे धीरे धीरे धीरे, एंड देन एक बार करना शुरू कर दो तो इट डजंट टेक टाइम टू रिमूव इट. लेकिन एक एक
1: लेयर सूखे हुए गिर रहे हैं.
0: यस, तो एक एक इस लेयर को उतार के अंदर जो वो ओरिजिनल आई है जो छुप गया है उस लेयर्स की वजह से, तो वो ओरिजिनल आई की जो पर्सनालिटी है जो इस अक्वायर्ड ईगो की वजह से कुछ और बनने लग गया था, उस दिन जब आप एयरपोर्ट गए और सामने वाले ने आपको आई कार्ड मांगा, अगर आपके पास मैं एक्टर हूं ये लेयर ना होती, जैसे हम सब बाकी लोग तो जाते हैं, हमसे भी आई कार्ड मांगते हैं, लेकिन हमारे पास वो लेयर नहीं है कि मैं एक्टर हूं, तो वो लेयर न होने के कारण हमारा व्यवहार डिफरेंट है. अब आपके ऊपर वो लेयर थी,
1: और यही अगर मैं अमेरिका में होता,
0: हाँ, तो
1: तो बताता पासपोर्ट.
0: यस, दिस इज व्हाट इट इज कॉन्शियसनेस, कि मैं यहाँ हूँ और मैं कौन हूँ और सामने वाले को मेरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको क्राइटेरिया रखा तो परफॉर्मेंस गलत हो जाती है.
1: सो मेनी टाइम्स अगला बंदा भी ईगो की वजह से दुनिया को दिखाने के लिए बदल, देखा वो फलाना एक्टर है लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने बोला आप बताओ, माय ड्यूटी माय ड्यूटी.
0: हम सामने वाले की तो परफॉर्मेंस पे अब डिपेंडेंट ही नहीं हो सकते.
1: क्या होता है ना, आदत हो जाती है. एक दिन, दो दिन, दस दिन, हजारों दिन लोग कैसे हैं आपका उसे पिक्चर आ रही बात करते हैं व्हेन यू एंटर एंड ऑल दैट. सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक आई कार्ड कभी जेब में नहीं रखा था, उस दिन वॉज अ लेसन फॉर मी. तो अच्छा हुआ
0: आई कार्ड जेब में नहीं रखना अलग बात थी, और रिएक्ट कर जाना
1: वो भी सही
0: है ना. अगर हमसे किसी ने मांगा, हमें आदत नहीं थी रखने की, हमने नहीं रखा होता, हम प्यार से अपोलोजाइज कर देते, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट कैरिंग इट टूडे, आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम से ये मेरे पास हमेशा होगा. रिएक्शन ना आता
1: उस दिन के बाद तो टिकट के साथ मैं लगा के देता हूँ, ये आई कार्ड लो और ये लो.
0: लेकिन रिएक्शन क्यों आया? जब तक ईगो हर्ट नहीं होती, मतलब ईगो को किसी ने अगर टच नहीं किया, मतलब जो मैंने लेयर अक्वायर की है उसको अगर किसी ने टच नहीं किया, हम कभी हर्ट नहीं होंगे, कभी रिएक्ट नहीं करेंगे. कोई ना कोई इमेज जो हमने बनाया, कोई ना कोई चीज जो हमने अक्वायर की, जिसको हमने समझा ये मैं हूं, उतनी देर हम भूल गए कि मैं एक्चुअली कौन हूं, तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है सारी उस शर्ट पर।
1: बहुत सही बात है ये। और हमारे राजयोग का लक्ष्य क्या है, इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं, ये अगले एपिसोड में बात करेंगे।
0: थैंक यू।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
2: द वे वी रिस्पॉन्ड टू अ सीन क्रिएट्स अ परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑन द सोल। वंस अ रिकॉर्डिंग इज क्रिएटेड, द चांसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग द सेम वे in another scene increases, and gradually that becomes our sanskar. The soul is the actor performing every scene on the stage of this world drama. The personality of the actor will reflect in every role and every scene. Let us create the consciousness, I am a divine being, and reflect divinity in our every scene today. When we are role conscious, we perform on the basis of our position, relation, and age, and expect the same from others. When we are conscious of the quality of the actor, then irrespective of the role, we will radiate our quality in every scene. Ego is when we make something that we have acquired our identity. It could be our qualification, our position, our skill, our relation, or religion and caste. When we make any of these our identity, we enact our scenes based on this identity and expect others to be with us on the same basis.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बात।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशिया बांट। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के चौथे अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं प्रीत माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण का प्रेम इतना सुंदर और गहन है कि हर हृदय की भक्ति और अनुराग भर उठता है। गोपियों के प्रति उनका स्नेह, मित्रों के प्रति उनका अपनापन और भक्तों के प्रति उनका असीम करुणा, यही है प्रीत माधुरी का सार। कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप केवल शक्ति या ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तो वह केवल दो आत्माओं का संगम नहीं होता बल्कि यह ब्रह्मांडीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। हर भक्त जब श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में अनुभव करता है तो उसका जीवन भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस अध्याय में डूब जाए उस प्रीत माधुरी में जो हमें सिखाती है कि प्रेम ही ईश्वर का सबसे मधुर उपहार है। तो दोस्तों सुनते हैं प्रीत माधुरी कलाए का एक सुंदर गीत।

तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था। वह प्रेम वृंदावन की हर गोपी, हर जीव जंतु और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जन स्वार्थ था, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्पण था। इसी कारण श्री कृष्ण को कृत माधुरी की कला का प्रतीक माना जाता है। यह कला हमें सिखाती है कि ईश्वरीय प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समस्त सृष्टि को आलिंगन करता है। हर हृदय में, हर जीव में, हर कण में वही प्रेम व्याप्त है। तो दोस्तों, आइए इस अध्याय में हम अनुभव करें उस प्रीत माधुरी को, जो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही ईश्वर का सबसे सुंदर मधुर

तो दोस्तों, भागवत कथा में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण रासलीला करते थे तो हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ है। ये अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। हर भक्त को लगता है कि वह ईश्वर का सबसे प्रिय है और यही अनुभूति भक्ति को अमर बना देती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही है प्रीत माधुरी, वह कला जो हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ, सर्वव्यापी और अनंत है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गूंजती बांसुरी सब मिलकर यह संदेश देते हैं कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा के सीमित नहीं था, वह तो हर जीव, हर प्राणी और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जनस्वार्थ या जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्पण था। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है और हर हृदय ईश्वर के आलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं प्रीत माधुरी कला का तीसरा और सुंदर गीत। तो दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

नमस्कार श्रोताओं, प्रीत माधुरी हमें सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ है आत्मा पूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देते हैं, तब हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। कृष्ण का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। यह प्रेम हमें बताता है कि भक्ति का मार्ग त्याग और समर्पण से ही प्रशस्त होता है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गुंजती बांसुरी सब यही दर्शाते हैं कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है आत्मा का परमात्मा में विलय। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तभी सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण का एक प्यारा सा सुंदर गीत।

तो दोस्तों श्रीमद् भागवत में कहा गया है राधव माधव वंदे राधा माधव माधवम। इस श्लोक का भावार्थ है कि राधा और माधव का प्रेम अद्वितीय है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। जब भक्त अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो उसका जीवन प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण यह दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि भक्ति का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम अनंत और हर हृदय को अलौकिक करता है। तो दोस्तों सुनते हैं प्रीत माधुरी का अगला एक सुंदर गीत।

तो श्रोताओ, यह थी चौथी कला प्रीत माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला पड़ाव होगा गीता माधुरी, यानी श्री कृष्ण की मधुरता। वह गीत जिनमें भक्ति का रस है, प्रेम का संदेश है और जीवन को आनंद से भर देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य साधन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, सुनते रहो और सुनाते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुविचारों से जीवन को जो महकाए, हर पल में खुशियों के फूल खिलाए।
1: भय को दूर भगाने के लिए ज्ञान व विवेक की प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है।
0: जिंदगी में अच्छे विचारों का बहुत कीमत है, साथियों अच्छे विचारों को अपना दोस्त बनाए।
2: रेडियो पुनेरी आवाज के साथ खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज के हमारे खास मेहमान पूना से विशेष जुड़े हुए हैं और आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा। जागृति मैडम हमारे साथ हैं तो उनसे बात करते हैं उनके बारे में। जागृति मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद सर।
3: कैसे हैं आप?
4: एकदम बढ़िया, मस्त।
3: और मैं चाहूंगा थोड़ा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या करते हैं?
4: हम अभी पुणे में सेटल्ड है। पहले मुंबई में थे। मुंबई से हम 10 साल हो गए पुणे में आए हैं।
3: अच्छा।
4: और पुणे में अच्छे से सेटल्ड हो गए हैं हम।
3: अच्छा, वैसे क्या करते थे आप?
4: मैं प्राध्यापक थी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी और ज्यादा समय पढ़ाई में गया मेरा।
3: अच्छा।
4: क्योंकि मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, अभी भी चाहती हूँ कुछ करूँ। चलता रहता है, अभी गाने गाती हूँ।
3: अरे वाह, क्या बात है। चलिए अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप ही के एक सुंदर गीत से। तो एक छोटा सा गीत मुखड़ा अंतरा सुनाइए जो आपका पसंदीदा हो।
4: हिंदी सुनो।
3: हाँ, हिंदी सुनाइए, अच्छा लगेगा। मैं
4: निकालना पड़ेगा।
3: जी जी जी, तब तक आप निकालिए। हमारे बीच शायद स्नेहा सूर्यवंशी भी जुड़ गई है। उनसे भी हेलो हाय करते हैं। स्नेहा जी, स्वागत है आपका।
5: हेलो सर। हेलो मैम।
3: स्नेहा कैसे हैं आप?
5: बढ़िया हूँ, बढ़िया।
3: और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: मैं पुणे से हूँ एक्चुअली।
3: नहीं नहीं, अभी वर्तमान पुणे में कहाँ पर हैं?
5: पुणे में मैं सीएस को सोर्सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में चार के रोल में वर्क कर।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका क्या ड्यूटी रहता है, किस तरह के कार्य करते हैं आप वहाँ पर?
5: एक्चुअली मॉर्निंग 10 to 7 रहता है मेरा शेड्यूल एंड मैं चार का रोल देखती हूँ। जो भी न्यू ज्वाइनिंग एंड ऑल रहते हैं उनका फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, ये मेरा रोल आता है।
3: अच्छा अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग अभी एक गाना सुनते हैं। जागृति मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। यस जागृति मैम,
4: मैं करा पे सॉन्ग सुनाती हूँ।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: फिलोसॉफिकल सॉन्ग है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू।
3: जी जी जी, बहुत बढ़िया
4: है। अपने को तो जो पल मिला है, जिंदगी ने दिया है, वही पल अपने को जीना है अच्छे से। क्योंकि फिलोसॉफी यही कहती है कि जिंदगी बार बार नहीं आती, जो क्षण है उसको अच्छे से जीना है। तो इसलिए मैंने आशा भोसले जी का वक्त फिल्म का ये गाना आपके लिए चुना है।
3: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। जी सुनाइए।

0: वाह बहुत बढ़िया,
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू जागृति जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा भोसले जी का। आइए आगे बढ़ते हैं, इस सुंदर समय को और यादगार बनाते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि जॉब करते हुए जर्नलिस्ट भी रहे और प्राध्यापक का ड्यूटी भी आपने निभाया, तो ये सारा जो मिक्स हो जाता था कि आप एजुकेशन के बाद फिर इस चीज को जर्नलिज्म को?
1: एजुकेशन तो मैंने जो किया है वो शादी के बाद ही मैंने पूरा एजुकेशन किया है।
0: अच्छा।
1: और फिर सब घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं पढ़ी हूँ, नौकरी, फिर मेरा रिसर्च, बीएड, ये सब जो चीजें है वो सब मैंने घर संभालते संभालते की है। और उसमें मेरा साथ रहा मेरे पति डॉक्टर सुधीर निखारे का, मेरी सासू माँ, मेरी ननंद वगैरह, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनकी वजह से मैं ये सब कर चुकी हूँ। और मुझे छोटे छोटे कोर्सेज भी करने का मन था, तो मैंने भी उस समय में श्रमिक विद्यापीठ वरली से भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया।
0: अच्छा।
1: पर्ल ज्वेलरी की, फिर आई एम अ गुड पेंटर,
0: अरे वाह,
1: मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया और चारकोल पेंटिंग वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह बनाती थी उस समय में। तो वो मुझे बहुत शौक था इन सारी चीजों का, और उसके पीछे सब प्रेरणा थी मेरे घर वालों की, उनके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर फ्रीलांस जर्नलिस्ट तो मैंने कोर्स किया और बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, उसमें वीपी सिंह थे, फिर बहुत सारे एक्टर्स थे, मराठी हिंदी संगीतकार थे। तो ये मेरे को एडवांटेज मिला कि मैंने जो पत्रकारिता की
0: उसका बेनिफिट लिया।
1: हाँ, बहुत बेनिफिट हुआ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ पहचान हुई। और मेरे को माणिक वर्मा जी का मैंने इंटरव्यू लिया था।
0: अच्छा।
1: तो उनको मैंने पूछा था कि मैं गाना सीख सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, आई वाज दैट टाइम 46 इयर्स ओल्ड, कि मैंने मैडम का इंटरव्यू लिया था माणिक वर्मा जी का। तो फिर मैंने उनसे, उन्होंने बोला क्यों नहीं सीख सकती हो आप। तो उनकी प्रेरणा से मैंने एट द एज ऑफ 47 I joined classical music, there was a school of music in Channel Road.
0: अरे वाह।
1: And I did up to fourth year मैंने किया, मध्यमा पूर्ण तक मैं पढ़ी शास्त्रोक्त संगीत। फिर मेरे को गुरु नहीं मिले बदलियों की वजह से, फिर मैंने SNDT डिस्टेंस एजुकेशन है म्यूजिक का यहाँ पुणे में, उनके इसमें मेरे को एकदम डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन मिला। और मैंने डिप्लोमा इन नाट्य संगीत एंड सुगम संगीत किया।
0: अरे।
1: और मेरे टीचर की वजह से मैं जरा मेरे ख्याल से ढंग से गा पाती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत मेरे पीछे है, उन्होंने जो सिखाया मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे इसमें भी वैसे मैं ला सकूं।
0: चलिए जागृति मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। आप मल्टी टैलेंटेड हैं और हर चीज को जो है जो आपको अच्छा लगता है वो सीखने की ललक आपके अंदर है। अब बस यही है कि अब जैसे कि हमारी जिज्ञासा बनी रहे हर चीज सीखने में, तो सीखने में भी आनंद आता है और खुशी होती है। जब हमें जिज्ञासा खत्म हो जाती है हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग्स, हमारा सीखने की जो बात है वो रुक जाती है, और फिर हम लोग दूसरों को देखते हैं कि कैसे ये कैसे कर रहे हैं, है ना। तो आपकी अपनी जिज्ञासा मुझे लगता है कि हमेशा बरकरार रहे, प्यास बनी रहे, तो व्यक्ति जो है तालाब तक जाएगा। प्यास ही नहीं होगा तो तालाब तक जाने का सवाल ही नहीं आता।
1: मैं तो सब ऑडियंस को यही बताना चाहती हूँ कि देखो, उम्र कोई ये नहीं है, नंबर बढ़ते रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पर वो नंबर बढ़ने दो ना, आप अपने को हमेशा ताजा तरोताजा रखो, एक्सरसाइज करो यानी योगा करो, उससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो विरासत में कुछ ये प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ की, उसको भी साथ लेके चलो, मेडिसिन लो करो, ले लो, जिंदा रहो मस्त।
0: चलिए, अभी महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे महिला दिवस?
1: महिला दिवस तो हम सब लेडीज जो है हमारे यहाँ से क्लब की, हम सब सुबह जमा होंगे, फिर कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करेंगे कुछ ऐसा, फिर शाम को हमारा एक प्रोग्राम है गायन का, तो हम गायन का प्रोग्राम करने वाले हैं सैटरडे इवनिंग को।
0: तो
1: थोड़ी सी सोच रहे कि दोपहर को लंच पूल लंच करके एक साथ सेलिब्रेट करें, ऐसा हो रहा है। और प्रेरणा देंगे हम सब महिलाओं को कि भाई आगे बढ़ते रहो, जाते रहो, घूमना है घूम लो, अपनी हॉबीज संभाल लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: जिंदगी में दुख आते हैं, दुखों का सामना करने की अपने इसमें हिम्मत रखो।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया। तो मैं चाहूंगा आप अपने सारे लेडीज को रेडियो में ही लेके आओ ना, यहीं सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए नया हो जाएगा।
1: बताती हूँ मैं।
0: तो उनको लगेगा कि ऐसा भी सेलिब्रेशन हो रहा है कि भाई हम लोग स्टूडियो में पहुंच जाए और वहां पर अपनी अपनी बातें गपशप करके आ जाए, तो ये एक विजिट भी हो जाएगा उनका और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, है कि नहीं?
1: उधर लेके आए या ऐसे ऑनलाइन चलेगा? आपको
0: ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ लेके आने से उनको देखने को मिलेगा ना, फील आएगा रेडियो का।
1: तो बताती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइएगा हमें। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
1: क्या चाहते हैं सर
0: आप? एक मैसेज क्या आप कोट करना चाहेंगे सबके लिए? हाँ,
1: मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जिंदगी में जो भी कठिनाइयां है उसी कठिनाइयों का सामना हंसते खेलते झेलो। और देखो कुछ लोग चले जाते हैं अपने जीवन से पर उनका आने का रास्ता बंद हो जाता है, तो उसे जो है अपने पास, अपने रिलेटिव है, अपने खुद के पास वाले लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान दो, उनको जितनी खुशी हो सके उतनी देने का प्रयास करो। वही दुख सबको होता है पर उस दुख में अटके मत रहो। जिंदगी जीनी है, सफल करनी है, तो अपने आसपास के लोगों को खुश रहो, खुद खुश रहो, जो अपने को अच्छा लगता है वो गाओ, सुर में गाओ या बेसुर गाओ, पर गाना अच्छा लगता है तो गाते रहो बजाते रहो। गाना आए या ना आए,
0: गाना गाना चाहिए,
1: गाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया है। चलिए आपने कहा तो मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए एक गाना, मुझे गाना नहीं आता लेकिन आपने कहा तो हिम्मत करके एक गाना आपको डेडिकेट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक गीत जागृति मैम के लिए, उनके अच्छे अनुभव सुनने को मिला है और जिस तरह से वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड अपने दिमाग में रखती हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी लर्निंग एटीट्यूड रखें और खुशी से ज़िंदगी को जिए। और उम्र सिर्फ एक नंबर है, बाकी जीना तो आपको है। तो आइए ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो है किशोर दा का, मुझे याद आ रहा है ये फिल्म है दूर गगन की छाँव में, और इस फिल्म में किशोर कुमार ने खुद गाया भी है और उसका कंपोजिशन भी उन्होंने किया है, सरगम भी उन्होंने ही और शायद लिरिक्स भी उनके ही है। तो ये गाना जो है बड़ा अच्छा लगता है, जब भी आप इस गाने के दो चार लाइन भी अगर आपको याद हो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपका गम भूल जाएगा। तो गाना है आ चल के तुझे।

0: तो साथियों, ये छोटा सा गीत जागृति मैम के लिए हमने डेडिकेट किया। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। जागृति मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद मुझे गाना डेडिकेट करने के लिए।
0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में इस मुलाकात को यहीं पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो पुनेरी आवाज के साथ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो खुशियां।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्योरे निखट्टू भाड़े के टट्टू और नहीं कोई तुझको काम, जब देखो ये पुस्तक लेकर जपता है तू राम नाम।
1: अरे भगवान, नाम राम का लेना तो कोई पाप नहीं है?
0: पकी पकाई देने वाला घर में कोई तेरा बाप नहीं है?

0: अरे लाला सुंदर लाल, कहो आजकल क्या है हाल।
1: बीवी के हाथों बेजार, मर गए जीते जी हम यार। चुप बैठू तो वो नाराज, बोल पड़ू तो सत्यानाश। यार कहीं से ला दे मुझको तोला भर अफ्यून, सुख का सांस मिले जो छूटे ये हत्यारी जुम।

0: जब कह ही गए कवि तुलसीदास।
1: पर अल्ले की माने भैया पढ़ी नहीं रामायण, पढ़ी जो होती काहे मेरे पीछे पड़ती डायन।

0: क्यों रे निखट्टू भाड़े के टट्टू हो तेरा सत्यानाश, बोल ये तेरे मुंह से कैसी आ जा रही बास।
1: हम तो आज जरा के आए, पी के आओ पिला के आए।
0: अरे बोल कहाँ से पी के आया,
1: ये न समझना चोरी की है, तेरे बाबा के संग पी है।
0: लेता है मेरे बाप का नाम,
1: तेरा बाबा बड़ा शराबी।
0: मेरा बाबा?
1: हाँ तेरा बाबा बड़ा कबाबी।
0: मेरा बाबा?
1: हाँ तेरा बाबा।
0: मेरा बाबा?
1: मेरा बाबा, मेरा बाबा, तेरा बाबा, तेरा बाबा, तेरा बाबा, तेरा बाबा।
0: क्या हो गया इनको, हाय राम,
1: बदल गए दिन भगवान। बोल सुधीरे बोलेगी,
0: बोलूंगी,
1: बोल सुधीरे बोल।

0: हे हे हे आए प्यार के जमाने
1: आज का हाल लग गया नहीं
0: आए प्यार के जमाने
1: आज का हाल लग गया नहीं
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ कर

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का।

0: तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।
0: तथा

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा।

इनके हुनर में मेले में अकेले फिरी बाजार सर में कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना मैं कहती यमला पगला दीवाना हो रहा।

लोगों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, जट यमला पगला दीवाना हो रखा,

संगीत की दुनिया के साथ अब मेरा रिश्ता अपने 50 साल पूरे कर रहा है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कई यादें उभर रही हैं। कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं, खास तौर पे याद आ रहे हैं वो लोग जिनके साथ मैंने गाया, जिन्हें गाते हुए सुना। ऐसे सुरीले लोगों को मैं अपने सुरों की श्रद्धांजलि के अलावा दे ही क्या सकती हूँ। मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं इन महान कलाकारों से अच्छा गा सकती हूँ, बल्कि ये कहूँगी कि इन 50 सालों में मैंने उनसे जो सीखा है उसे ही पेश करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। बचपन में या तो मैं अपने पिताजी को गाते हुए सुना करती थी, या मुझे पसंद था सहगल साहब का गाना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिलूं, बातें करूं, उनका गाना सुनूं और अपना गाना सुनूं। ये सपना सपना ही रह गया, पर उनके सुरों का असर 50 सालों से मेरे संगीत के साथ साये की तरह चल रहा है।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।